ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की पहली तिथि। तदनुसार 22 जून 2026 सुबह के 5:53 और 40 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से।

0: सुबह 11 बजे मन की बात।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। 6 बजने वाले हैं, अब से कुछ ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
2: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वे चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगी और चीतों की देखभाल करने वाले वनकर्मियों तथा स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति ने कल चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस समय देश में 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हैं। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवादी रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों पर की भी समीक्षा करेंगे।

बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरिया पालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान केप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप जी के मुकाबले में ईरान और बेल्जियम के बीच मैच बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा। वहीं ग्रुप एच में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। आज ग्रुप एच में उरुग्वे और केप वर्डे के बीच मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: और आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं रेणु भट्ट सुप्रभात में। और हम जब दिन की शुरुआत करते हैं तो हमेशा कोशिश करते हैं कि अच्छे नोट से हो, इसीलिए आप सभी के दिन की शुरुआत हम बेहद खूबसूरत गीत के साथ करना चाहेंगे। बातें तो हम करते रहते हैं और करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले ये म्यूजिकल ब्रेक और इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद अपनी बातों का सिलसिला जारी रखेंगे आप सभी के लिए बेहद खूबसूरत ट्रैक।

जब हमें कुछ चाहिए होता है तब भी हमारा दिल बेकरार होता है, जब हमें वो चीज़ नहीं मिल पाती है तब भी हमारा दिल बेकरार रहता है, और हमारे दिमाग में चलता रहता है कि वो चीज़ हम कैसे पाएं, और पूरी कोशिश करते हैं हम कि वो चीज़ हमें मिले. ऑफ़ कोर्स, क्योंकि उसके बारे में हमने इतनी तैयारी की होती है, इतनी हमने मेहनत की होती है, तो हम चाहते हैं कि वो चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, हमारी लाइफ में उसका इम्पोर्टेंस जितना ज़्यादा है तो उस चीज़ का प्रेजेंस भी होना चाहिए. लेकिन कई बार ना हम ये नहीं समझ पाते कि हम चीज़ें तो बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में काफ़ी कुछ हो, लेकिन वैसा हो नहीं पाता है. अब जो चीज़ हमारे पास है हम उसे अप्रिशिएट करें और उसका ग्रैटिट्यूड रखें, इसके बजाय हमारे पास जो नहीं है हमारा ध्यान उसके पास ज़्यादा जाता है, उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जाता है. और ये बहुत बहुत नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है. मैं हूँ, आप हों, या जितने भी लोग हमें सुन पा रहे हैं, ज़्यादातर लोग ऐसा चाहते हैं कि सबकी एक एक कोई ना कोई कामना होती है, इच्छा होती है, उन सभी को पाने के लिए प्रयास करते हैं जो हमें करने चाहिए. कुछ ड्रीम्स होने चाहिए और कुछ लक्ष्य होने चाहिए, उसे पाने की ओर हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए. लेकिन कई चीज़ें होती हैं जो नहीं आ पाती हैं हमारे जीवन में, और जो चीज़ें नहीं आ पाती हैं ना जीवन में, इस बात को एक्सेप्ट भी कर लेना चाहिए. जितनी जल्दी हम ये बात स्वीकार कर लेना, हमारा जीवन उतनी ही आसानी से बीतता है और उतना ही आसान हो जाता है. इसलिए अपने मन को समझाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी.

तो होता यूं है कि एक ज़ेन मठ में दो नए भिक्षु आते हैं और उन दोनों को जो गुरु होते हैं वो एक एक मिट्टी का कप देते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारी जिंदगी है, इस कप को संभाल कर रखना। एक दिन आंधी आती है और दोनों भिक्षुओं का कप टूट के गिर जाता है। एक भिक्षु होता है वो बहुत जोर जोर से रोता है। अब वो कहता है कि हाय मेरा कप टूट गया, ये मुझे गुरुजी ने दिया था, अब मैं चाय कैसे पीऊंगा, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, ये आंधी ही क्यों आई, मेरी ही किस्मत खराब थी, एक्स वाई जेड, और बहुत सारी बातें बोलकर वो रोने लगता है और बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। अब दुखी हो जाता है और 3 दिन तक वो दुखी रहता है, वो खाना भी नहीं खाता है, ध्यान भी नहीं करता है और बस उन टूटे हुए टुकड़ों को, जो कप होता है जो टूट चुका होता है उसके टुकड़ों को वो ले करके बस उसे जोड़ने की कोशिश करता है और ख़ुद से लड़ता रहता है। वहीं पर जो दूसरा भिक्षु होता है उसका भी कप टूटकर गिर चुका होता है और गिरकर टूट चुका होता है और उस टुकड़ों को वो उठाता है, गुरुजी के पास जाता है। गुरु बोलते हैं कि क्या हुआ, भिक्षु बोलते हैं कप था अब नहीं है। गुरुजी बोलते हैं फिर, तो बोलता है प्यास है ये है। तो ये बोलकर गुरु से अपना कमंडल देता है और उस कमंडल से वो पानी पी लेता है। इस पर गुरु हंसते हैं, बोलते हैं जा फिर लकड़ी का कप बना लो, और वो ऐसा ही करता है। उसके बाद अगले दिन जब पहला वाला भिक्षु आता है, वो देखता है कि ये तो नए कप में चाय पी रहा है मज़े से और इसे कोई भी दुख नहीं है, और वहीं पर वो रोता हुआ आ रहा होता है कि किस तरह से मैं अपना चेहरा अपने गुरु को दिखाऊंगा, क्योंकि जितने प्यार से उन्होंने मुझे ये कप दिया था और कहा था कि ये तुम्हारी ज़िंदगी, ऐसे संभाल कर रखना, और ये टूट चुका है, ऐसे मैं अपने गुरु से मैं कैसे अपनी नज़रें मिलाऊंगा। वहीं वो देखता है कि जो दूसरा भिक्षु होता है कि वो नए कप में चाय पी रहा होता है। अब इसके बाद क्या होता है, क्या बातें होती हैं, भिक्षु से क्या बात होती है, गुरु से क्या बात होती है, गुरु क्या कहते हैं, क्या कॉन्वर्सेशन होता है, ज़रूर जानेंगे, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

Well, हमने बात की थी इस गाने पे जाने से पहले कि एक गुरु होते हैं जो अपने दो नए भिक्षुओं को दो कप देते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारी जिंदगी, इसे संभाल कर रखना। और आंधी आने की वजह से दोनों के कप टूट जाते हैं, लेकिन दोनों का जो रिएक्शन होता है वो अलग अलग होता है। अब एक भिक्षु जो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, 3 दिन से खाना नहीं खाया होता है, किसी चीज़ में उसका मन नहीं लग रहा होता है, फाइनली वो गुरु के पास जाता है। वहीं दूसरा भिक्षु जो होता है, जिसका भी कप टूट चुका होता है, वो उसी समय भी गुरु के पास चला जाता है और कहता है कि अब तो टूट गया है, ये तो टूट गया है, लेकिन मेरी प्यास नहीं बुझी है, मुझे अभी भी प्यास लग रही है। यानी कि द थिंग इज कि जिसके माध्यम से वो पानी पीता था या उस कप में जो भी वो करता था, वो ज़रूर टूट गया है, लेकिन एक्चुअल चीज़ जो है वो अभी वहीं की वहीं है। उसको बुझाने के लिए, प्यास बुझाने के लिए जरिया कोई और होना चाहिए। गुरु जो कहते हैं कि जाओ लकड़ी का कप बना लो, तो वो लकड़ी का कप बना लेते हैं। तब जब पहला भिक्षु आता है रोते हुए अपने गुरु से मिलने अगले दिन, वो देखता है कि ये तो बिल्कुल शांत है, मज़े से अपने चाय के कप में चाय पी रहा है और मैं रो रहा हूँ। तो वो जाता है, उससे पूछता है कि क्या तुझे दुख नहीं हुआ, तेरा भी तो कप टूट गया है। इस पर दूसरा भिक्षु कहता है कि भाई, टूटा हुआ कप अब नहीं है, उसके लिए रोने से वो जुड़ नहीं जाएगा, लेकिन प्यास अभी भी है, उसके लिए कुछ करना है। तो जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। और इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी समस्याएं वहीं की वहीं रहती हैं, सोल्यूशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, हमें सोल्यूशंस पर, जो उसके सोल्यूशन है उस पर फोकस करना चाहिए, बजाय हमें प्रॉब्लम सेंट्रिक होने के कि ये चीज़ है, हाय अब क्या होगा। जिस तरह से उनका कप टूट गया, कप टूट गया तो कप दूसरा आ सकता है, जो चीज़ दोबारा आ सकती है, ली जा सकती है, उस पर हमें अपना समय और एनर्जी व्यर्थ नहीं करना चाहिए, हमें अपने इमोशंस भी वेस्ट नहीं करने चाहिए, बल्कि उस चीज़ को वहीं पर अपने धैर्य के साथ संभालना चाहिए कि हाँ कब तो दोबारा भी बन सकता है, इसलिए उस पर फोकस करना चाहिए। तो जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास होती है ना, कई चीज़ें होती हैं, हम उसमें उलझ कर रह जाते हैं, कई बार समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, असल समस्या क्या है, हमें किस चीज़ पर फोकस करना है। लेकिन जब हम ठंडे दिमाग से सब चीज़ें देखते हैं ना धैर्य के साथ, तब हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है और किस चीज़ पर एक्चुअल फोकस करना है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 अप्रैल तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर कॉल भी कर सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या

0: पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं सुप्रभात रेणु भट्ट के साथ आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर आप जुड़े हुए हैं और ढेर सारी बातें हम कर रहे हैं और ढेर सारी बातें आप ही हमें बताते रहते हैं। तो आप इन बातों का सिलसिला मत रोके, आप हमें मेल कर सकते हैं feedback@fmrainbow.com पर। feedback@fmrainbow.com पर आपको हमें मेल करना है और बताना है कि क्या बात है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं। बिंदास तरीके से आप हमें मेल कीजिए ताकि आपके मेल्स को बिंदास बोल में लिया जा सके। आप हमसे जुड़े हुए हैं कई माध्यम से, आप फ्रीक्वेंसीज के जरिए हमसे जुड़े हुए हैं, आप ऐप के थ्रू हमसे जुड़े हैं, ऑनलाइन आप हमसे जुड़े हैं और हम चाहते हैं कि आप अपनी दोस्ती इसी तरह हमारे से बनाए रखें। और अभी फिलहाल कैलाश खेर की आवाज़ में आप सभी के लिए बेहद खूबसूरत ट्रैक सुप्रभात में।

चलिए अब आपको बता देते हैं उन सभी कार्यक्रमों के बारे में जिन्हें आप दिन भर आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर सुन सकते हैं। अब से कुछ ही देर में यानी कि 7:05 पर आप सुनेंगे गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर निखिल कुमार के साथ, और गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर की दूसरे घंटे यानी कि ठीक 8 बजे आपसे मिलने आऊंगी मैं। 9 बजे के समय रहेगा दिल के तराने गाने नए पुराने का, निखिल ही रहेंगे आपके साथ। और 10:05 पर आपके साथ रहने वाले हैं शालिका कपूर वसंत म्यूजिक के प्रोग्राम मैचलेस म्यूजिक आर में। सत्य लेकर आएंगे बॉलीवुड ट्रेल्स 11:05 पर, बॉलीवुड की सभी ताजा तरीन हलचल से भरा हुआ वो प्रोग्राम आप जरूर सुने। और 12:05 पर शालिका कपूर ही रहेंगे आपके साथ प्ले इट कूल में। रेनबो हेल्पलाइन का समय है 1:05, सत्य रहने वाले हैं आपके साथ। और आज का हमारा टॉपिक है स्पिरिचुअल इकोनॉमी अ न्यू इंजन फॉर इंडियाज डेवलपमेंट। हमारे गेस्ट रहने वाले हैं डॉक्टर राकेश कुमार सिंह। 2 बजे के समय आशियाना का शालिनी खंडेलवाल रहेंगे आपके साथ। और 3 बजे रेडियो डॉक्टर में आज हम बात करने वाले हैं फैटी लीवर कॉजेज सिम्टम्स एंड क्योर के ऊपर। आज हमारे एक्सपर्ट रहेंगे डॉक्टर वैशाली भारद्वाज, प्रोफेसर इन हेड डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डॉक्टर RML हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से। अल्फा जेन शालिनी के साथ आप सुन सकते हैं 4:05 पर, टॉपिक रहेगा योग फॉर यूथ। और हमारे गेस्ट रहेंगे अनन्या दहिया। 5:05 पर आप सुनेंगे सिटी लाइट्स विनीता बेदी के साथ। और मैसेज मसाला मिक्स लेकर आने वाली है भारती डैंग 6:05 पर। 7:05 पर आप सुनेंगे वेस्टर्न म्यूजिक के प्रोग्राम मनन ठकराल के साथ, और आपको फीफा वर्ल्ड कप 2026 की अपडेट्स भी दी जाएंगी। 8 बजे के समय म्यूजिक मस्ती का भारती के साथ रहेंगे आप। और 9 बजे आपकी याद आती रहेगी, मैं आपके साथ रहने वाली रेशमा फारूकी और मनन ही आपके साथ रहेंगे वेस्टर्न म्यूजिक के प्रोग्राम में 10:05 पर। और 11:05 पर रंगे महफिल में रेशमा के साथ रहेंगे आप। और हम चाहते हैं कि आप इसी तरह से हमारे सभी कार्यक्रमों में अपना प्रेजेंस दिखाएं, हमारे साथ बने रहें। फिलहाल ये बेहद खूबसूरत ट्रैक मोहित चौहान की आवाज़ में आप सभी के

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

जितना अजीब आप बनना चाहते हैं बन सकते हैं, जितने कह सकते हैं कि बिंदास आप बनना चाहते हैं बने, लेकिन लेकिन दूसरे को आप हर्ट ना करें, दूसरे को आपकी वजह से दिक्कत ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और इस बात का ध्यान बिल्कुल रखें कि हम जैसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं उसको स्वीकार कर लेते हैं जैसी वो हैं, तो हम बहुत हद तक अपना मानसिक तनाव और संघर्ष को समाप्त कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, खुश हो सकते हैं। तो खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप भी खुश रहें और दूसरे को भी खुश रखें। इसी बात के साथ मैं रेणु भट्ट ले लेती हूँ आप सभी से इजाजत। आप बने रहे आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर, सुप्रभात सुन रहे थे आप, कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। तो यूं ही आप बने रहे हमारे साथ, और फिलहाल आप सभी के लिए बेहद खूबसूरत ट्रैक, गुड बाय एंड टेक केयर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्र शामिल हैं।
1: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल रहेंगे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी आज से UGC नेट जून 2026 की परीक्षा शुरू करेगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में इस महीने की 30 तारीख तक प्रतिदिन 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF और सहायक प्रोफेसर के पदों तथा PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि

विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान कैप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर महिला और पुरुष क्रिकेट दोनों में 200 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एक बहुत ही खूबसूरत से ट्रैक के साथ शुरुआत हुई इस प्रोग्राम की, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, और मैं हूं आपका दोस्त आरजे निखिल। और इस प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि आज के दिन की कौन सी प्रमुख घटना है जिनका जिक्र हम आपके सामने कर रहे हैं। आपको बता दें कि वर्ष 1740 में आज के दिन ही पर्शिया के राजा फ्रेडरिक द्वितीय ने प्रेस की स्वतंत्रता की गारंटी ली, और वर्ष 1799 में ब्रिटेन और रूस ने बातापी से गणराज्य पर हमला करने का फैसला किया था। आपको बता दें कि आज के दिन ही वर्ष 1814 में HMS लैंडर ने USS रेटल स्नेक को सेबल आइलैंड नोवा कोस्टिया में हराया था। और आज के दिन ही वर्ष 1857 में लंदन में विक्टोरिया और एल्बर्ट संग्रहालय आधिकारिक तौर पर रानी विक्टोरिया द्वारा खोला गया था। वर्ष 1865 में आज का दिन था जब डॉक्टर डब्ल्यू जी ग्रीस ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट की शुरुआत की थी। आपको बता दें कि वर्ष 1897 में आज के दिन ही चाफेकर बंधुओं दामोदर और बालकृष्ण ने पुणे में ब्रिटिश अधिकारी रैंड को गोली मारी थी। वर्ष 1906 में आज के दिन ही स्वीडन ने अपना राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। आज का दिन था जब वर्ष 1911 में किंग जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा बनाया गया था। आज के दिन ही वर्ष 1918 में स्पेनिश फ्लू ने महामारी का रूप लिया, और इसकी वजह से 6 महीनों के अंदर 30 मिलियन से ज्यादा लोग मारे गए थे। और आपको बता दें कि आज के दिन ही वर्ष 1940 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, और आज के दिन ही वर्ष 1941 में लुथियानिया ने जून विद्रोह शुरू किया, वहीं हिटलर ने तत्कालीन सोवियत रूस पर हमला किया था। आपको बता दें कि आज का दिन था जब वर्ष 1944 में अमेरिका ने सेवानिवृत्त सैनिकों की मदद के लिए एक कानून बनाया था, और भारत में वर्ष 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा शुरू की गई और सेंसरशिप भी शुरू हुई थी। और आपको बता दें कि आज के दिन ही वर्ष 1990 में फिलीपींस में माउंट डेडिकास के पानी के नीचे ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था। और आपको बता दें कि वर्ष 2009 में आज के दिन ही 21वीं सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण भी देखा गया था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM रेनबो 102.6 चैनल, और प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, आपके दोस्त आरजे निखिल के साथ में। एंजॉय कीजिए इस बहुत ही ब्यूटीफुल से ट्रैक को।

और शो तो आप समय है कुछ जानी मानी हस्तियों को याद करने का। तो आपको बता दें कि आज सबसे पहले हम याद कर रहे हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। वे हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के एक प्रतिष्ठित कवि के रूप में जाने जाते हैं, जिन्हें ब्रज भाषा का अंतिम महान कवि भी कहा जाता है। उन्होंने ऐसे समय में ब्रज भाषा के उत्कृष्ट काव्य की रचना की जब खड़ी बोली हिंदी का प्रभाव तेजी से बढ़ा। उनकी काव्य रचनाओं में भक्ति, श्रृंगार, करुणा तथा प्रकृति चित्रण का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। वे छंद, अलंकार और रस विधान के कुशल कलाकार थे और उनकी भाषा अत्यंत परिष्कृत, मधुर और साहित्यिक मानी जाती है। और आपको बता दें कि उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति जो है वो है उद्धव शतक। इस रचना में उन्होंने श्री कृष्ण, उद्धव और गोपियों के संवादों के माध्यम से प्रेम तथा भक्ति की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। इसके अलावा उन्होंने गंगा अवतरण, गंगा लहरी, विष्णु लहरी, श्रृंगार लहरी तथा रत्नाष्टक जैसी कई महत्वपूर्ण रचनाएं भी लिखी हैं। और श्रोताओं आपको बता दें कि आज ही हम याद कर रहे हैं केदारनाथ अग्रवाल को भी, आज उनकी भी पुण्यतिथि है। वे हिंदी साहित्य के प्रगतिशील काव्य आंदोलन के प्रमुख कवि माने जाते हैं। हालांकि पेशे से वे वकील थे, लेकिन उनकी पहचान एक जनवादी और प्रगतिशील कवि के रूप में काफी की जाती है। उनकी कविताओं में श्रमिकों, किसानों, आम जनजीवन, प्रकृति और प्रेम का अत्यंत सजीव चित्रण हमें देखने को मिलता है। उनकी भाषा सरल, सहज, प्रभावशाली और बोलचाल के निकट भी कही जाती है, जिससे उनकी कविताएं सीधे पढ़ने वालों के हृदय को स्पर्श करती हैं। आपको बता दें कि प्रकृति और नारी सौंदर्य का चित्रण भी उनकी कविताओं में प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। उनकी प्रमुख रचनाओं की हम बात करते हैं तो युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, हे मेरी तुम, पंख और पतवार तथा लोक और आलोक जैसी रचनाएं शामिल हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुए थे।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
3: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
5: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक 23 डिलीवरी।
4: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
5: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
4: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

और श्रोता, आपको बता दें कि आज ही हम याद कर रहे हैं एलवी प्रसाद को, जिनका पूरा नाम था अक्कीनेनी लक्ष्मी वर प्रसाद राव। वे भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और स्टूडियो निर्माता थे। आज उनकी भी पुण्यतिथि है। वे भारतीय फिल्म उद्योग के उन विरले व्यक्तित्वों में शामिल हैं जिन्होंने मूक फिल्मों से लेकर के बोलती फिल्मों और रंगीन फिल्मों तक के विकास को निकट से देखा और उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने हिंदी, तेलुगु, तमिल और कई अन्य भारतीय भाषाओं में भी बहुत सी फिल्मों में अभिनय किया, निर्देशन किया और निर्माण भी किया। आपको बता दें कि वे भारत की पहली हिंदी बोलती फिल्म आलमारा, पहली तमिल टॉकी कालिदास और पहली तेलुगु टॉकी भक्त प्रहलाद से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे और ये उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जाती है। भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें 1982 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और आपको हम ये कह सकते हैं कि एलवी प्रसाद ने भारतीय फिल्म उद्योग को तकनीकी, कलात्मक और संस्थागत स्तर पर नई दिशा प्रदान की थी और उनका नाम भारतीय सिनेमा के अग्रणी निर्माताओं में शामिल है। आज हम याद कर रहे हैं

एक खास व्यक्ति को जिनका नाम है भदंत आनंद कौसल्यायन। वे हिंदी साहित्य, बौद्ध दर्शन और भारतीय संस्कृति के प्रसिद्ध विद्वान, लेखक, अनुवादक तथा बौद्ध भिक्षु के रूप में जाने जाते हैं। आज उनकी भी पुण्यतिथि है। हालांकि उनका मूल नाम हरिनाम दास था, लेकिन बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करने के बाद वे भदंत आनंद कौसल्यायन के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने पाली, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और कई अन्य भाषाओं का गहन अध्ययन किया और फिर साहित्य के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे महान चिंतक राहुल सांकृत्यायन के समकालीन माने जाते हैं और देश विदेश की व्यापक यात्राएं उन्होंने की थी। उनकी प्रमुख रचनाओं की हम बात करें तो जो भूल ना सका, रेल का टिकट, बहानेबाजी, दर्शन, बौद्ध धर्म, एक बुद्धिवादी अध्ययन और अनेक पाली तथा बौद्ध ग्रंथों के अनुवाद शामिल हैं। उनकी भाषा को सरल, प्रांजल, तार्किक और प्रभावशाली भी कहा जाता है। एक और बहुत ही खूबसूरत संगीत आपके लिए FM रेनबो 102.6 पर एंजॉय कीजिए सर।

और श्रोता, आपको बता दें कि आज हम याद कर रहे हैं अमरीश पुरी साहब को, जो कि भारतीय सिनेमा और रंगमंच के महान अभिनेताओं में से गिने जाते हैं। आज उनकी जयंती है। उन्होंने अपने अभिनय जीवन की शुरुआत की रंगमंच से और उसके बाद हिंदी सिनेमा के सबसे प्रभावशाली चरित्र अभिनेताओं और खलनायकों के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। उनकी गहरी दमदार आवाज, प्रभावशाली व्यक्तित्व और सशक्त अभिनय शैली उन्हें भारतीय फिल्म जगत में अद्वितीय स्थान दिलाया। उन्होंने लगभग अपने 4 दशक की फिल्मी करियर में 400 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और हिंदी फिल्मों के साथ साथ उन्होंने पंजाबी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम फिल्मों में भी काम किया था। उनकी प्रमुख फिल्मों की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी फिल्मों के नाम हमारे सामने आते हैं, जिनमें निशांत, मंथन, गांधी, मंडी, हीरो, कुली, मिस्टर इंडिया, नगीना, लोहा, घायल, विश्वात्मा, दामिनी, करण अर्जुन और कोयला जैसी तमाम फिल्में सामने हमारे आती हैं। इसके अलावा उन्होंने अलग अलग तरह के किरदार भी निभाए थे और ख़ासतौर पर हलचल फिल्म में निभाया गया उनका जो एक पिता का किरदार था, वो जो था बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। और आपको बता दें कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जगत में भी काम किया। इंडियाना जोन्स एंड द टेंपल ऑफ डूम में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने कई सारे पुरस्कार प्राप्त किए और आपको बता दें कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण

हर्षदा, आपको हम ये बता दें कि आज ही जयंती है टॉम अल्टर की, जो भारतीय सिनेमा, रंगमंच और टेलीविजन के प्रसिद्ध अभिनेता, लेखक और पत्रकार तथा शिक्षाविद के रूप में जाने जाते हैं। आज उनकी जयंती है। उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी एफटीआईआई से अपने अभिनय का प्रशिक्षण प्राप्त किया और उसके बाद उन्होंने अपने अभिनय जीवन की शुरुआत की थी। उन्होंने हिंदी फिल्मों, टेलीविजन धारावाहिकों और रंगमंच में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई थी। उनकी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी पर समान पकड़ थी, जिसके कारण वे अनेक प्रकार की भूमिकाओं को निभाने में सक्षम हुए। टॉम अल्टर ने 300 से अधिक फिल्मों और अनेक टीवी धारावाहिकों में अभिनय किया था। उनकी मुख्य फिल्मों की जब हम बात करते हैं, बहुत सारी फिल्में हमारे सामने आ जाती हैं, जिनमें मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो शतरंज के खिलाड़ी, आशिकी, क्रांति, गांधी, परिंदा जैसी फिल्में शामिल हैं। उन्हें 2008 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अपनी प्रतिभा, सरल व्यक्तित्व और कला के प्रति समर्पण के कारण वे आज भी मनोरंजन जगत में एक सम्मानित व्यक्तित्व के रूप में याद किए जाते हैं। और आपको बता दें कि फिलहाल स्टूडियो में पहुंच चुके हैं शिवेंद्र लेकर के तमाम खेल खबरों को, जो बहुत ही जल्द आपके साथ जुड़ जाएंगे। आप बने रहें आकाशवाणी के एफएम रेनबो 102.6 पर। मुझे दीजिए कुछ समय के लिए अनुमति, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स।
1: भारत को एक से जीत गया, भारत विश्व हॉकी चैंपियन।
2: हिस्ट्री मेड इन टेम्परे, हिमा दास हैज डन इट। इंडिया विन बाय 137 रन्स, दे गो 2-1 अप इन द सीरीज।
3: स्पोर्ट्स पल्स
4: नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात साथियों, शिवेंद्र का प्यार भरा नमस्ते स्वीकार कीजिए। और आज खेलों की दुनिया में बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करनी हैं। और खासतौर पर आप सभी जानते हैं कि स्पोर्ट्स पल्स में हमारा ये प्रयास होता है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो खबरें हैं वो आपके साथ शेयर की जाए और उन पर ज्यादा हमारी पैनी नजर रहती है। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले जो भी चल रहे हैं उन पर नजर रहती ही है, लेकिन इंडियन कंटेक्स्ट में हम कोशिश करते हैं अगर कुछ उपलब्धियां रही हों उनके साथ, आपके साथ उनको शेयर किया जाए। और क्रिकेट की खबर की याद आ रही है, इंडिया ए ने कल रविवार को फाइनल खेला, ट्राई सीरीज चल रही थी और दाम्बुला में श्रीलंका में वो फाइनल खेला गया, सामने मेजबान श्रीलंका थी और इंडिया ए ने फाइनल में श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर ट्राई सीरीज अपने नाम कर ली है। इंडिया ए ने दाम्बुला में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट पर 377 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका ए की टीम 47 ओवर और एक गेंद में 311 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत की जीत के हीरो रहे 15 साल के वैभव सूर्यवंशी, उन्होंने सिर्फ 29 गेंदों पर 94 रन की पारी खेली, 10 चौके और 8 छक्के लगाए। वैभव ने महज 11 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 50 ओवर क्रिकेट की सबसे तेज अर्धशतक का नाम भी, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था उसका, अपने नाम कर लिया। उसे कप्तान तिलक वर्मा ने 67 रनों का कंट्रीब्यूशन दिया, योगदान दिया। ऋतुराज गायकवाड़ ने 40 रन बनाए। अनुकूल रॉय ने पारी के आखिर में अच्छा फ्लरिश किया, उन्होंने 15 गेंदों में 39 रन का योगदान दिया। 378 रन का टारगेट कहीं से भी आसान नहीं होने वाला था। श्रीलंका ए की शुरुआत खराब रही, टीम के लिए वनुजा सहान ने सबसे ज्यादा 62 रन की पारी खेली। सदीरा समर विक्रमा ने 52 रन बनाए। भारत ए के लिए यश ठाकुर और विप्रज निगम ने 3-3 विकेट हासिल किए। वैभव से पहले अगर बात की जाए 50-50 ओवर के संस्करण में सबसे तेज रफ्तार से बनाई गई हाफ सेंचुरी श्रीलंका के कौशल वीरात्ने ने बनाई थी। उन्होंने 2006 में 12 गेंदों पर 50 रन पूरे किए थे। सीनियर लेवल पर 50 ओवर के क्रिकेट में दो तरीके के मैच होते हैं, हम आपको बता दें, लिस्ट ए और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच यानी वनडे इंटरनेशनल। और हर वनडे इंटरनेशनल अपने आप में एक लिस्ट ए मैच भी होता है। वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड है एबी डिविलियर्स और मैथ्यू फोर्ड के नाम। दोनों बल्लेबाजों ने 16-16 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया है। साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स 18 जनवरी 2015 को जोहानिसबर्ग में वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने 44 गेंदों में 149 रन बनाए थे और 16 गेंदों में 50 रन पूरे किए थे। 23 मई 2025 को पिछले साल डबलिन में वेस्टइंडीज के मैथ्यू फोर्ड ने आयरलैंड के खिलाफ 50 रन लगा करके डिविलियर्स के रिकॉर्ड की बराबरी की।

0: थी। और सम टोटल लबोलुआ भी है हमारी बातचीत का कि भारत ए का जो दौरा रहा ट्राई सीरीज, वहां पर भारतीय टीम ने खिताब जीता और वैभव सूर्यवंशी फाइनल मुकाबले में टीम की जीत के नायक रहे। हॉकी से भी अच्छी खबरें आ रही हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH नेशंस कप 2026 का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 2-0 से हराया और पहली बार प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। भारतीय टीम ने लगातार दबाव बनाए रखा। कप्तान और गोलकीपर सविता पूनिया ने चौथे क्वार्टर में न्यूजीलैंड के एकमात्र पेनल्टी कॉर्नर को बचा करके टीम की जो एक डिफेंस रक्षा पंक्ति थी उसको भी मुस्तैद बना करके रखा। नवनीत कौर ने भारत के लिए चौथे मिनट में गोल किया था और पहले क्वार्टर के आखिरी मिनट में सुनेलिता टोप्पो ने दीपिका के ड्रैग फ्लिक को डिफ्लेक्ट करके गोल 2-0 कर दिया था। तो भारत ने न्यूजीलैंड को 2-0 से हराया, नेशंस कप हॉकी का खिताब जीता और पहली बार प्रो लीग में जगह बनाई। स्क्वाश से भी भारत के लिए अच्छी खबरें आई। अभय सिंह और वेलावन सेंथिल कुमार की भारत की टॉप सीडेड जोड़ी ने रविवार को यानी कल ही मलेशिया में एशियन डबल्स स्क्वाश चैंपियनशिप में, युगल स्क्वाश चैंपियनशिप में लगातार तीसरी बार खिताब जीत करके महाद्वीपीय स्तर पर अपना दबदबा कायम रखा है। भारतीय जोड़ी अभय सिंह और वेलावन सेंथिल कुमार, उन्होंने एक गेम से पिछड़ने के बाद बेहतरीन वापसी की और पाकिस्तान के नासिर इकबाल और नूर जमा की जोड़ी को, जो कि सेकेंड सीडेड जोड़ी थी और भारतीय जोड़ी थी वो शीर्ष वरीयता प्राप्त थी, तो पाकिस्तान की सेकेंड सीडेड जोड़ी को 47 मिनट में 7-11, 11-7, 11-2 से हराया। ये भी एक संयोग है साथियों कि पिछले साल भी अभय और वेलावन सेंथिल कुमार ने फाइनल में पाकिस्तान की इसी जोड़ी को पराजित किया था, तो इस बार भी वो सिलसिला जारी रहा और इस जीत के साथ ही अभय और वेलावन ने पुरुष युगल स्क्वाश खिताब की हैट्रिक पूरी की। उन्होंने एशियाई युगल स्क्वाश चैंपियनशिप की अब तक की तीनों प्रतियोगिताओं में डबल्स टाइटल जीता है। अनुभवी जोशना चिनप्पा भारत की एक बहुत ही सीजन्ड कैंपेनर है। उन्होंने दो अन्य वर्गों में पदक हासिल किए। जोशना और रतिका सीलन की दूसरी वरीयता प्राप्त महिला युगल जोड़ी ने सेमीफाइनल में पहुंच करके ब्रॉन्ज मेडल जीता। जोशना और वेलावन सेंथिल कुमार ने मिक्स डबल्स इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। जेनेट और पुणे में चल रही थी, वहां पर भी पहले दिन भारत ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था, 2 स्वर्ण पदकों से एक शुरुआत की थी, एक ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था और महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत का दबदबा साफ देखने को मिला, जहां पर सेजल कांबले ने शानदार निशाना साधते हुए गोल्ड मेडल जीता। हिमांशी भारत की एक और निशानेबाज, उन्होंने इसी इवेंट में यानी 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में सेजल कांबले, वंशिका चौधरी और नव्या विश्नोई की टिकड़ी ने शानदार तालमेल दिखाया, 1700 अंक बनाए, टॉप स्थान उन्होंने पोडियम फिनिश किया, स्वर्ण पदक हासिल किया। तो हर तरफ जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में या फिर एशियन स्क्वाश चैंपियनशिप में या फिर हॉकी में भारतीय टीम ने नेशंस कप जीता, भारतीय महिला हॉकी टीम ने, और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी, जो कि प्रो लीग का रॉटरडम यानी नेदरलैंड में अपना चरण खेल रही थी, उसने नेदरलैंड की टीम, जो कि बहुत ही सशक्त टीम मानी जाती है, उसको पराजित किया लगातार दूसरे मैच में और इसके साथ ही एक सुखद समापन किया रॉटरडम के चरण का। तो कुल मिलाकर के अच्छी खबरें भारतीय परिप्रेक्ष्य में आती रही हैं, जिनको हमने आपके साथ शेयर किया। क्रिकेट की हमने एक खबर आपके साथ शेयर की है, और भी खबरें हैं। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्दी से वापस आएंगे।
1: इस समय आकाशवाणी दिल्ली से आप सुन रहे हैं खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स।
0: एक बार फिर से आपका स्वागत स्पोर्ट्स पल्स में। भारत को महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 में पहली हार का सामना करना पड़ा है। कल साथियों ये मुकाबला खेला गया साउथ अफ्रीका के साथ भारत का, और वहां पर मैनचेस्टर में ये मैच था। साउथ अफ्रीका ने 6 विकेट से जीत दर्ज की। भारत ने पहले बल्लेबाजी की, 20 ओवर में 7 विकेट पर 158 रन बनाए। जवाब में साउथ अफ्रीका ने 19 ओवर और 1 गेंद में 5 गेंदें शेष रहते जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया 4 विकेट खोकर। टूर्नामेंट में दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़ा रन चेज भी रहा। साउथ अफ्रीका के लिए मैरिजन कैप ने, जो कि बहुत ही सीजन कैंपेनर है, बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं, अच्छी गेंदबाजी भी करती हैं, एक इनफैक्ट बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, उन्होंने 45 गेंदों में नाबाद 81 रन बनाए, 7 चौके 4 छक्के लगाए। गेंदबाजी में जैसा हमने कहा उन्होंने 2 विकेट भी झटके, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। भारतीय टीम तेज शुरुआत की थी, भारतीय टीम ने टॉस जीत करके बल्लेबाजी करने उतरी थी। शेफाली वर्मा ने सिर्फ 15 गेंदों में 31 रन बनाए थे, 4 चौके 1 छक्का लगाया था। स्मृति मंधाना ने 12 गेंदों में 17 रन बनाए, बड़े अजीबोगरीब अंदाज अंदाज में वो आउट हुई थी, विकेट कीपर के ऊपर से स्लैश करना चाहती थी गेंद को, और भारत

0: पावर प्ले में 59 रन बनाए थे, लेकिन नियमित अंतराल पर भारत के विकेट गिरते रहे। यस्तिका भाटिया ने 15 रन बनाए, जेमिमा रोड्रिग्स ने 12 रन बनाए, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 24 और दीप्ति शर्मा ने 29 रन का योगदान दिया। ऋचा घोष 15 रन बनाकर के आउट हुई। तो कुल मिलाकर के भारत पहला मुकाबला, अपना पहली बार इनफैक्ट, पहले दो मुकाबले तो भारतीय टीम जीती थी, पाकिस्तान को हराया, नीदरलैंड को हराया, लेकिन साउथ अफ्रीका जो कि एक बहुत ही सशक्त टीम मानी जाती है उससे भारत हार गया। वुमेन T20 वर्ल्ड कप के अपने पिछले मुकाबले में कल जो खेला गया, 6 विकेट से साउथ अफ्रीका की टीम ने जीत दर्ज की। तो भारत की राह अभी ऐसा तो नहीं है कि सेमीफाइनल की राह लगभग बहुत असंभव सी हो चुकी है, भारत को अभी दो मैचेस और खेलने हैं, और भारत अगर एक मैच जीत लेता है उन दो में से, ऑस्ट्रेलिया से ऑफकोर्स एक मुकाबला है, बहुत ही सशक्त टीम है वो, तो भारत अगर अपने दो में से एक मैच जीत लेता है तो सेमीफाइनल की राह आसान हो सकती है। भारत के लिए कल हरमनप्रीत कौर जो कि भारत की कप्तान भी हैं, उन्होंने अपने 200 T20 इंटरनेशनल मैचेस पूरे किए, 200वां मैच वो खेल रही थी, और व्यक्तिगत तौर पर और एक खिलाड़ी के तौर पर, एक टीम की कप्तान के तौर पर भारत को सक्षम नेतृत्व हरमनप्रीत कौर ने प्रदान किया है। और आविष्कार सालवी जो कि भारत के गेंदबाजी कोच हैं, वो इस प्रदर्शन के बारे में, हरमनप्रीत कौर के बारे में खास तौर पर क्या कह रहे थे, आइए सुनते हैं।
1: Which she's been a performer. I mean, she's, her work ethics-wise, if you ask me, keeps on working on the basics. She keeps on talking about the game. She shares a lot of experience with the youngsters. So that also is a dimension where she comes in, contributes into the, you know, basically in the captain, she contributes. But as a senior player also, she contributes with the younger generation where she passes on a lot of information.
0: जी, आविष्कार सालवी कह रहे थे कि चूंकि हरमनप्रीत कौर बहुत ही अनुभवी हैं, तो टीम में जो युवा खिलाड़ी आते हैं उनके लिए भी वो एक मेंटोर का काम करती हुई नजर आती हैं, और बतौर कप्तान भी 200वां इंटरनेशनल मैच कल हरमन ने खेला, और इस मुकाम पर पहुंचने वाली भारत की पहली और दुनिया की दूसरी खिलाड़ी हैं। इंग्लैंड की चार्लोट एडवर्ड्स, उन्होंने 220 मैचेस में इंटरनेशनल मुकाबलों में अपने देश का नेतृत्व किया है। हरमनप्रीत कौर 200 मैचेस में नेतृत्व कर चुकी हैं। हैदर नाइट एक और बेहतरीन खिलाड़ी इंग्लैंड की, उन्होंने 199 मैचों में अपने कंट्री को लीड किया था। मिथाली राज भारत की पूर्व कप्तान, उन्होंने 195 मैचों में भारत का नेतृत्व किया था इंटरनेशनल मुकाबलों में, चाहे वो वनडे मुकाबले हों या T20 इंटरनेशनल। और चमरी अट्टापट्टू जो कि श्रीलंका की खिलाड़ी हैं, वो अगले पायदान पर हैं। 183 मैचेस में उन्होंने टीम को लीड किया। 182 मैचेस में मैग लेनिन ने टीम के कप्तान की जिम्मेदारी संभाली थी। तो कुल मिलाकर के महिला क्रिकेट के हिसाब से कल परिणाम तो अपेक्षित नहीं आया, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि आगे आने वाले समय में जब अगले मैचेस होंगे तो भारतीय टीम वहां अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब होगी। और भारत और अफगानिस्तान की टीमों के बीच तीन एक दिवसीय मुकाबलों की श्रृंखला खेली जा रही थी, भारत ने वो 3-0 से जीत ली है। तीसरा और अंतिम ओडीआई चेन्नई में खेला गया, जहां पर अफगानिस्तान ने 218 रन बनाए, भारत ने 224 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर, और मैच 9 विकेट से जीत लिया। क्लीन स्वीप किया भारत ने सीरीज में। यशस्वी जायसवाल ने भारत की ओर से 110 रन बनाए, नॉट आउट रहे। 86 गेंदें जिसमें 14 चौके 3 छक्के शामिल थे। रोहित शर्मा ने 79 रन बनाए। भारत की ओर से गेंदबाजी में प्रसिद्ध कृष्णा ने 23 रन देकर के 5 विकेट लिए, उनको मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया, जबकि प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवार्ड से नवाजा गया शुभमन गिल को, जो भारत का इस श्रृंखला में नेतृत्व कर रहे थे, और उन्होंने अपने नेतृत्व में भारत को पहली ओडीआई सीरीज जिताई है। जीत को शब्द देते हुए ये हैं भारतीय कप्तान शुभमन गिल।
2: The first spell, bowled by Gurnoor and Prasidh was outstanding to see. That kind of pace in those conditions was not easy, but I think they kept putting their effort and kept pushing. We spoke about keeping the intensity in the middle overs, and some of the things that we also spoke about was how can we keep creating those opportunities in the middle overs as a bowling unit, and as a batting unit, how can we keep pushing for that extra runs in the middle overs, and I think a lot of those boxes were ticked.
0: जी हाँ, काफ़ी कुछ पॉजिटिव रहा, सकारात्मक रहा, और जब टीम को जीत मिलती है तो जाहिर सी बात है कि वो बातें मायने रखती हैं। प्रसिद्ध कृष्णा मैन ऑफ द मैच क्या कह रहे थे?
3: Trying to hit the length that as a team, whatever we discuss, what the tactic is, just try and do that a lot more. And also preparation-wise, you just sit back and think about what the games have been like, what do you actually want to do, spend more time thinking about it. And it's just the homework, I would say, that's helping me. Good to see the way the batsman batted. Really, really happy for the team.
0: जी हाँ, टीम ने जीत दर्ज की और प्रसिद्ध कृष्णा प्लेयर ऑफ द मैच बने, मैन ऑफ द मैच बने, तो जाहिर सी बात है सब तरफ खुशी का माहौल था। एक और एथलीट हैं, एक और खिलाड़ी हैं जो कि भारतीय प्रशंसकों के दिल में खुशी का इजहार करते हैं हमेशा अपने प्रदर्शन से, वो है नीरज चोपड़ा।

0: भी खुश हूँ अपने प्रदर्शन से, क्योंकि मैं इंजरी से आ रहा था और काफी टाइम बाद मैं कंपटीशन खेला, तो मैं काफी खुश हूँ अपनी परफॉर्मेंस से। और ये इस साल का पहला कंपटीशन था और अभी तो पूरा सीजन बाकी है। अभी फर्स्ट कंपटीशन खेल लिया, हमको पता लग गया कि हम कितनी फिटनेस पे और कहाँ पे हैं, और अभी बहुत सारा काम करना है। अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 1.5 महीने का और ऑलमोस्ट 40 डेज है काम करने के लिए, तो अभी और हार्ड वर्क करेंगे और इसमें जो भी कमियां हैं उनको पूरा करेंगे।
1: कमियां पूरा करेंगे नीरज चोपड़ा, ऐसा उन्होंने इशारा किया है। बर्थडे की बात करें, आज जस्टिन जॉनसन गोल्फर अपना बर्थडे मना रहे हैं, यांको टिप्सारेविच टेनिस खिलाड़ी अपना बर्थडे मनाते हैं। 23 जून को जिनेडिन जिडान का बर्थडे होता है, साथ ही सतीश शिवलिंगम भारत के वेटलिफ्टर अपना बर्थडे मनाते हैं। तो जो खिलाड़ी अपना बर्थडे इस सप्ताह मना रहे हैं उनको शुभकामनाएं हम प्रेषित करते हैं। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, फिलहाल शिवेंद्र को अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: Himadas has done it. India win by 137 runs. They go 2-1 up in the series.
3: Sports Pulse.
4: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स।

वेल, बहुत भागदौड़ है लाइफ में और इसी लाइफ में, इसी भागदौड़ में हमें रहना है. लेकिन कहीं भी भागें आप, आपको लौट के हमारे पास जरूर आना है. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो चैनल. गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में आप सभी के साथ हूँ मैं रेणु भट्ट. लेकर आई हूँ ढेर सारी बातें, ढेर सारी खबरें जो आपको जानना जरूरी है, आज से जुड़ी हुई है. तो आप तक हम लेकर आते हैं आपको अपडेट रखने का जिम्मा हम निभाते हैं. लेकिन उससे पहले बेहद खूबसूरत ट्रैक आप सभी के लिए लेकर आई हूँ. इस और म्यूजिकल ब्रेक पे जाते हैं और इस ट्रैक को सुनते हैं, लौट कर आते हैं, तब अपनी बातों का सिलसिला जारी रखेंगे. आप यूं ही हमारे साथ बने रहें.

कुछ बातें हमेशा हमारे साथ रहनी चाहिए जो हमारे काम की बातें होती हैं। जितने भी लिसनर्स हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप सभी के लिए, खासतौर पे जो दिल्ली में हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो डीडीए के आरंभ पुस्तकालय में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, शिफ्ट वाइज पढ़ने जा सकते हैं। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप वहाँ पर जाकर अपना समय अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं और प्रोडक्टिव टाइम ले सकते हैं, वहाँ पर पढ़ सकते हैं। और इसके लिए आपको करना होगा डीडीए की वेबसाइट पर जाकर आवेदन। आपको जाना है www.dda.gov.in पर, यहाँ पर जा सकते हैं और आरंभ पुस्तकालय में अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। तो जितने भी लिसनर्स हैं जिनको पढ़ने के लिए और अच्छी जगह चाहिए और शांत वातावरण चाहिए, कई बार होता है ना ऐसा कि चाहकर भी हमारे आसपास इतना शोर होता है और हमें शांतिपूर्ण जगह नहीं मिल पाती है पढ़ने के लिए, तो आप वहां पर जा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आप सुन रहे गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, रेणु भट्ट के साथ।

सुखिंदर सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज और स्टेशन आकाशवाणी का एफएम रेनबो। अच्छा, हम पूरी कोशिश करते हैं अपने एंड पे कि हमारी व्हीकल्स जो हम वाहन इस्तेमाल करते हैं उसमें कोई भी दिक्कत ना आए, उसे हम सही से रखते हैं, प्रदूषण का भी ख्याल रखते हैं, पेपर्स भी अपने पूरे रखते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हम से कई चीज़ें छूट जाती हैं। बहुत ज़रूरी है अपने वाहनों के पूरे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखना। और ऐसा मैं किस लिए कह रही हूँ, मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि एक नवंबर से बिना PUCC के ईंधन नहीं भरा सकेंगे जितने भी व्हीकल ऑनर्स हैं। और बहुत ज़रूरी है कि ये हमारे पास हो, यानी कि वैलिड प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, ये हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब भी आप पेट्रोल पंप पे जाएं तो अपने पास वैलिड रखें। एक्सपायर हो जाता है तो ये ना सोचें कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम करवा लेंगे। होता है कई बार चांस नहीं मिल पाता है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके समय से अपने सारे पेपर्स रखें, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि शीतकालीन वायु गुणवत्ता प्रबंधन व्यवस्था हेतु ये चीज़ को लागू किया जाएगा 1 नवंबर की बात कर रही हूँ मैं। और केवल वैलिड PUCC से ही आपको ईंधन मिलने वाला है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर के जितने भी पंजीकृत गैर BS6 वाणिज्यिक वाहन हैं उनके प्रवेश पर रोक लगेगी, क्योंकि इस समय पर दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन इसमें CNG, इलेक्ट्रिक, आपातकालीन सेवाओं और सरकारी कार्यों से जुड़े वाहनों को इस प्रतिबंध में छूट मिलने वाली है। और भी काफ़ी चीज़ें होने वाली हैं। ये सारी चीज़ें जो है प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए जो इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है उसके तौर पर लिए जाएंगे। तो हमें हमारे एंड पे ये काम करना है कि हमारे एंड पे हमारी सभी चीज़ें पूरी हों ताकि लास्ट मोमेंट हमें कोई भी दिक्कत ना आए।

बीबी नंबर वन से ट्रैक है अभिजीत और अनुराधा श्रीराम की आवाज में आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं, जरूर आपको सुनवाएंगे, सुनवाते रहते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं हम कि आप तक वो सारी चीजें पहुंचे, सारे ऐसे बेमिसाल ट्रैक पहुंचे जो आपके थिरकने पे मजबूर कर दें। और आपको सुनाई दे रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में, तो चलिए सुनते हैं ये ट्रैक।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में आप सभी का स्वागत करती है एक बार फिर से मैं रेणु भट्ट। और आप फ्रीक्वेंसीज के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं और आपके थ्रू भी जुड़े हुए हैं, इंटरनेट के माध्यम से भी जुड़े, यानी कि अलग अलग मीडियम से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहें, मैसेजेस आते हैं आपके, हम चाहते हैं आप हमें ईमेल्स भी करें। आप कर सकते हैं ईमेल feedback@fmrainbow@gmail.com पर, feedback@fmrainbow@gmail.com पर आपको करना है मेल और हमें बताना है कि क्या बात है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं। आप सभी के मेल्स का, मैसेजेस का बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो वेरी मच। और अगर हम अभी टेम्परेचर की ओर नजर डालें तो सूर्य देवता जो है बहुत तेजी से बाहर चमक रहे हैं, एकदम सुनहरा सा मौसम हो रखा है बाहर। और टेम्परेचर की तरफ अगर नजर डालें तो नंबर्स बहुत कम है, 33 डिग्री, लेकिन ज्यादा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत ज्यादा ही कम है, लेकिन गर्मी से हिसाब से बहुत ज्यादा है। तो ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ता जा रहा है, 38 डिग्री सेल्सियस आज का मैक्सिमम टेम्परेचर है और 29 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है। ये टेम्परेचर रहने वाला है, गर्मी बढ़ रही है, अपना ध्यान जरूर रखें। और अपने साथ साथ हमें ध्यान रखने की जरूरत है उन नन्हे नन्हे क्रिएचर्स की जो प्रकृति ने बनाया है और जिसकी वजह से हमारी प्रकृति और ज्यादा खूबसूरत नजर आती है जब हम उनके साथ सामंजस्य बनाकर रहते हैं। छोटे छोटे पक्षी हैं और हमारे आसपास जानवर हैं जो कि किन्हीं वजह से वो अपना ध्यान ना रख पाए इस समय में, जहां पर हमारे लिए ही रहना बहुत मुश्किल होता है, वेदर कंडीशंस जो है एक्सट्रीम होती जाती हैं, तो बहुत बहुत हमारा कर्तव्य बन जाता है बहुत बड़ा कि हम उनका भी ध्यान रखें। बहुत ज्यादा चीजें ना करें तो पानी उनके लिए हम रख सकते हैं ताकि उन्हें इस गर्मी में इधर उधर भागना ना पड़े, क्योंकि आप सभी को पता ना कि इतने टाइम में जब ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है तो कैसा मौसम हो जाता है।

0: की बुलाना ना।
1: अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि जब आपको स्कूल में ड्राइंग करने के लिए कहा जाता था, तो क्या ऐसा एक वो होते ना सिनारियो जो हम बार बार बनाते हैं, जब सीनरी बनाने के लिए कहा जाता था तो पहाड़ के नाम पर हम ऐसे VVV या WWW बना देते थे और एक झोपड़ी नुमा घर बना देते थे, फूल पत्ते बना देते थे, ये हमारी बेस्ट पेंटिंग रहती थी। अगर हम स्कूल के अर्ली डेज की बात करें, जब हम ड्राइंग करना शुरू करते थे, अगर आप मुझसे अभी भी पूछेंगे तो मैं भी शायद अभी यही बनाऊंगी। लेकिन हमारे बीच में कई ऐसे कलाकार हैं जो अपनी कलम से, ये कहें कि हम अपने अपने पेंट से, ब्रश से ऐसी चीज़ें उकेर देते हैं हमारे सामने जो हमने ना सोचा भी नहीं होता, या फिर हम देख कर कहते हैं कि वाह एकदम जीवंत ये पेंटिंग है, ऐसा लग रहा है कि जिंदा पेंटिंग है, लग ही नहीं रही पेंटिंग हाथों से बनाई हुई है, इतनी अच्छी चित्रकला कर दी हमारे सामने। अगर आपको चित्रकला देखने का शौक है, आप रुचि रखते हैं, आपको बहुत इंटरेस्ट है, या फिर आप बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाते हैं, तो ज़रूर आपका दिल करता होगा कि अच्छी पेंटिंग्स देखे भी, तो आप जा सकते हैं इंडिया इंटरनेशनल सेंटर NXC सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे।

फीडबैक। यहाँ पर लगी हुई है कलाकार नेहा बिष्ट की एकल चित्रकला प्रदर्शनी ख्वाबों की दहलीज, और जिसे थ्रेशोल्ड ऑफ ड्रीम्स के नाम से भी रखा गया है। 28 जून तक ये पेंटिंग चलने वाली है, प्रदर्शनी चलने वाली है। प्रवेश निशुल्क है, आप जा सकते हैं और जाएं अब वहां पर देखें, समय निकालिए और घूमाएं, कल्पनाओं की दुनिया में घूमकर आइए, देखिए कि किस तरह से कल्पनाएं अपनी उड़ान भरती हैं और संवेदनाओं को, हमारी जितनी भी संवेदनाएं हैं उनको छूती हैं। तो आप जरूर जाएं, समय निकालें और देख कर आ जाएं। और बने रहे आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

बिल्कुल, कोई भी ऐसा आपका पसंदीदा इंसान हो जो आपको बहुत पसंद हो या कोई चीज आपको बहुत पसंद हो, उसका रास्ता बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ऐसे ही आपको एक ग्रैब करनी अपॉर्चुनिटी अगर आप आईपीयू यूनिवर्सिटी के में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 30 जून तक की विंडो वहां पर ओपन है, आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप एग्जीक्यूटिव एमबीए, एमबीए फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी वीकेंड और पीजी डिप्लोमा इन फायर एंड इंडस्ट्रियल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। और इग्नू से अगर आप पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जरूर आप इस प्रक्रिया का हिस्सा बने, 1 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। याद रखें, इग्नू में 36 पीएचडी कार्यक्रमों के लिए आवेदन के लिए ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं, इस समय पर आमंत्रित किए जा रहे हैं। आप जरूर, आप जो भी आपकी रुचि है, आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस चांस को देख सकते हैं।

बिल्कुल नहीं चाहते कि आपकी मस्ती रुके, इसलिए हम आपको इतने अच्छे अच्छे ट्रैक्स के साथ छोड़े जाते हैं और इतने अच्छे प्रोग्राम्स के साथ छोड़े जाते हैं। कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं आप जो मेरे जाने के बाद सुन सकते हैं आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर, मैं आपको बता देती हूँ। दिल के तराने गाने नए पुराने सुन सकते हैं आप ठीक 9 बजे, निखिल रहेंगे आपके साथ और मैचलेस म्यूजिक आर लेकर आएंगी शालिका कपूर 10:05 पर। 11:05 पर आपके साथ रहेंगे सत्य और बॉलीवुड ट्रेल्स प्रोग्राम रहेगा। आप इन सभी कार्यक्रमों में हमारे साथ बने रहें। अभी फिलहाल मैं रेणु भट्ट ले रही थी आप सभी से इजाजत। गुड बाय एंड टेक केयर।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
4: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
3: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
5: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
6: Hey, did you know? Over the past 12 years, under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, India's defense sector has witnessed a remarkable transformation. From boosting indigenous manufacturing to strengthening defense exports, India is shaping the future of defense with confidence.
7: You are right. In the defense sector, the Ministry of Defense has been creating the right environment for Indian companies to design, develop and build world-class technologies right here at home.
6: Exactly. And one name that's leading this transformation is HAL, Hindustan Aeronautics Limited. From indigenous fighter aircraft and combat helicopters to trainers, transport aircraft and advanced aerospace system, HAL is helping build the future of India's defense.
7: HAL is bringing together private industry and thousands of MSMEs to create a powerful defense manufacturing ecosystem.
6: So, every innovation is taking India one step closer to an Atmanirbhar Bharat, powered by Indian talent, Indian technology and Indian determination.
8: 12 saal vishwas ke, vikas ke, jan kalyan ke.
9: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट।

0: खान, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
0: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
0: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
3: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
5: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: वाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: हे, तुम्हें पता है पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। स्वदेशी उत्पादन और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देकर भारत आत्मविश्वास के साथ रक्षा क्षेत्र के भविष्य का निर्माण कर रहा है।
2: बिल्कुल, रक्षा क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय भारतीय कंपनीज को भारत में ही विश्व स्तर की तकनीकों के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
1: हाँ, सही है। इस बदलाव में HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड अग्रणी भूमिका निभा रहा है। स्वदेशी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों से लेकर प्रशिक्षक परिवहन विमान और उन्नत एरोस्पेस प्रणालियों के माध्यम से ये भारत के रक्षा भविष्य को मजबूत बना रहा है।
2: और सबसे खास बात, HAL ने प्राइवेट इंडस्ट्री और हजारों MSMEs को जोड़कर देश में एक मजबूत एरोस्पेस इकोसिस्टम भी तैयार किया है।
1: इस तरह भारतीय प्रतिभा, तकनीक और संकल्प के बल पर हर नवाचार भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ा रहा है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की, सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना किसी भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समुद्री का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। इस परियोजना का उद्देश्य देश में विलुप्त हो रही वन्य जीवों की प्रजाति को फिर से बढ़ावा देना है। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने उद्यान के चीते प्रबंधन क्षेत्र का दौरा किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की UGC नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से मंगोलिया और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार मंगोलिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री बी बोत्सेते के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद वे 24 और 25 जून को दक्षिण कोरिया का दौरा करेंगे। इस दौरान उनकी दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ वार्ता होगी। डॉ जयशंकर दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित जेजू शांति और समृद्धि मंच में मुख्य भाषण भी देंगे। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वांस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधि मंडलों के बीच बातचीत जारी है। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्ते, गुड मॉर्निंग लवली लिसनर्स, गुड मॉर्निंग एंड अ हैप्पी न्यू डे, अ हैप्पी न्यू वीक एंड अ हैप्पी न्यू लिटिल डेस्टिनेशन कॉल्ड द रेट्रो टाउन व्हिच वी शैल एक्सपीरियंस, व्हिच वी शैल विजिट वाया द MMH, द मैचलेस म्यूजिका। And today with you on this edition is Shalu saying, thank you so much for joining. Welcome, welcome, welcome.

0: 1974 की फिल्म अजनबी, जिसको संगीत से सजाया था राहुल देव बर्मन जी ने, एंड ही डिड समथिंग रियली इनजेनियस, बिकॉज व्हेन दिस पर्टिकुलर ड्यूएट वाज बीइंग डिजाइन्ड, वाज बीइंग मेड, इट वाज शॉट ड्यूरिंग अ म्यूजिशियन स्ट्राइक, सो आर डी बर्मन डिडंट रियली हैव द ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स. So, he did what most creative people do. He got creative and he recorded the sound of a train by clashing two pieces of sandpaper together. And then he used his own mouth and various household items, the odd stuff lying here and there, to bring in that sound to compose the backing track of this song. And talking about this, the reference to the train, this was probably the first in Hindi cinema that the song was shot entirely on top of on the roof of a moving train. Very interesting, isn't it? Well, there's lots of other interesting things happening on this show. That's all about stopping a while in Retro Town and bringing the yesterday live right here on the airwaves of 102.6 Akashwani Rainbow. That, of course, is going to keep happening. But what's going to happen right now is a little break, please.
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा.
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा. NECC द्वारा जनहित में जारी.
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है. दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है.
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल. डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी. अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा.
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस. फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए.
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान. रजिस्टर करें आज ही
5: www.dellytalenthunt.com. कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से.
0: Yes, indeed. Akashwani Rainbow, entirely, completely and totally for your listening pleasure.
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM Rainbow.
0: And now, who has been writing into us? You have lovely listeners, you wonderful, wonderful friends who make such good use of 9868107070. Keep sending in your appreciations and your thumbs up and your regards and your greetings, and it makes our day, makes it more beautiful, makes it so wonderful. So thank you, Rajkumar from Trichy. You're always there and you're enjoying the Bollywood songs. So nice of you to say that. And it's always wonderful to have you with us, dear friend. And then my dear friend Indu Dilliwali, again she is waving to me through that emoticon, and I'm saying the same to her. Very good morning to you, dear friend. Of course, all of you can keep writing in 2 or 9868107070. Your little bits, your inputs, your questions, your answers, or simply the fact that you tuned into us and enjoying this little detour that we are making into the world of the yesterday and bringing it alive here on the airwaves of 102.6 Akashwani Rainbow, on the MMH, the Matchless Musica.

0: Rock with you, MJ. Something that we always want to do when we're together on the airwaves of 102.6 Akashvani Rainbow. We can continue to do that, but what we need to also put in place is a little break. This one for you to listen to.
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय

0: चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित तीन पोतों दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की इस यात्रा को इन नए पोतों से और गति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत की प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। इस परियोजना का उद्देश्य देश में विलुप्त हो रही वन्य जीवों की प्रजाति को फिर से बढ़ावा देना है। राष्ट्रपति ने उद्यान के चीता प्रबंधन क्षेत्र का दौरा किया। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने से मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। 25 घायल यात्रियों का इलाज जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लगभग 32 यात्रियों वाली उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और घायलों के तीव्र स्वस्थ होने की कामना की है। UGC नेट जून की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बताया कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT के माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से मंगोलिया और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार मंगोलिया में श्री जयशंकर विदेश मंत्री बी बत्सिसिग के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। 24 और 25 जून को वे दक्षिण कोरिया की यात्रा करेंगे। इस दौरान डॉ जयशंकर विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ वार्ता करेंगे। डॉ जयशंकर दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित जेजू शांति और समृद्धि मंच में मुख्य भाषण भी देंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका तथा ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन को पूर्णतः शांत करने का साधन है। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा करने के लिए जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सभी सुनने वालों का आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स लेकर आपके साथ हूं मैं इस दिल से दिल तक के सफर पर, हम सफर दोस्त सत्य, और स्वागत करता हूं आप सभी का बॉलीवुड ट्रेल्स में। बॉलीवुड गपशप, क्या कुछ चल रहा है बॉक्स ऑफिस पर, कौन सा एल्बम रिलीज हुआ, कौन सा सॉन्ग रिलीज हुआ, कौन सा पोस्टर रिलीज हुआ, और भी बहुत कुछ अपडेट्स आप सभी के लिए बॉलीवुड ट्रेल्स में। फिलहाल ये वेलकम सॉन्ग आप सभी के लिए, बने रहिए सत्य के साथ।

बॉलीवुड ट्रेल्स में शुरुआत करते हैं। केजीएफ 2 के बाद सुपरस्टार यश की मोस्ट अवेटेड टॉक्सिक अफेयरी टेल फॉर ग्रोनअप्स। जी हां, केजीएफ 2 के बाद वापसी कर रहे हैं सुपरस्टार यश। बार बार पोस्टपोन होने के बाद टॉक्सिक की रिलीज डेट फाइनल हो गई है और इस साल अभी तक सबसे लंबा इंतजार कराया है इस फिल्म ने। पहले 19 मार्च, फिर 4 जून और अब फाइनली 26 अगस्त। 26 अगस्त को यह फिल्म रिलीज हो रही है और इंटरनेशनल लेवल पर रिलीज की तैयारियां पूरी हैं। आपको बता दूं, इसके डायरेक्टर गीतू मोहनदास इसके डायरेक्टर हैं। उनका असली नाम गायत्री दास है। पहली फीचर फिल्म से ही दो दो नेशनल अवार्ड्स, बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट, बेस्ट एक्ट्रेस मलयालम फिल्म फेयर अवार्ड और बहुत कुछ उनके नाम है। बेस्ट डायरेक्टर और ऑस्कर में फिल्म की ऑफिशियल एंट्री, बहुत कुछ उनके नाम है। तो टॉक्सिक का इंतजार आपको भी है, हमें भी है। और आपको बता दूं, एक बार फिर से छाने वाले हैं रॉकी भाई।

और सिर्फ रॉकी भाई का इंतजार नहीं होगा, अगस्त में पांच पांच जो है एक्ट्रेसेस लीड रोल में या कहें सपोर्टिंग रोल में अपने अभिनय का जलवा बिखेरेंगी कियारा, नयनतारा, तारा सुतेरिया और उमा कुरैशी और रुक्मिणी। इंतजार सभी का है, फिल्म देखते हैं जब रिलीज होती है तब क्या जलवा बिखेरती है। फिलहाल बॉक्स ऑफिस की बात करें, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो बाकी जानकारी तो आपको होगी, लेकिन कॉकटेल का क्या हाल चल रहा है? कॉकटेल पिछले तीन दिनों का जो है इसका रिकॉर्ड कैसा रहा? वर्सेटाइल एक्टर शाहिद कपूर जो शुरुआत से ही रोमांटिक, फिर एक्शन और अब फिर से रोमांटिक एक्टर के तौर पर स्क्रीन पर मौजूद हैं कॉकटेल में, और इस फिल्म ने दो दिन में ही, पिछले तीन दिन में लगभग खबरों के हिसाब से अनुमानन 50 करोड़ का बिजनेस किया है अभी तक। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है, नेट ग्रॉस और ओवरसीज कलेक्शन को मिलाकर। दूसरी फिल्में भी कतार में थी, अगर हम बात करें मैं वापस आऊंगा और पेद्दी, इन्होंने भी अच्छा कलेक्शन किया है और अभी भी बराबर टिकी हुई है, लेकिन कॉकटेल जो है अभी तक बाजी मारती दिख रही है। और ओपन इंडिया कलेक्शन के मामले में 2018 में आई शाहिद कपूर की ही पद्मावत और दूसरे नंबर पर कबीर सिंह, और अब कॉकटेल जो है वो पहले नंबर पर है। जी हाँ, और आपको 2012 में रिलीज हुई कॉकटेल 1 तो याद होगी, कॉकटेल जिसमें सैफ अली खान मुख्य भूमिका में थे, दीपिका, डायना पेंटी, और ये फिल्म भी शानदार लाजवाब रही। अब इसी फिल्म का ये सीक्वल आप देख सकते हैं, कॉकटेल 2। डायरेक्टर जो है इसके होमी अज़ानिया, दोनों ही फिल्मों के डायरेक्टर होमी हैं। तो भाई क्या कुछ रहता है आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस का हाल, क्योंकि आगे जो फिल्में रिलीज होने वाली हैं उनका असर भी इनके कलेक्शन पर जरूर पड़ेगा। फिलहाल कॉकटेल का मुझे ये वाला गाना ना, सैफ अली खान वाली, उसका गाना आपको सुनवाता हूं। तुम ही हो बंधु, साथ साथ मुस्कुराइए, गाइए, थोड़ा सा थिरकिए भाई। बॉलीवुड ट्रेल सुन रहे हैं आप सत्य के साथ।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
1: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
2: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
5: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
6: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
7: हे, तुम्हें पता है पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। स्वदेशी उत्पादन और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देकर भारत आत्मविश्वास के साथ रक्षा क्षेत्र के भविष्य का निर्माण कर रहा है।
8: बिल्कुल, रक्षा क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय भारतीय कंपनीज को भारत में ही विश्व स्तर की तकनीकों के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
7: हाँ सही है, इस बदलाव में HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अग्रणी भूमिका निभा रहा है। स्वदेशी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर

0: ट्रैक्टरों से लेकर प्रशिक्षक, परिवहन, विमान और उन्नत एरोस्पेस प्रणालियों के माध्यम से ये भारत के रक्षा भविष्य को मजबूत बना रहा है।
1: और सबसे खास बात, HAL ने प्राइवेट इंडस्ट्री और हजारों MSMEs को जोड़कर देश में एक मजबूत एरोस्पेस इकोसिस्टम भी तैयार किया है।
0: इस तरह भारतीय प्रतिभा, तकनीक और संकल्प के बल पर हर नवाचार भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ा रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

जी हाँ, लोचाए उल्फत तो होगा ही जब बॉलीवुड सरताज का सवाल आपके सामने आएगा। भाई सवाल बॉलीवुड सरताज के लिए बहुत ही आसान है। अभी कुछ देर पहले हमने जिक्र भी किया और सवाल ये है कि कॉकटेल मूवी में, अभी कॉकटेल टू की बात नहीं कर रहा, कॉकटेल मूवी में मुख्य भूमिका में कौन थे? इस कॉकटेल टू में शाहिद कपूर हैं, कॉकटेल वन में मुख्य भूमिका में अभिनेता कौन थे, उनका नाम आपको बताना है। बस बहुत ही सरल सा सवाल और भेज देना आपको 9868107070 पर, 9868107070। फिलहाल एक और प्यारा सा ट्रैक आप सभी के दिलों के भीतर तक उतरता हुआ, बने रहिए सत्य के साथ बॉलीवुड ट्रेल्स में। बॉलीवुड सरताज के बाद हम अभी, इस सवाल के बाद बहुत कुछ बाकी है अभी आपको बॉलीवुड अपडेट्स के बारे में बताता हूँ, एक और खास फिल्म के बारे में, लेकिन इस गाने के बाद।

बॉलीवुड ट्रेल्स में अब अगली जो जानकारी है, ये गीत पता है आपको मैंने क्यों सुनवाया? इस फिल्म के कलाकार आपको याद होंगे, जॉली एलएलबी 2, बाबर आमन, अनु कपूर, सौरभ शुक्ला, उमा कुरैशी, अक्षय कुमार। तो अनु कपूर जो हैं बेहतरीन कलाकार, हाल ही में टीजर रिलीज के बाद चर्चा में आई उनकी फिल्म उत्तर दा पुत्तर, उसका नया पोस्टर रिलीज हुआ है और मेकर्स ने दर्शकों की उत्सुकता बढ़ाने की काफी कोशिश की है। अभिनेता अनु कपूर बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। पोस्टर का विजुअल हटकर है, सरकास्टिक है और फिल्म की जो टैगलाइन है, करम बड़े या किस्मत, ये फिल्म का बेसिक आइडिया है। बेसिकली जिंदगी के फैसले कौन तय करता है, हमारे कर्म या किस्मत, इस पर बेस्ड कुछ इस तरह की स्टोरी लाइन है इसकी। और संदीप कपूर की इस कहानी का निर्देशन रविंद्र सिवाच ने किया है। तो भाई उत्तर दा पुत्तर का हमें इंतजार है, लेकिन आपके उत्तर का भी हमें इंतजार है। बॉलीवुड सरताज का जो सवाल हमने आपसे पूछा है वो जवाब हमें चाहिए जल्द से जल्द। वैसे जवाब आने शुरू हो गए हैं हमारे पास। नंबर एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं, 9868107070, 9868107070। और सवाल भी फिर से दोहरा देता हूं, कॉकटेल जो पहले वाली पुराने वाली 2012 में जो आई थी उसके मुख्य अभिनेता का नाम क्या है, आपको ये बताना है बस और भेज देना है 9868107070 पर। बने रहिए सत्य के साथ बॉलीवुड ट्रेल्स में।

0: जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, ऐसा ही लगता है जब हमें कोई कुछ बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल जो है बॉर्डर टू का ये गीत मैंने आपको सुनवाया, बंटवारा 1947। इस फिल्म में भी दिखेगी बाप बेटी की जोड़ी। जी हां, सनी पाजी के लिए उनके बेटे करण देओल का एक इमोशनल फादर्स डे पोस्ट आया और उसमें लिखा, 14 अगस्त 2026 को वो पल आ रहा है जब मेरा सपना सच होने जा रहा है। सपना, पापा के साथ बड़े पर्दे पर दिखना, एक ऐसा एहसास जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म का सभी को बेसब्री से इंतजार है। खैर, विभाजन की इस अनसुनी कहानी में क्या कुछ खास है वो तो तभी पता चलेगा। फिलहाल एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौट कर आएगा सत्य। बने रहिए बॉलीवुड ट्रेल्स में मेरे यानी सत्य के साथ।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
3: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
2: क्या ये जांच उपलब्ध है?
4: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
5: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
4: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
5: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
6: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
7: यार, मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
8: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
7: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
8: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
9: Hey, did you know? Over the past 12 years, under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, India's defense sector has witnessed a remarkable transformation. From boosting indigenous manufacturing to strengthening defense exports, India is shaping the future of defense with confidence.
10: You are right. In the defense sector, the Ministry of Defense has been creating the right environment for Indian companies to design, develop and build world-class technologies right here at home.
9: Exactly. And one name that's leading this transformation is HAL, Hindustan Aeronautics Limited, from indigenous fighter

0: aircraft and combat helicopters to trainers, transport aircraft and advanced aerospace system, HAL is helping build the future of India's defense.
1: HAL is bringing together private industry and thousands of MSMEs to create a powerful defense manufacturing ecosystem.
0: So, every innovation is taking India one step closer to an Atmanirbhar Bharat, powered by Indian talent, Indian technology and Indian determination.
2: 12 saal vishwas ke, vikas ke, jan kalyan ke.
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: अपने वादे के मुताबिक सत्य एक बार फिर हाजिर है आप सभी के साथ बॉलीवुड ट्रेल्स में। और अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे अनु कपूर, अक्षय कुमार, जॉली LLB 2। अक्षय कुमार का जब जिक्र हुआ है तो उनकी एक आने वाली फिल्म, उनके नहीं जो है बहुत से और भी स्टार्स हैं, स्टार्स की लिस्ट है बहुत लंबी, एक्शन कॉमेडी ड्रामा वेलकम टू द जंगल। जी हाँ, 26 जून को ये फिल्म रिलीज हो रही है दुनिया भर में और प्रमोशन जो है इसका बहुत ही अलग अंदाज में अक्षय कुमार कर रहे हैं। अक्षय ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर लेटेस्ट ट्वीट में लिखा, सावधान, सभी जानवरों को सतर्क किया जाता है, द रियल इडियट्स विल बी रिपोर्टिंग इन 5 days। जाहिर है इससे पता चल रहा है कि एक अच्छी खासी कॉमेडी फिल्म देखने को मिले। अहमद खान का निर्देशन, अक्षय के साथ एक बहुत बड़ी कास्ट, इंतजार है हमें इस फिल्म का। लेकिन आपको किस बात का इंतजार है, हम जानते हैं कि कौन होंगे बॉलीवुड सरताज और साथ ही इस फिल्म का कोई अच्छा सा गाना जिस पर आप थिरक लें। ये गाना आपने पहले भी सुना है तो भाई कई बार सुना है और कई सालों से सुन रहे हैं, एक बार फिर से इस पर थिरकते हैं। और आपको बता दें योग दिवस पर भी बॉलीवुड की जो है बहुत ही खास जो है एनर्जी रही, उस एनर्जी की बात करेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा,

भाई, योग दिवस की हम बात कर रहे थे कि कल योग दिवस पर बॉलीवुड में एक खासी एनर्जी रही, तो बहुत से बॉलीवुड स्टार्स ने जो है अलग अलग जगहों पर योग दिवस में शिरकत की या योग जो है किया और दूसरों को भी प्रेरित किया। तो आपको बता दें, मलाइका अरोड़ा बॉलीवुड की फिटनेस आइकन जिन्होंने जो है योग से भी फैंस को इंस्पायर हमेशा करती रही हैं, माधुरी दीक्षित 57 की एज में भी उतनी ही खूबसूरत और फिट नजर आती हैं और योग करती आ रही हैं। ऋतिक रोशन एक्शन और डांस के लिए तो मशहूर हैं ही, लेकिन उतना ही ध्यान योग पर देते हैं। अक्षय कुमार जो है कल उन्होंने योग में जो है कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 58 की उम्र में भी अक्षय कुमार अपनी फिटनेस के लिए जाने जाते हैं, उनके लाइफस्टाइल की चर्चा हर कोई करता है और सुबह जल्दी उठना, योग करना, रनिंग करना, वो खुद को फिट रखते हैं। और शिल्पा शेट्टी जो कि योग की सबसे बड़ी ब्रांड एम्बेसडर मानी जाती हैं और जो है 50 की उम्र में भी 30 की तरह फिट एनर्जेटिक दिखती हैं, रोज योग प्राणायाम ध्यान करती हैं। तो भाई, योग दिवस पर भी बॉलीवुड ने अपनी तरफ से पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, लोगों को इंस्पायर किया और बॉलीवुड ट्रेल्स में अभी बाकी है बॉलीवुड सरताज। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ये जो धमाल 4 जो है ये रिलीज होने वाली है, धमाल 4 10 जुलाई 2026 को इसकी रिलीज डेट आ गई है। गुलशन कुमार और बता दें टी सीरीज के देवगन फिल्म्स टी सीरीज फिल्म्स मारुति इंटरनेशनल और पेनोरमा स्टूडियोज के साथ मिलकर इसे पेश कर रही हैं और इसमें अजय देवगन, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार ये सभी मिलजुल कर इस फिल्म को सामने लेकर आ रहे हैं। स्टार कास्ट तो आपको याद होगी धमाल की, अजय देवगन हमेशा से इसमें छाए रहे हैं, हर्षद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी और संजय मिश्रा जैसे दमदार कलाकार एक साथ नजर आएंगे। इसके सॉन्ग्स भी बेहतरीन बन पड़े हैं। फिलहाल धमाल सीरीज की पिछली फिल्में आपको याद होंगी, उसका एक गाना आपको सुनवाता हूं। बने रही मेरे साथ, इसके बाद बॉलीवुड सरताज होंगे हमारे साथ।

0: हट जाए।
1: जी हाँ, स्पीकर तो नहीं फटने वाला, लेकिन अभी फिलहाल जो है बॉलीवुड सरताज हमारे साथ होंगे। आज जो सवाल हमने आपसे पूछा उसके सही जवाब बहुत से श्रोताओं ने हमें भेजे हैं, और उसमें कुछ ने तो अपना नाम नहीं लिखा लेकिन उस कलाकार का नाम लिखा जिसका हमने पूछा था, सैफ अली खान। ये सही जवाब बहुत से हमारे साथियों ने भेजा है, लेकिन बॉलीवुड सरताज कौन होंगे वो आपको भी कुछ देर में बताता हूँ। फिलहाल मैं बताता हूँ आपको उनके नाम जिन्होंने हमें सही जवाब भी भेजे हैं। जाहिद अहमद मुजफ्फरनगर से इन्होंने सही जवाब भेजा है। राजकुमार के संतानी अकोला महाराष्ट्र से सही उत्तर लिखकर भेज रहे हैं। बसंत तोमर मेरठ से इन्होंने हमें संदेश लिखा है, सही जवाब। हरीश कौर मेरठ से इनका भी सही जवाब है, और इनका जो है उमेश कुमार खयाला से इन्होंने भी बिल्कुल सही उत्तर हमें दिया है, सैफ अली खान। मोहम्मद फुरकान जो है इन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब, इन्होंने पूरी कास्ट लिखी है, सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण, डियाना पेंटी और जो है डिंपल कपाड़िया। डिंपल कपाड़िया का नाम भी इन्होंने ऐड किया है, वाह बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा हमें सही जवाब भेजने वालों की लिस्ट में है नाम, इन्होंने नाम तो नहीं लिखा अपना। जी हाँ, अनूप साहू, इन्होंने भी बिल्कुल जो है संदेश हमें भेजा है, नाम भी सही भेजा है, सैफ अली खान। शुभ प्रभात बोल रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत जो है दिन की शुभकामनाएं, इस दिन की, आज के दिन की, आपके लिए दिन शुभ हो। सुक्कलाल, इन्होंने वेस्ट बंगाल से हमें संदेश भेजा है, सही जवाब हमें दिया है। जोया का भी हमारे पास सही जवाब आया है, जोया मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया, सैफ अली खान इन्होंने लिखा है, और हमारे पास सही जवाब आया है प्रवीण चौहान का। जय एंड जयनंद त्यागी, इनका भी हमारे पास बिल्कुल सही जवाब। और आज की जो बॉलीवुड सरताज हैं वो हैं ईशा धर्मशाला से। आप बॉलीवुड सरताज हैं आज की ईशा, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। फिलहाल वक्त बहुत कम है, इस गीत के साथ सत्य आपको छोड़कर जा रहा है, बने रहिए सत्य के साथ, अभी कुछ देर बाद फिर आपके साथ रहूंगा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे।

0: बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
1: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जल्दाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा शामिल है। 25 घायल यात्रियों का उपचार जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस, जिला प्रशासन अधिकारी और स्थानीय निवासियों ने तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू किया। राज्य के परिवहन मंत्री आनंदमय बर्मन ने दुर्घटना स्थल और अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया और घायलों के तेजी से स्वस्थ होने की कामना की। यूजीसी नेट जून की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बताया कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। वे मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बिस्किक से साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। कतर के प्रमुख प्राकृतिक गैस निर्यात ढांचे में हुए एक विस्फोट में 54 लोग घायल हो गए और 18 लोग लापता हैं। ये विस्फोट कल रात रास लाफान औद्योगिक क्षेत्र में हुआ, जो दुनिया के प्रमुख ऊर्जा केंद्रों में शामिल है। खबरों के अनुसार क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़े व्यवधानों के बाद संयंत्र में परिचालन कार्य दोबारा शुरू करने का काम चल रहा था। फीफा विश्व कप में मिस्र ने आज सुबह वैंकूवर में न्यूजीलैंड पर 3-1 से जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Yes, that's what we keep asking you to do, lovely listeners, to show your love for us, which actually, to be honest, you are so gracious and generous about, because you do share your love and are being here through your messages, which you send to us on 9868107070. Sometimes they're repeat messages, because as the show progresses, you keep sharing in your encouragement and your thumbs up and appreciation. And every word, every syllable is so precious. Thank you ever so much. So I shall be reading your messages in just a while. But right now, yes, you guessed it, some messages from us to you.
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: टैलेंट तो है, पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
5: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
6: हे, तुम्हें पता है, पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। स्वदेशी उत्पादन और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देकर भारत आत्मविश्वास के साथ रक्षा क्षेत्र के भविष्य का निर्माण कर रहा है।
7: बिल्कुल, रक्षा क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय भारतीय कंपनीज को भारत में ही विश्व स्तर की तकनीकों के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
6: हाँ, सही है, इस बदलाव में HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अग्रणी भूमिका निभा रहा है। स्वदेशी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों से लेकर प्रशिक्षक परिवहन विमान और उन्नत एरोस्पेस प्रणालियों के माध्यम से ये भारत के रक्षा भविष्य को मजबूत बना रहा है।
7: और सबसे खास बात, HAL ने प्राइवेट इंडस्ट्री और हजारों MSMEs को जोड़कर देश में एक मजबूत एरोस्पेस इकोसिस्टम भी तैयार किया है।
6: इस तरह भारतीय प्रतिभा, तकनीक और संकल्प के बल पर हर नवाचार भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ा रहा है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: So that, of course, were some messages, and you, of course, are with us on Akashwani Rainbow. There was never ever doubt about it, was there?
8: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM Rainbow.
0: Now for a seesaw of a song which starts as a mild ballad all about being nice and acoustic, and there's something delicate about it. The piano is very much there, and then something that builds into something that's massive and booming, the rock anthemic kind of a thing. Aerosmith.

0: Fine, the show is moving on, and I think I'll take just a little break again so that things are in place.
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त ये चाय बड़ी है मस्त
2: पता का चाय गजब का स्वाद
3: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या
4: अरे बिल्कुल इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी ओहो यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो पार्सल हो सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा हाँ भाई ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in
5: मैं माँ बनने वाली हूँ बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो
6: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है
5: क्या ये जांच उपलब्ध है
7: जी हाँ सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है
8: याद रखें HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है
7: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं स्वस्थ माँ स्वस्थ शिशु स्वस्थ
8: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें
9: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी
10: हे डिड यू नो ओवर द पास्ट 12 इयर्स अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इंडियाज़ डिफेंस सेक्टर हैज विटनेस्ड अ रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम बूस्टिंग इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग टू स्ट्रेंथनिंग डिफेंस एक्सपोर्ट्स इंडिया इज शेपिंग द फ्यूचर ऑफ डिफेंस विद कॉन्फिडेंस
11: You are right. In the defense sector, the Ministry of Defense has been creating the right environment for Indian companies to design, develop and build world-class technologies right here at home.
10: Exactly. And one name that's leading this transformation is HAL, Hindustan Aeronautics Limited. From indigenous fighter aircraft and combat helicopters to trainers, transport aircraft and advanced aerospace system, HAL is helping build the future of India's defense.
11: HAL is bringing together private industry and thousands of MSMEs to create a powerful defense manufacturing ecosystem.
10: So, every innovation is taking India one step closer to an Atmanirbhar Bharat, powered by Indian talent, Indian technology and Indian determination.
12: 12 saal vishwas ke, vikas ke, jan kalyan ke.
0: All right then, your messages. You know, as the messages keep coming in, of course, I keep inviting more and more because this is one kind of greed that I'm rather happy to admit, even on the airwaves. They can just never be enough. But as they

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कोनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इससे पहले राष्ट्रपति ने कोनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना

पुलिस, जिला प्रशासन अधिकारी और स्थानीय निवासियों ने तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू किया। राज्य के परिवहन मंत्री आनंदमय बर्मन ने दुर्घटना स्थल और अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रूपये का इनाम था। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ सरसावा नाकुर रोड पर हुई। एसटीएफ के अनुसार ललन सिंह और उसके साथी हत्या, बैंक डकैती, कैश वैन लूट और सरकारी हथियारों की चोरी जैसे कई संगीन अपराधों में शामिल थे। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य और एक किसान तथा अन्य निवासी शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। वे मंगोलिया की विदेश मंत्री बी बत्तिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। वहां वे विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 360 अंक बढ़कर 77,163 पर और निफ्टी 105 अंक बढ़कर 24,118 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी। और अगर आपने ट्यून इन कर लिया है आकाशवाणी रेनबो, तो रेनबो हेल्पलाइन का वक्त है ये। और रेनबो हेल्पलाइन में आज एक खास विषय पर चर्चा होने वाली है, और वो विषय है स्पिरिचुअल इकोनॉमी। आपके साथ हूं मैं सत्य, और रेनबो हेल्पलाइन में स्पिरिचुअल इकोनॉमी पर बात करने के लिए हमारे साथ भी एक खास मेहमान है, स्पिरिचुअल इकोनॉमी अ न्यू इंजन फॉर इंडियाज डेवलपमेंट। डॉक्टर राकेश कुमार सिंह हमारे साथ हैं इस वक्त स्टूडियो में, जो कि सहायक प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग में। आपका स्वागत है सर।
2: जी धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत नमस्कार।
1: तो डॉक्टर राकेश आपके सवालों के जवाब देंगे, आपकी जो भी जिज्ञासा है, जो भी प्रश्न है, जो भी आप जानना चाहते हैं स्पिरिचुअल इकोनॉमी के बारे में, वो सभी हम पूछेंगे डॉक्टर राकेश कुमार सिंह से। और साथ ही पहला प्रश्न सर आपसे यही है, स्पिरिचुअल इकोनॉमी ये जो टर्म है, इसको आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से डिफाइन करेंगे, किस तरह से परिभाषित करेंगे?
2: देखिए सत्य जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। आध्यात्मिक अर्थव्यवस्था भारत के मूल में है, और हम आध्यात्मिक

0: आध्यात्मिक अर्थव्यवस्था को एक टेम्पल इकोनॉमी से जोड़ते हैं, साथ ही साथ हम उसको जो वेलनेस है, आयुर्वेदा है, ये सारे जो भी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे भी काम चल रहे हैं, उससे जो जिस तरीके से मानवों का कल्याण हो रहा है उसको हम उसमें देखते हैं। आध्यात्मिक अर्थव्यवस्था हमारी जीव देश की एक बहुत ही बुनियादी अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई चीज़ है, जो भारत को हम विश्व गुरु कहते हैं और हमेशा भारत जो है विश्व को एक दिशा देता रहा है आध्यात्म के क्षेत्र में। वेस्ट जो है विज्ञान की तरफ बढ़ा, ईस्ट जो है हमारा भारत जो है शुरू से गुरु और परंपरा की तरफ आगे है। तो उस परंपरा को आगे बढ़ते हुए किस तरीके से जो भारत की गुरु जो गुरु हैं और हमारी जो परंपरा है वो किस तरीके से इसमें अर्थव्यवस्था में योगदान दे रही है, अगर हम संक्षेप में बोले तो वो आध्यात्मिक अर्थव्यवस्था है। तो कुल मिलाकर के टेम्पल इकोनॉमी, आयुर्वेदा, वेलनेस इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं।
1: तो दायरा बहुत ही विस्तृत है, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अब स्कूल में जब पढ़ते थे तो अक्सर हम अर्थव्यवस्थाओं के बारे में पढ़ते थे, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, लेकिन स्पिरिचुअल इकोनॉमी के बारे में आज बात कर रहे हैं डॉक्टर राकेश कुमार सिंह से। इस स्वागत गीत के साथ आगाज करते हैं इस घंटे का, इस प्रोग्राम का। रेनबो हेल्पलाइन पर इस वक्त आपके साथ हूं मैं सत्य, और हमारे साथ हैं मेहमान विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश कुमार सिंह।

तो भाई अगर स्पिरिचुअल इकोनॉमी पर बात हो और इस खूबसूरत गीत के साथ कार्यक्रम का आगाज हो तो फिर क्या बात है। डॉक्टर राकेश कुमार सिंह हमारे साथ हैं इस वक्त आज विशेष मेहमान के तौर पर स्पिरिचुअल इकोनॉमी पर बात करने के लिए।

0: सर, अगर हम बात करें पिछले एक दशक की, एक डेकेड की, तो स्पिरिचुअल इकोनॉमी का केंद्र क्या रहा? कहां से इसकी शुरुआत मानते हैं? कहां पर ये सबसे ज्यादा इस इकोनॉमी का योगदान रहा, अगर राज्यवार देखें, क्षेत्र के हिसाब से देखें तो?
1: देखिए, पिछले 12 साल में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें योगी आदित्यनाथ जी के, मैंने देखा हूँ लीडरशिप में काफ़ी कार्य हुए हैं। आप किसी भी सर्किट्स की बात करें, आप अयोध्या सर्किट्स की बात करें, आप पाके बिहारी कॉरिडोर सर्किट की बात करें, आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर सर्किट की बात करें, अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। हमने देखा किस तरीके से प्रयागराज में जो है कुंभ मेला का भी आयोजन किया गया, 60 करोड़ से भी ज़्यादा लोग वहाँ पर आए
0: जी।
1: जो आर्थिक आंकड़े कहते हैं कि यूपी राज्य की अगर हम बात करें, जो कि एक रोल मॉडल की तरह प्रदेश को एक एक संदेश दे रहा है, तो उसमें हमने देखा कि कैसे यूपी में 156 करोड़ लोग अभी तक 2025-26 गत वर्ष में अभी तक वहाँ पर आ चुके हैं। तो इतनी बड़ी आप देखते हैं संख्या में लोग आना, उनका जो रुझान होना एक आध्यात्मिक केंद्र की तरह, ये इटसेल्फ एक शो करता है कैसे भारत में जो जो एक नई तरीके से स्पिरिचुअल इकोनॉमी जो है उसमें एक नया एक मोड़ ले रही है और आगे तरफ से बढ़ रही है। इसके पीछे मुझे लगता है जो एक बहुत बड़ा कारण रहा है वो सरकार के द्वारा की गई जो बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या रिटेल सेक्टर की बात करें और जो और भी इससे जुड़े हुए क्षेत्र में जो कार्य किए गए हैं वो बहुत ही लाभदायक रहे हैं। देखिए, मैं इसमें एक बहुत बड़ी बात आपके दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो स्पिरिचुअल इकोनॉमी का जो हमारे देश में काम हुआ है, इसमें एक जो देखते हैं कि विकास के साथ आस्था ही, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक पंचलाइन है कि विकास भी और आस्था
0: भी,
1: तो दोनों को साथ लेकर के हम कैसे आगे बढ़े, और उसमें भारत ने एक विश्व को एक संदेश दिया है। और जैसा कि अभी बड़ा ही एक दिलचस्प चीज आया कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे पेरिस में, तो जो उन्होंने वहां भेंट किया मैक्रोन को, जो वहां के राष्ट्रपति हैं, उनको उन्होंने जो भेंट किया वो चरक संहिता दिया उन्होंने,
0: चरक संहिता दिया।
1: देखिए, तो आयुर्वेद का जो सबसे बड़ा एक हमारे देश का उदाहरण है, तो पूरे देश में किस तरीके से ग्लोबल एम्बेसडर की तरह प्रधानमंत्री जी भी काम कर रहे हैं और साथ ही साथ यूपी में योगी आदित्यनाथ जी ने इस पे काफी कार्य किया है। और उसी को ध्यान में रखते हुए अन्य राज्य भी, आप चाहे महाराष्ट्र की बात करें, त्र्यंबकेश्वर कॉरिडोर की हम बात करें, यूपी में संभल कॉरिडोर है, तिरुपति तो अपना चल ही रहा है काफी समय से, और रामायण सर्किट की हम बात करें, तो पूरे तरीके से इस पे कार्य किए जा रहे हैं। और ये मुझे लगता है भारत की जो आर्थिक थोड़ी बहुत समस्याएं चाहे रोजगार की, उसको भी हल करने में काफी लाभदायक साबित हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है मैं बोलूंगा। और एक जो आयुर्वेदा है, वेलनेस है, टेंपल इकोनॉमी है, सारी चीजें से जुड़े हुए हैं, और छोटे व्यवसाय भी जो इससे जुड़े हुए हैं, चाहे वो आप योगा मैट्स बनाने की बात करें, साउंड हीलिंग बॉल्स बनाने की बात करें, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको होम स्टे के लिए जो है लोन प्रदान किया जा रहा है एमएस जो मुद्रा लोन के माध्यम से, तो सरकार ने इसमें काफी अच्छी नीतियां ही बनाई हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई हैं कि कैसे उनके स्तर पर जाकर उनकी मदद की जाए। उत्तराखंड में सब्सिडीज दी जा रही है कि आप योगा सेंटर बनाएं, स्पिरिचुअल ट्रीट्स बनाएं, तो इस तरीके से लोगों को इस पे काफी लोगों को इसमें प्रेरणा मिली है और एक बहुत ही अच्छे तरीके से सकारात्मक हमें एक संदेश जा रहा है। और ये हम लीजिए लगता है कि भारत फिर से जो एक वापस से वो जो भारत है जो हमारी सोने की चिड़िया है उसकी तरफ रुक कर गया है। और मुझे उम्मीद है ये बहुत ही अच्छा एक अर्थशास्त्र की अगर मैं शब्दों में बोलें तो बहुत अच्छा इसका लाभदायक हमें देखने को मिलेगा
0: जी। अगला प्रश्न मेरा आस्था भी और विकास भी इसी से जुड़ा होगा, लेकिन उससे पहले हमारे श्रोता जो इस वक्त हमसे जुड़े हैं उन्हें भी हम बता दें कि आपके भी यदि कोई प्रश्न है तो आप उन प्रश्नों को पूछ सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं आप हमें। नंबर नोट करें, 9868107070, 9868107070, और जो लैंडलाइन नंबर है वो है 01123421083, 01123421083। इन नंबर्स पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर राकेश कुमार सिंह हमारे साथ हैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। फिलहाल एक और गीत आप सभी के दिलों तक पहुंचने के लिए, क्योंकि दिल से दिल तक का ये सफर है और बात चल रही है स्पिरिचुअल इकोनॉमी की।

0: राकेश जी, आस्था भी और विकास भी, ये जैसा कि आपने बताया और माननीय प्रधानमंत्री जी की भी यही जो है कोशिश रही है, आम आदमी के जीवन पर इसका प्रभाव अगर हम स्पिरिचुअल इकोनॉमी के संदर्भ में देखें तो क्या प्रभाव है आम आदमी के जीवन पर, छोटे व्यवसायियों के जीवन पर, किस तरह से इसने असर डाला है?
1: देखिए, जो आम आदमी है उसके जीवन पे जब से ये श्रृंखला शुरू हुई है स्पिरिचुअल इकोनॉमी में, भारतीय अर्थव्यवस्था, हम देखते हैं कि जो हमारे छोटे उद्योग करने वाले लोग हैं, लघु उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं
0: जी,
1: उन्होंने चाहे वो होम स्टे के माध्यम से हो, चाहे आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज में जो हैंडीक्राफ्ट्स है उस पर कार्य करने की दिशा में हो, एमएसएमई से जो लोन मुहैया कराई गई है उस पर कार्य करने की दिशा में हो, जैसा कि हमने देखा कि अयोध्या में जिस तरीके से पूजनीय श्री राम जन्मभूमि का जो कार्य हुआ है और राम मंदिर का जो वहां पर अपने देखते हैं कि जो भव्य जो वहां पर आयोजन हुआ
0: जी,
1: तो उसमें भी हमने देखा कि जो लोग उससे जुड़े काफी वहां के जो लोकल इकोनॉमी को काफी बूस्ट मिला है। लोकल इकोनॉमी जैसा मैंने आपको बताया, चाहे वो होटल्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, और आपको मैं बहुत एक दिलचस्प बात बताना चाहूंगा कि वहां पर आपने देखा या प्रयागराज का जो महाकुंभ मेला है उसमें से कई ऐसे न्यूज आ रहे थे कि जो नाव चलाने वाले लोग हैं और कार्यक्रम उन्हें काफी एक अच्छे अमाउंट पे पैसे की भी आमदनी की है, कुछ लोगों तो करोड़ों में भी ऐसे आए कि उन्होंने अपनी आमदनी की है। तो मुझे लगता है कि लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करने में, चाहे प्रयागराज का महाकुंभ मेला की बात करें या अयोध्या की हमने बात की है राम जन्मभूमि से, वहां के जो लोकल जो लोग रहने वाले हैं उनके व्यवसाय में काफी वृद्धि हुई है, हमें उसको देखने को मिलता है। साथ ही साथ मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, देखिए जो अभी तक अर्थशास्त्र का जो नियम कहता गया है कि हम कहीं ना कहीं पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें, वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात करें, तो हम कहीं ना कहीं उसका जो उपाय है इकोनॉमी के प्रिंसिपल से ढूंढते हैं, अर्थव्यवस्था के दांव पे से ढूंढते हैं, मगर भारत का जो एक आध्यात्मिक केंद्र रहा है, जो आध्यात्मिक एक झुकाव रहा है, उसने हमेशा ही कहा है कि अर्थशास्त्र के जो जो समस्याएं हैं दुनिया में आज जो भी आप देखिए, चाहे वो गरीबी है या असमानताएं देखते हैं, वो कहीं ना कहीं उसका जो एकमात्र जो रामबाण है जिससे उसको ठीक किया जा सकता है, वो आध्यात्मिक ही, जिसको भारत ने ही दिया है, बहुत पहले भारत ने ही दिया है। क्योंकि आप बात कीजिए, चाहे पतंजलि योग सिद्ध की बात कीजिए, जहां शुरुआत ही होती है अथ योग अनुशासनम, तो एक आप सामान्य छात्र के जीवन में भी देखें एक बड़ा संदेश जाता है कि अगर आप एक अनुशासित जिंदगी जीते हैं तो अनुशासित छात्र हो जाएंगे, अनुशासित शिक्षक हो जाएंगे, अनुशासित लोग हो जाएंगे, तो अनुशासित समाज भी हो जाएगा।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो आप देखें इसमें इतना बड़ा जो संदेश है वो हमारे जो पुस्तकें हैं, हमारे जो उपनिषद है, वेद हैं, जो भी हमारे धार्मिक पुस्तक है उसमें दिया रखा है। और चाहे वो हम सिखिज्म की बात करें, सिख सर्किट्स की भी बात करें, वहां पे भी ये संदेश है। बुद्धिस्ट सर्किट में भी आप देखिए उसमें भी यही संदेश है, किस तरीके से बुद्ध की जो रिलिक्स हैं वो चारों दिशाओं में ले गई थी। और इसलिए भारत में कहा गया है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम ट्रैवल करते हैं, हम तीर्थ स्थल पर जाते हैं, क्योंकि आप चैतन्य महाप्रभु की बात करें वो भी हर भारत की दिशा में जाकर के हरे रामा हरे कृष्णा का उन्हें संदेश दिया। चाहे हम शंकराचार्य जी की बात करें वो भी केरल से निकले और हिमालय तक गए और जो है आप देखते हैं पीठ की स्थापना की। तो ये तो एक सनातन के मूल निवास में है कि किस तरीके से हम भ्रमण करके ज्ञान अर्जित करते हैं और समाज को ही देते हैं। तो ये जो मुझे लगता है कि ये जो हमारे बहुत मूल जो कुछ बातें हैं जो सनातन में है, चाहे वो लोभ हो या क्रोध हो, उसको कैसे हम देख सकते हैं, तो ये उसके बाद ऑटोमेटिकली जो जो इकोनॉमिक्स की जो अर्थव्यवस्था की समस्याएं ठीक हो जाएंगी। अगर सभी कल्याणकारी हो जाएंगे, सभी के मस्तिष्क शांत हो जाएंगे और वो दूसरे के कल्याण में ही अपना कल्याण सोचें, जैसे आप देखिए ना अतिथि देवो भव, अभी अतिथि देवो भव तो आप घर घर में है, हम ये नहीं सोचते कोई आता है तो कि हम उन्हें उनके लिए चार्ज करें, ये हमारे गुण में है, हमारे एक सदियों से परंपरा
0: मूल स्वभाव में है,
1: मूल स्वभाव में है। तो इस तरीके की जो भावना है, चाहे वो अगर अधिकारी हो या शिक्षक हो या छात्र हो, सबकी भावना अगर वो है तो मूल संदेश तो अपने धार्मिक पुस्तकों से ही आ रही है। तो ऑटोमेटिकली ये जो इतनी भी समस्याएं हैं जो इकोनॉमिक्स की, जो हम इसका जो वेस्ट की तरीके से, जो पाश्चात्य तरीके से उसका हल देखने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है वो समय आ गया है कि जो वेस्ट भी इस बात को समझता है और जिस तरीके से भारत की तरफ वो बढ़ रहे हैं और आ रहे हैं शांति के लिए। आपको मैं बहुत ही बात बताना चाहूंगा कि जिस तरीके की सुपर

0: आईटी पे वेस्ट गई हुई है और वहां के युवा गए हुए हैं। आप देखिए कितना उनका मानसिक स्तर पर उनका दिक्कतें हो रही हैं। अब वो भारत की तरफ रुक कर रहे हैं क्योंकि भारत में जानते हैं वो कि भारत ही उनको अंतर्मुखी बनाएगा और बहिर्मुखी होने से वो समस्याओं का हल नहीं है। तो ये जो बहिर्मुखी से अंतर्मुखी जाने का जो संदेश है वो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक हमारी अर्थव्यवस्था ही देती है, आध्यात्मिक केंद्र ही देती है। और ठीक है उसका साथ साथ अगर कुछ व्यवसायी को भी उसका लाभ मिल जाता है अच्छे से कार्य करके तो उसमें कोई गलत नहीं है। और उसमें हम देखते हैं कि जो एस्टिमेशन है 2035 तक 440 बिलियन डॉलर के आसपास है, अभी
1: जी
0: ऑलरेडी 220 बिलियन डॉलर के आसपास है। हम 2014 में 8वीं विश्व की सबसे बड़ी टूरिज्म में मार्केट में हम सबसे ऊपर थे, आज बढ़ करके हम 8वीं नंबर पे आ गए, 10वीं से 8वीं है। तो निरंतर हम देखते हैं कि स्पिरिचुअल इकोनॉमी भारत की अर्थव्यवस्था को एक ऊंचे स्तर पर ले जा रहा है और आने वाले समय में बहुत स्कोप है। जिस तरीके से युवाओं में इसका आप देखिए, आप हिमालय की तरफ जाए, पहाड़ पर जाए, युवाओं में जो इसके प्रति एक मोटिवेशन जागा है कि वो भी इससे जुड़ना चाहते हैं,
1: जी जी
0: प्राणायाम से योग के माध्यम से जुड़ करके अपने आप को एक दिशा में कंट्रीब्यूट करें, योगदान दे रहे हैं देश के लिए, और भजन हो या कीर्तन हो उसमें भी योगदान है। और ये बहुत अच्छी स्टडी भी कहती है कि आप अगर अगर आध्यात्मिक पुस्तकें भी सुनते हैं तो उससे भी डिस्कोर्सेस से आपके मानसिक जो है आपको शांति मिलती है। तो इसी का ये अनुरूप आप देखते हैं कि ये सारा देखने को हमें मिल रहा है।
1: मिल रहा है और पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, भारत की ओर देख रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। इस पर बात करेंगे, लेकिन एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं, उसके बाद इस पर हम बात करेंगे। आप हमें संदेश भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। संदेश भेजने के लिए नंबर है 9868107070। स्पिरिचुअल इकोनॉमी पर हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राकेश कुमार सिंह के साथ।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
4: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
5: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
4: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
5: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
4: और विनर्स को क्या मिलेगा?
5: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
6: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
7: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
8: हे, तुम्हें पता है पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। स्वदेशी उत्पादन और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देकर भारत आत्मविश्वास के साथ रक्षा क्षेत्र के भविष्य का निर्माण कर रहा है।
9: बिल्कुल, रक्षा क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय भारतीय कंपनीज को भारत में ही विश्व स्तर की तकनीकों के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
8: हाँ, सही है, इस बदलाव में HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अग्रणी भूमिका निभा रहा है। स्वदेशी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों से लेकर प्रशिक्षक परिवहन विमान और उन्नत एरोस्पेस प्रणालियों के माध्यम से ये भारत के रक्षा भविष्य को मजबूत बना रहा है।
9: और सबसे खास बात, HAL ने प्राइवेट इंडस्ट्री और हजारों MSMEs को जोड़कर देश में एक मजबूत एरोस्पेस इकोसिस्टम भी तैयार किया है।
8: इस तरह भारतीय प्रतिभा, तकनीक और संकल्प के बल पर हर नवाचार भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ा रहा है।
10: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
11: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
12: जी हाँ, ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, जो पहुंचता है दिल से दिल तक और दिल से दिल तक के इस सफर पर।

0: आपके साथ इस वक्त मैं हूं सत्य, और साथ है हमारे खास मेहमान डॉक्टर राकेश कुमार सिंह, जो कि हमें जानकारी दे रहे हैं स्पिरिचुअल इकोनॉमी, उसके विकास, उसके क्रम, उसके स्वरूप के बारे में। डॉक्टर राकेश, वैश्विक अर्थव्यवस्था में अगर योगदान की बात की जाए, ग्लोबली इम्पैक्ट की अगर बात की जाए, तो स्पिरिचुअल इकोनॉमी का क्या योगदान है उसमें, और भारतीय जो पर्यटन है उस क्षेत्र को कैसे बढ़ावा मिला है?
1: जी देखिए, अगर हम आर्थिक आंकड़े की बात करें तो $220 बिलियन के आसपास अभी हमारा इस पर लगभग योगदान है, अगर हम GDP में बात करें। और ऐसी KPMG की और काफ़ी रिपोर्ट्स कहती हैं जो संस्थाएं की, ये बढ़ करके हमारे 2035 तक ये 440 बिलियन डॉलर के आसपास होने के अनुमान है। अगर अभी गत वर्ष की चीज़ों को देख लें, अब समय को देखें, जहाँ अयोध्या की बात कर लें, जहाँ पर ये ट्रैवल्स हुए, जो पर्यटक आए, आप देखिए धार्मिक जो श्रद्धालु आए, तो तकरीबन 2 लाख करोड़ के आसपास का एस्टिमेशन है
0: जी।
1: आप सिर्फ अयोध्या की बात करें तो उसका जो योगदान है यूपी के ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वो 1.5% का अभी है, बट आने वाले समय में बताया गया NSSO की रिपोर्ट एक 18,000 करोड़ रुपये के आसपास उसकी हम बताते रेवेन्यू है
0: जी।
1: तो मैंने जैसा आपको बताया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, उज्जैन महाकाल कॉरिडोर की बात करें तो वैश्विक स्तर पर अगर हम इसे देखें तो ये भारत का एक आने वाले समय में बहुत बड़ा एक सेक्टर हो सकता है, और है भी, जिस पे ये काम चल रहा है। अभी हमने देखा है कि किस तरीके से विदेशी जो पर्यटक आए हैं, श्रद्धालु आए हैं, चाहे वो हम तमिलनाडु राज्य की बात करें, जी कोयम्बटूर की बात करें, जो हमारे आते हैं आर्ट ऑफ लिविंग में कार्यक्रम में आते हैं जो समझने के लिए और ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो उसमें काफी तेजी से रफ्तार से वृद्धि हुई है। तो प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत का जो एक हमारा जो संकल्पना है जो हम देख रहे हैं, वो स्पिरिचुअल में भी हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं और ऑलरेडी हम हैं उस पर, और उस पर कार्य हो रहा है। उन बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कैपेक्स, जिसको आप बोलते हैं कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पूंजी जो आप निर्माण करते हैं, जो उसमें कार्य करते हैं, उस पर काफ़ी कार्य किए गए हैं। तो कॉरिडोर के डेवलपमेंट के लिए, बुद्धिस्ट सर्किट के डेवलपमेंट के लिए, जो रोड्स हैं और इनलैंड सिस्टम है उसको काफ़ी डेवलप किया गया है। अयोध्या में जो है रोड वाइडनिंग की काम की जाए उस पर भी कार्य किया गया है। तो ये जो है इसका हमें देखने को एक मल्टीप्लायर इफेक्ट मिलता है। देखिए, एक बात हमें समझना पड़ेगा कि ये जो विदेश के लोग हैं अभी जो समस्याएं, जैसे मैंने आपको बताया जिस तरीके की मेंटल अनवेलनेस से गुजर रहे हैं, जो समस्याएं हैं, जो विज्ञान के चरम पे हम उसे बोलते हैं, तो उसका उन्होंने जान लिया है, उस बात को जान गए हैं कि उसका समाधान सिर्फ भारत में ही मिल सकता है। और इसलिए वो भारत में, चाहे वो आपके जग्गी वासुदेव के ईशा योगा सेंटर की हम बात करें या आर्ट ऑफ लिविंग की बात करें
0: जी, जी।
1: या हमारे पवित्र धाम श्री राम जन्मभूमि में अयोध्या में आकर के हमने देखा किस तरीके से जो हमारे इंडियन ओरिजिन के लोग हैं जो विदेश में थे, 50 करोड़ के आसपास, 60 करोड़ के आसपास लोग तादाद में लोग आए और महाकुंभ मेले में और इसमें, क्योंकि वो इस बात को अब जान गए हैं कि जो शांति है वो शांति बहिर्मुखी नहीं हो सकती, अंदरमुखी हो सकती, एक माध्यमिक जो है उसमें बना के रखने की बहुत ही आवश्यकता है। तो इसका हम देखते हैं कि चाहे फॉरेन एक्सचेंज की बात करें, जो आपके देश को मिलती है उससे, जो विदेशी पर्यटक आते हैं उसके लिए भारत सरकार ने बहुत सारे कदम हुए हैं, वीजा ऑन अराइवल की सुविधाएं दी गई हैं और उस पर अग्रसर होकर कार्य किया, जिससे हमने देखा है कि बहुत सारे पर्यटक जो हैं उस पर आते हैं, और अलग अलग, चाहे वो कला से संबंधित है, हेरिटेज संबंधित है, और जो म्यूजियम है उससे संबंधित, उसको भी उन्होंने देखा और भ्रमण करके उसको जानने की कोशिश की। तो भारत का ये जो क्षेत्र है स्पिरिचुअल इकोनॉमी का क्षेत्र है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं लगता है, और हम देख भी रहे हैं कि ये एक सारे समस्याओं को, बहुत सारी समस्याओं को, चाहे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उस पर भी कार्य कर रहा है। आप देखिए ना, एक आप सर्टिफिकेट लेकर के कार्य करके योगा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का आप सीख करके आप सिखा सकते हैं योगा, आप अलायंस के योगा सर्टिफिकेट, भारत का अपना योगा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के आप करके सिखा सकते हैं आप योगा, आप आयुर्वेदा का पंचकर्मा कोर्स करके आप आयुर्वेदा के ज्ञान दे सकते हैं, आप लोगों को उसके हल कर सकते हैं, और एम्स की तो स्टडी भी है कि किस तरीके से कैंसर की भी समस्याओं को भी ठीक करने में काफी लाभदायक रहा है। तो इतनी बड़ी उपलब्धियां जब भारत के अपने कोष में है, अपने सांस्कृतिक कोष में है, तो ये ग्लोबल भी इकोनॉमी में कहीं ना कहीं बहुत कंट्रीब्यूटर है और उसमें भारतीय व्यवस्था को आगे ले जाने में काफी लाभदायक हो रहा है
0: जी। और वैश्विक स्तर पर भारतीय आध्यात्मिक परंपरा से जुड़ा वो वहीं का हो गया, उसी का हो गया। इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहे, हमारे पास एक सवाल भी आया है राकेश जी, ये सवाल हमारे पास आसाम से है, इसका उत्तर हम देंगे इस गीत के बाद, लेकिन सवाल मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं जी। इन्होंने स्पिरिचुअल इकोनॉमी के बारे में पूछा कि बेसिकली क्या है, उसका उत्तर हमने शुरुआत में दिया, लेकिन ये पूछना ये भी चाहते हैं कि किस तरह से ये न्यू इंजन है फॉर डेवलपमेंट, जो है भारत के डेवलपमेंट के लिए न्यू इंजन कैसे है,

परंपरा तो बहुत पुरानी है, शायद ये पूछना चाहते हैं, तो इसका उत्तर हम देंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक गीत सुनवाते हैं, आप साथ साथ गुनगुनाइए और यूं ही आगे बढ़ते रहें हम विश्व स्तर पर, दुनिया की नजरों में आगे और आगे।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
2: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
1: क्या ये जांच उपलब्ध है?
3: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
4: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
3: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
4: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
5: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
6: हे, डिड यू नो, ओवर द पास्ट 12 इयर्स अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, इंडियाज डिफेंस सेक्टर हैज विटनेस्ड अ रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन। फ्रॉम बूस्टिंग इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग टू स्ट्रेंथनिंग डिफेंस एक्सपोर्ट्स, इंडिया इज शेपिंग द फ्यूचर ऑफ डिफेंस विद कॉन्फिडेंस।
7: You are right. In the defense sector, the Ministry of Defense has been creating the right environment for Indian companies to design, develop and build world-class technologies right here at home.
6: Exactly. And one name that's leading this transformation is HAL, Hindustan Aeronautics Limited. From indigenous fighter aircraft and combat helicopters to trainers, transport aircraft and advanced aerospace system, HAL is helping build the future of India's defense.
7: HAL is bringing together private industry and thousands of MSMEs to create a powerful defense manufacturing ecosystem.
6: So, every innovation is taking India one step closer to an Atmanirbhar Bharat, powered by Indian talent, Indian technology and Indian determination.
8: 12 saal vishwas ke, vikas ke, jan kalyan ke.
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
9: आकाशवाणी रेनबो पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेनबो हेल्पलाइन। विषय है स्पिरिचुअल इकोनॉमी, अ न्यू इंजन फॉर इंडियाज डेवलपमेंट। मेहमान के तौर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश कुमार सिंह। और राकेश जी, हितेंद्र

0: दासी का आसाम से जो प्रश्न है उसका उत्तर हम जरूर देना चाहेंगे कि किस तरह से ये न्यू इंजन है भारत के विकास का।
1: देखिए, हितेंद्र दास जी ने बहुत ही बुनियादी प्रश्न पूछा है। अगर हम बात करें 2014 से पहले की, तो उस तरीके की स्कीम्स नहीं हुआ करती। जैसे अभी हम बात करें प्रसाद स्कीम की, बात करें स्वदेश दर्शन स्कीम्स की, बात करें, ऐसे स्कीम्स एग्जिस्ट ही नहीं किया करते धरातल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद नेतृत्व में ऐसे स्कीम्स बनाए गए जहां पर इस तरीके के दर्शन संबंधित और स्पिरिचुअल टूरिज्म को ऑगमेंट करने के लिए उसके लिए आवंटित किए गए बजट में भी। उसी का हम नतीजा देखते हैं कि आने वाले समय में उसके बाद किस तरीके से जो एमएसएमई में जो पैसे दिए गए हैं होम स्टे के लिए और हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, उसका ही हम देखते हैं परिणाम देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर हम योगी आदित्यनाथ जी की बात करें, जो यूपी में कार्य हुआ है, जो डबल इंजन की सरकार में, वहां पर आप देखें तो वहां पर भी महाकुंभ का जो आयोजन हुआ या अयोध्या राम मंदिर का जो भव्य निर्माण हुआ, ये इसी 9 और 12 सालों में आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए ये जो कार्य है वो बाद में उसको अच्छी पद्धति से की गई और उसी का नतीजा हमें देखते हैं कि धार्मिक जो हमारे पर्यटक हैं उसकी जो संख्या है उसमें वृद्धि हुई है। साथ ही साथ हमने देखा जो एक संदेश किया विश्व में वसुधैव कुटुंबकम का
0: जी।
1: आप देखिए ना, जिस तरीके से जो एक संदेश किया है जो पहले भी था मगर उसको पुनर्जीवित किया गया, जो डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड्स कहते हैं, कैसे हमने डीकोलोनाइज किया माइंड को, यूथ इसके तरफ अग्रसर हो रहा है, मैंने आपको बताया। तो ये सारी कहीं ना कहीं जब वातावरण बदलते हैं, जब एक पूरी सिस्टम बदलता है, प्रणाली बदलती है आने के बाद, मैंने देखा है उसी का नतीजा देखने को मिलता है कि आपके ये जो आंकड़े बता रहे हैं कि 2 लाख करोड़ के आसपास जो स्पिरिचुअल इकोनॉमी से जो ग्रोथ हुई है, अयोध्या से जैसे मैंने बताया कि 18,000 करोड़ का एनएसएसओ का डेटा है सिर्फ, उस पर आप इकोनॉमी में ग्रोथ का देखते हैं तो, और जैसा कि वो आसाम से हैं, कामाख्या मंदिर में भी जिस तरीके की वहां पे विकास किए गए आप देखने को मिल रहा है। तो ये जो एक संदेश किया है ग्लोबल डायस्पोरा में, इसी का नतीजा है कि हम देखते हैं कि इसमें वृद्धि मिलती है। तो डिफरेंट कॉरिडोर्स बनाए, जैसे मैंने बताया बुद्धिस्ट कॉरिडोर हुआ, राम जन्मभूमि की आपकी बात की हमने, बाकी बिहारी कॉरिडोर की हमने बात की, आप जगन्नाथ कॉरिडोर की बात कीजिए, महाकाल कॉरिडोर की बात कीजिए, उज्जैन की बात की। तो ये हमें देखता है कि इसी 12 वर्षों में और प्रदेश में 9 वर्षों में देखा गया। इसलिए ये न्यू इंजन इसलिए है क्योंकि उसके बाद नीतियां बनाई गए लोगों को ध्यान में रखते हुए और अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, और सबसे बड़ी बात है हमारी जो विश्वगुरु की जो एक शुरू से रहा है उसको ध्यान में रखते हुए केंद्र बना करके हमने उस पर कार्य किया, और सबसे बड़ी बात है उसको केंद्र बना करके केंद्र बिंदु बना के जो सरकार ने कार्य किया, इसलिए न्यू इंजन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
0: वसुधैव कुटुंबकम की आपने बात की राकेश जी, और ग्लोबलाइजेशन जो है वैश्वीकरण की अवधारणा भले ही नई हो लेकिन वसुधैव कुटुंबकम की जो परंपरा है, अवधारणा है, बहुत पुरानी है। और हमारी जो है ग्लोबलाइजेशन की परिभाषा में सिर्फ इंसान, अर्थव्यवस्था और यही नहीं, पेड़ पौधे, नदियां, पर्वत सब शामिल रहे और एक जो है समग्र विकास की जो है हम बात करते रहे। एक बहुत ही अच्छा प्रश्न हमारे पास और है, किशनगंज से पैंथर तोमर जी लिख रहे हैं कि जेन जी और अल्फा जो नई पीढ़ी है, जेन जी और अल्फा जो है, इस पीढ़ी को आध्यात्मिक अर्थव्यवस्था के विचार की ओर आकर्षित करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में किस तरह का बदलाव हो सकता है या होना चाहिए?
1: जी जी, देखिए मैं बात करूं तो ऑलरेडी दिल्ली विश्वविद्यालय में इसके लिए काफी कोर्सेज बनाए गए हैं
0: जी।
1: दिल्ली विश्वविद्यालय में हमने देखा है कि आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी
0: जी,
1: और इस तरीके के जो हैं कोर्सेज डाले गए हैं, वैल्यू एडिशन कोर्सेज के काम किए गए हैं। साथ ही साथ स्कूल लेवल पर भी ये कोशिश की गई है कि जो डिफरेंट आध्यात्मिक जो हमारी पुस्तकें हैं उससे संबंधित भी उनको उसमें जोड़ा गया है। तो मेरा मानना है कि स्कूल करिकुलम में भी अभी धीरे धीरे इस पे कार्य हो रहा है, बहुत सारी चीजें डाली गई हैं, और कॉलेज एजुकेशन में भी जो वैल्यू एडिशन कोर्स के नाम से, वैल्यू एडिशन जैसा नाम से पता चलता है
0: जी,
1: कैसे एक बच्चों के अंदर जो है, कॉलेज के विद्यार्थी के अंदर वैल्यूज को डेवलप किया जाए,
0: हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य
1: जी जी, क्योंकि वही सबसे सबसे जो निर्णायक भी होता है। तो उसको किस तरीके से जो है छात्र उसको पढ़ करके इमोशनल स्टेबिलिटी जो है, भावनात्मक चीजें हैं जो हमारे जो वेदों में दे रखा है, पंचकोश की जो बात की गई है, उसको बच्चे पढ़ रहे हैं और उसको देख रहे हैं और उसमें प्रैक्टिकल्स भी दे रहे हैं वो, तो उस तरीके से उसको देखा जा रहा है। और उस पर पूरी तरीके से नई जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और नई शिक्षा नीति हम देखते हैं उस पर उसपे कार्य किया जा रहा है। तो ये कुछ चीजें किया जा रहा है जो हम देखते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि योग से भी आप जुड़ करके, जैसे मैंने बताया कि योगा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है और ये एमएसएमई के द्वारा भी चलाई जाती है, उससे जुड़ करके भी हम उसको देख सकते हैं, योग प्राणायाम सीख कर भी या व्यक्तिगत जीवन में उसको उसका लाभ उठा सकते हैं और बहुत अच्छे से अपने कार्य को देख सकते हैं।
0: बहुत कम वक्त हमारे पास बचा है इस कार्यक्रम का, 3 मिनट शेष है, एक और गीत हम सुनवाना चाहेंगे। एक छोटा सा प्रश्न, सबसे बड़ी चुनौती आप क्या देखते हैं अगर हम स्पिरिचुअल इकोनॉमी की बात करें तो इस क्षेत्र में क्या चुनौती है हमारे सामने?
1: देखिए, मुझे लगता है कि गत 12 वर्ष में तो काफ़ी कार्य की गई है। अगर मैं मेरी तरफ से अगर

0: एक दो अगर आप कहें तो मुझे लगता है कि इस पे जो हम मुझे लगता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जो काम कर रहे हैं, सरकार तो काम कर ही रही है मगर एक जो प्राइवेट निजी क्षेत्र है वो भी इस पे कार्य कर रही है, कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह से इस पे काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं निजी क्षेत्र का भी अगर झुकाव ज़्यादा हो जाए और योगदान हो, चाहे वो उनके हमारे जो आध्यात्मिक केंद्र से संबंधित अगर
1: जी
0: स्कूल्स बनाए जाएं, उसमें भगवद गीता पाठ्यक्रम को डाला जाए और कार्यक्रम को देखा जाए, तो मुझे लगता है कि वो भी अगर साथ साथ बढ़े तो भारत बढ़ेगा और बढ़ भी रहा है हमें लगता है। और सबका साथ सबका विकास जो है का जो मूल मंत्र है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया, उसको भी हम बहुत अच्छी तरीके से अचीव कर रहे हैं। जी
1: बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर राकेश कुमार सिंह जी आज कार्यक्रम में मिली होगी हमारे श्रोताओं को भी, और मुझे भी बहुत अच्छी जानकारी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका वक्त अब जो है बहुत ज्यादा नहीं है हमारे पास, स्पिरिचुअल इकोनॉमी पर जो है बात की डॉक्टर राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जो है असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र विभाग में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आप सत्य को भी दीजिए अनुमति, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक अपना प्यार अपना स्नेह मुझ पर यूं ही बनाए रखिए।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो दोस्तों, जी हाँ, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा आकाशवाणी रेनबो, और अब शुरू हो चुका है प्रोग्राम आशियाना। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे शालिनी। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जिससे आप सभी लोग अपने घर में रूबरू होते होंगे। भाई, जब घर में एक मेंबर तो हेल्थ और फिटनेस को लेकर बेहद सजग हो, फिटनेस फ्रीक हो, जबकि दूसरा पिज्जा, बर्गर और चाट पकौड़ी का दीवाना हो, तो भाई तालमेल कैसे बनाया जाए। और मुझे लगता है कि आज के दौर में ये समस्या हर घर परिवार में देखने को मिलती है। लेकिन स्वास्थ्य का भी तो ध्यान रखना ही होता है, क्योंकि सेहत की अनदेखी ना हो ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे बने संतुलन और कैसे इस बैलेंस को बनाए रखा जाए, क्या है स्मार्ट तरीका, इस

0: दोस्तों, वैसे आपके घर में भी कभी ऐसा होता है क्या? एक व्यक्ति तो बोले कि इतनी कैलोरीज मत खाओ, जबकि दूसरे का ये जवाब होता है कि भाई जिंदगी का मजा भी तो जरूरी है। लेकिन दोस्तों, सच तो ये है कि फिटनेस का मतलब सिर्फ डाइटिंग नहीं होता है, बल्कि खुश रहना भी बेहद जरूरी है। और किसी को ये खुशी अगर खाने में मिलती है तो क्या हर्ज है। लेकिन फिर भी हम बस यही कहेंगे कि अगर परिवार में कोई फिटनेस फ्रीक है तो वो दूसरों को प्रेरित तो करे, लेकिन दबाव ना बनाए। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी भी अच्छी आदत को फॉलो करने के लिए ज़रूरी है कि वो आवाज़ हमारे अंदर से आए। क्योंकि किसी के दबाव में आप अच्छी आदतों को स्वीकार करें और उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, ये ज़रूरी नहीं है। इसीलिए जंक फूड पसंद करने वालों को भी थोड़ा संयम रखने की ज़रूरत है, और जो फिटनेस फ्रीक हैं उन्हें अपने घर के बाकी लोगों को प्रेशराइज नहीं करना है।
1: बन मेरी महबूबा, मैं तेनू ताज पवा दूंगा।
0: थोड़ा प्यार से हैंडल करेंगे तो अच्छी आदतें परिवार के दूसरे लोगों में भी डाली जा सकती हैं।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: हे, तुम्हें पता है पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। स्वदेशी उत्पादन और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देकर भारत आत्मविश्वास के साथ रक्षा क्षेत्र के भविष्य का निर्माण कर रहा है।
2: बिल्कुल, रक्षा क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय भारतीय कंपनीज को भारत में ही विश्व स्तर की तकनीकों के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
1: हाँ, सही है। इस बदलाव में HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड अग्रणी भूमिका निभा रहा है। स्वदेशी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों से लेकर प्रशिक्षक परिवहन विमान और उन्नत एरोस्पेस प्रणालियों के माध्यम से ये भारत के रक्षा भविष्य को मजबूत बना रहा है।
2: और सबसे खास बात, HAL ने प्राइवेट इंडस्ट्री और हजारों MSMEs को जोड़कर देश में एक मजबूत एरोस्पेस इकोसिस्टम भी तैयार किया है।
1: इस तरह भारतीय प्रतिभा, तकनीक और संकल्प के बल पर हर नवाचार भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ा रहा है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
5: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
4: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
5: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
4: और विनर्स को क्या मिलेगा?
5: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
6: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
7: www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
8: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल,
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
9: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम आशियाना और हम बात कर रहे हैं एक हेल्दी फैमिली की। दोस्तों, हेल्दी फैमिली वही है जहां पर ना तो स्वाद पूरी तरह छूटे और ना ही अनदेखी हो सेहत की। तो इसीलिए जरूरत है बैलेंस की। कभी कभार मनपसंद जंक फूड और रोजमर्रा में हो पौष्टिक भोजन, यही है स्मार्ट तरीका। और दोस्तों, इस

स्मार्ट तरीके को फॉलो करने के लिए आपको अपनी फैमिली के साथ करनी होगी मॉर्निंग वॉक, रोजाना योग या फिर साइकिलिंग भी कर सकते हैं, जिससे कि फिटनेस ना एक बोझ ना बने बल्कि एक मजेदार एक्टिविटी बन जाए, जिससे कभी कभी आपको मौका भी मिल जाएगा कि वीकेंड पर अपनी पसंदीदा चाट या फिर आइसक्रीम भी अपनी फैमिली के साथ में खा सकें, क्योंकि रिश्तों की जो मिठास होती है ना वो बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ ज़रूरी है शरीर की फिटनेस।

एक बार ठान लेना तो कोई भी टारगेट मुश्किल नहीं होता, इसीलिए एक बार ठान लेंगे तो आप भी फतेह कर पाएंगे और फिटनेस आपकी होगी तंदुरुस्त।

0: दोस्तों, ये फिटनेस का जो फंडा है ना, वो आप अपने घर में भी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है ना, कई बार जो घर में फिटनेस फ्रीक मेंबर होते हैं, वो तो ये कहते हैं कि घर में बाहर का खाना कुछ ज़्यादा ही पसंद किया जाता है, हमें घर का ही खाना खाना चाहिए। जबकि जंक फूड लवर का ये तर्क होता है कि कभी कभी तो चलता है। तो दोस्तों, सबसे आसान उपाय पता है क्या है? मैं आपको दे रही हूँ एक आइडिया कि घर पर ही आप हेल्दी ट्विस्ट के साथ पिज्ज़ा, सैंडविच या फिर चाट को बना सकते हैं, जिससे कि स्वाद भी बरकरार रहे और साथ ही साथ सेहत भी। तो फिलहाल प्रोग्राम आशियाना में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपको कहीं नहीं जाना है, जुड़े रहना है आकाशवाणी रेनबो के साथ।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
3: पता का चाय, गजब का स्वाद।
4: यार, मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
5: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
4: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
6: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
7: Hey, did you know? Over the past 12 years, under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, India's defense sector has witnessed a remarkable transformation. From boosting indigenous manufacturing to strengthening defense exports, India is shaping the future of defense with confidence.
8: You are right. In the defense sector, the Ministry of Defense has been creating the right environment for Indian companies to design, develop and build world-class technologies right here at home.
7: Exactly. And one name that's leading this transformation is HAL, Hindustan Aeronautics Limited. From indigenous fighter aircraft and combat helicopters to trainers, transport aircraft and advanced aerospace system, HAL is helping build the future of India's defense.
8: HAL is bringing together private industry and thousands of MSMEs to create a powerful defense manufacturing ecosystem.
7: So, every innovation is taking India one step closer to an Atmanirbhar Bharat, powered by Indian talent, Indian technology and Indian determination.
9: 12 saal vishwas ke, vikas ke, jan kalyan ke.
10: Dil ke tarane, gaane naye purane. Non-stop film music, rozana subah 9 se 10 baje tak. Rainbow 102.6 par.
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: दोस्तों, फिल्मों में हीरो या हीरोइन को देखकर बच्चे कहीं ना कहीं अट्रैक्ट तो होते हैं और चाहते हैं कि वो उनकी जैसे आकर्षक दिखें। तो आप इस बात को यूज कर सकते हैं अपने बच्चों को इंस्पायर करने के लिए, जिससे कि वो अपनी फिटनेस के प्रति जागरूक हों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो फिल्म स्टार्स होते हैं वो भी अपनी फिटनेस का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। तो यही बात आप अपने बच्चों को बता सकते हैं और उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि वो भी अपने संतुलित खान पान के प्रति जागरूक हों। और साथ ही साथ आपको भी ध्यान रखना होगा अपना भी, क्योंकि अगर आप सलाद नहीं जब जंक की तरफ मुड़ेंगे तो बच्चे भी कहीं ना कहीं आपको फॉलो करेंगे, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही वो सीखते हैं। तो इसी नोट पर लूंगी एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है, जुड़े रहना है आकाशवाणी रेनबो के साथ।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
5: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
4: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
5: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
6: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

दोस्तों भले ही आप देसी गर्ल बनना चाहें, लेकिन फिटनेस का मतलब केवल पतला दिखना या सिक्स पैक बनाना नहीं है, बल्कि अच्छी सेहत होना भी जरूरी है। और अच्छी सेहत में जरूरी है मानसिक शांति, खुशहाल रिश्ते और परिवार के साथ बिताया गया समय। अगर खाने की पसंद को लेकर घर में बहस होने लगे तो एक बात याद रखिए, एक दूसरे को बदलने से बेहतर है एक दूसरे को समझना। आखिर परिवार में सबसे जरूरी है प्यार और अपनापन।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो श्रोताओं, आइए सबसे पहले सुनते हैं हमेशा की तरह आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, लेकिन खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना और सकारात्मकता बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मार्कंडेय जी आपके सुंदर विचार के लिए। सच है श्रोताओं, प्रसन्न रहने का सबसे बड़ा तरीका है सकारात्मक भाव को बनाए रखना। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है वन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि और रोशनी सारवा जी का। दूसरा संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान और जिज्ञासा के साथ साथ विराट तामुरिया, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन का। अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले कुछ और श्रोताओं के नाम। तो अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। अगला संदेश हमें मिला है रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम साहू के साथ साथ सेजल साहू जी का। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो सुनिए हमारा पहला प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर जान

कहते हैं इसका उत्तर है लोहे की सुई पानी में इसलिए डूब जाती है क्योंकि उसका घनत्व यानी डेंसिटी पानी के घनत्व से अधिक होता है। इसके विपरीत लोहे का जहाज बहुत बड़ा और अंदर से खोखला होता है जिससे उसका औसत घनत्व पानी से कम हो जाता है और वो अपने भार से अधिक पानी को हटाकर तैरता रहता है। हमारा अगला सवाल था कि लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं। इसका उत्तर है लोकटक झील में द्वीप मिट्टी घास और कई ऑर्गेनिक पदार्थों से बने हैं जिन्हें फुमदी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न था मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है। तो इसका उत्तर है मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का नाम है राक्षस ताल। और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं। तो श्रोताओं इसका उत्तर है चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से चीन साइबेरिया रूस और मंगोलिया से आते हैं। और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा अंतिम प्रश्न था डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है। तो इसका उत्तर है डल का अर्थ होता है जलाशय या झील। तो श्रोताओं ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है। 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमें प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। इंस्टा फेसबुक एक्स और लिंक्डइन पर भी आप ताजा जानकारी के लिए CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है राग सिंदूरा। इस कार्यक्रम में राग सिंदूरा की स्वरमालिका आरोह अवरोह थाट और गायन समय के बारे में विस्तार से बताया गया है। श्रोताओं संगीत विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ साथ ये कार्यक्रम सामान्य श्रोता वर्ग के लिए भी उतना ही उपयोगी है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम राग सिंदूरा।

राग सिंदूरा। राग सिंदूरा की उत्पत्ति काफी थाट से हुई है। इसे राग सैंधवी भी कहा जाता है। इसमें कोमल गंधार यानी कोमल ग और कोमल निषाद यानी कोमल नी के अलावा सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इसके आरोह में गंधार और निषाद अर्थात ग और नी ये दोनों वर्ज्य स्वर हैं तथा अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार इसके आरोह में पांच और अवरोह में सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व संपूर्ण है। इसका वादी स्वर षडज यानी स है, संवादी स्वर पंचम यानी प है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग सिंदूरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए आरोह।

है राग सिंदूरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग सिंदूरा की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं, कल कल नदिया बहती जाती। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सीमित मत रहिए। श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग श्रृंखला की एक कड़ी है, जिसके द्वारा बताया गया है कि हमारे पास अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन हमारी नकारात्मक सोच ही हमें सीमित कर देती है और इसी कारण हम पूरी कुशलता से कार्य नहीं कर पाते।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।
2: तो आइए साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में पड़ता है? सोचिए, जरा बताइए तो।
1: अच्छा चलिए, हम ही बता देते हैं। यदि आपने रूस देश का नाम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। जी हाँ, वो देश है रूस। ये एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में पड़ता है।
2: और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जिसे रूसी भाषा में मस्कवा कहते हैं।
1: और यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो हाँ साथियों, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की।

0: हजारों हेक्टेयर की भूमि उससे प्रभावित हुई।
1: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए। लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया। वो भूखा था और घायल भी।
0: एक किसान ने जब उसे देखा तो उसे बड़ी दया आई। वो उसे अपने घर ले गया।
1: अब वो भालू का बच्चा वहां के पालतू जानवरों के साथ ही रहता, उन्हीं के साथ घूमता और खेलता।
0: वो उन्हीं में घुल मिल गया और जैसा दूसरे घरेलू पशु व्यवहार करते वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगा।
1: लेकिन पूरे गांव में वो एक कौतूहल का विषय तो था ही, लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
0: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।
1: लेकिन साथियों, ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी।
0: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
1: साथियों, फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और भालू को उसमें बंद कर दिया।

0: साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।
1: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं, तो उसने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
0: लोग आते और उसे देखते, कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।
1: दोस्तों, जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ पैसों की खातिर किया, क्या वो ठीक था? क्या पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उन्हें स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण में रहने का अधिकार नहीं है? ये सोचने की बात है। जब आप किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं, तो पशुओं के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है?
0: ये बात धीरे धीरे वन विभाग तक पहुंची। पर्यावरण और वन विभाग के कर्मचारी आए और वे उस भालू को ले गए।
1: वो उसे एक बहुत बड़े जंगल में ले गए। उसका पिंजरा खोल दिया गया और उसे आजाद कर दिया गया।

0: वे देखना चाहते थे कि भालू इस नए वातावरण में कैसा व्यवहार करेगा।
1: उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था। वो वहां भी आगे पीछे घूम रहा था। उसके सामने स्वतंत्रता थी, उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था। वो जहां चाहता वहां जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया गया कि वो बहुत समय तक वहीं आगे पीछे

0: ठीक घूमता रहा, लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा था।
1: बात स्पष्ट है, उस पिंजरे में बहुत लंबे समय तक रहकर उसने सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
0: हाँ दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि इससे अधिक अब वो कहीं नहीं जा सकता। लंबे समय की पराधीनता, या कह लीजिए कि उसकी नकारात्मक स्थिति की वजह से वो मान चुका था कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता।
1: बहुत धीरे धीरे उस भालू ने सीखा कि उसकी दुनिया इतनी सीमित नहीं है, बल्कि उसके सामने आजादी का असीमित संसार है।
0: मित्रों, क्या हम भी कई बार उसी भालू की तरह नहीं हो जाते? हमारे आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो सकता है। नकारात्मक परिस्थितियों से हम सीखने लगते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इससे अच्छा तुम कर ही नहीं सकते।
1: लेकिन मित्र, कोई कुछ भी कहे, कोई चाहे आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को याद दिलाइए कि आप में बहुत सी असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
0: तो विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सीमित मत रहिए, और अब इसी के साथ अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार। आज का अंक फैटी लिवर पर आधारित है। आज हम जानेंगे फैटी लिवर को और साथ ही फूड सेफ्टी और फूड एडल्टरेशन पर भी बात होगी हमारे जो आज की रेडियो डॉक्टर है उनसे। हम खाने की मिलावट और खाने की मिलावट से होने वाले हमारे शरीर में नुकसान, साथ ही साथ फैटी लिवर पर इसका क्या असर पड़ता है, ये सारी बातचीत करेंगे। हमारी रेडियो डॉक्टर हैं आज की डॉक्टर वैशाली भारद्वाज, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रो एंटरोलॉजी डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल। स्वागत है डॉक्टर साहब आकाशवाणी के स्टूडियो में।
2: नमस्कार एंड धन्यवाद शालिनी जी। मुझे भी बड़ी खुशी होगी इस बारे में बात करके, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और खान पान तो हमारे देश की तहजीब है तो उससे रिलेटेड है।
1: बिल्कुल, और फैटी लिवर की जब हम बात करते हैं, लिवर एक ऐसा अंग है मैडम हमारे शरीर का जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। जैसे आपने कहा खान पान एक तरह से धुरी है ये हमारे जीवन की और शरीर की भी। क्या हम खाते हैं उसी से ही हमारा शरीर बनता है, तो बहुत जरूरी होता है कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें क्या खाना है ये सोचना, कितना खाना है, ये सारी चीजें बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, जो आजकल हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं। तो इसकी अवेयरनेस की भी जरूरत है। हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो यूथ है, वो भी इस चीज को समझे। हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हम चाहते हैं कि हम उनको भी ये बात समझाएं कि किस तरह से हम अपने लिवर को स्वस्थ रख सकते हैं। लिवर क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है तो आप पूरी बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं। और फैटी लिवर जो पहले हम कभी कभार सुनते थे, फैटी लिवर जैसा शब्द,

0: और इंसिडेंस है ये काफी बढ़ गया है आने हुए सालों में, और ये इसलिए है क्योंकि जो हमारी खान पान की शैली है, जो हमारी जीवन की शैली है, उसमें बहुत ही ज्यादा परिवर्तन आ गया है। तो उस कारण से फैटी लिवर जो है वो काफी,
1: वो काफी सुनने में
0: हाँ,
1: आ रहा
0: काफी
1: है।
0: सुनने में आ
1: जी
0: रहा
1: जी
0: है।
1: तो ये क्या बदलाव हैं और ये बदलाव हमारे लिए कितने हानिकारक हैं और अब हम कैसे इससे
0: जी
1: निजात पा सकते हैं, ये सारी चीजें, ये सारे डिस्कशन हम आज करेंगे। तो हम आगे बढ़ें उससे पहले एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और फिर लौट कर आते हैं, रेडियो डॉक्टर को जारी रखेंगे हमारा जो आज का विषय है फैटी लिवर पर।

0: दिल बहलता है आपके आ जाने से, और जब आप इस कार्यक्रम में जुड़ जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है आप हमें लिखकर बता सकते हैं। हमारी मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। डॉक्टर साहब, आज जो हमारे श्रोता है बहुत सारे अभी तक सवाल अभी से ही भेज चुके हैं, कार्यक्रम अभी शुरू ही हुआ है तो लगता है बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं फैटी लिवर से संबंधित। तो मैं शुरुआत यहीं से कर लेती हूं। हमें लिखा है अनमोल ने सरिता विहार से कि कैसे पता चलता है कि फैटी लिवर हो गया है, ये बताएं।
1: देखिए अनमोल जी और बाकी श्रोतागण भी, नॉर्मल जो हमारा लिवर होता है उसमें थोड़ा बहुत फैट तो एक्यूमुलेट होता है, वो नॉर्मल प्रक्रिया है। लेकिन जब लिवर के वेट का 5-10% सिर्फ फैट हो जाता है तो उसे फैटी लिवर कहते हैं। फैटी लिवर एक डिसीज होती है, इसके कई स्पेक्ट्रम होते हैं। तो इनिशियल जो होता है, जो सिंपल चीज होती है, जब सिंपल फैट एक्यूमुलेट होना शुरू होता है तो वो होता है फैटी लिवर। उसके बाद जब फैट इतना ज्यादा हो जाता है कि जो लिवर के सेल्स हैं उनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है तो स्टियोहेपेटाइटिस हो जाती है, उसे हम कहते हैं नैश या मैश। और आगे चल के जब ये इन्फ्लेमेशन की वजह से लिवर ही डैमेज हो जाता है तो वो होती है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। तो शुरुआत हमेशा फैटी लिवर से होती है। नॉर्मली हमें या तो जब लिवर में फैट जमा हो जाता है तो उसका साइज बड़ा होने लग जाता है और हमें जहां लिवर होता है राइट साइड में वहां पर हमें खिंचाव या हल्का हल्का दर्द महसूस होने लग जाता है। तो नॉर्मली फिर सब हम नॉर्मल होता है, आजकल की अल्ट्रासाउंड कराते हैं उसमें लिखा हुआ आता है फैटी लिवर। तो जरूरी नहीं है कि वो देख के हम डर जाएं। फैटी लिवर जैसा कि हम अभी बात कर रहे हैं काफी कॉमन है और प्रिवेंटेबल भी है एक बार अगर पता चल जाए तो। लेकिन जैसे ही अगर आपको पता चलता है फैटी लिवर है और उसके साथ फिर आप डॉक्टर पास जाते हैं, टेस्ट कराते हैं, उसमें कुछ टेस्ट आते हैं जो एबनॉर्मल होते हैं, तो आपके डॉक्टर आपको बताते हैं कि भाई फैटी लिवर है और अब आपको सावधानी रखने की जरूरत है। और अगर साथ में आपको मधुमेह है, शुगर की बीमारी है, आपको मोटापे से आप ग्रसित हैं और बीपी की बीमारी है या फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जिसमें कई बीमारियां साथ में आती हैं और फिर फैटी लिवर आता है तो रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, उस समय आपको और ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है।
0: जी, तो बहुत सारी बातें आपने, बहुत सारे सवालों का जवाब आपने इसमें दिया, क्योंकि हमने अभी कॉज पे बात की थी पर आपने सिम्टम

0: भी बताएं,
1: जी जी
0: तो इसमें क्या दर्द भी होता है जैसे खिंचाव के साथ?
1: देखिए, जो हमारा लिवर होता है ना, वो एक कैप्सूल के अंदर रहता है, एक खोल होता है। भगवान ने आप एक प्रोटेक्टिव लेयर देके हम सबको भेजा है लिवर के आसपास। तो
0: जी
1: जो वो जब नॉर्मल लिवर रहता है, फैट उसमें नॉर्मल मात्रा में रहता है, तो वो खिंचाव नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे फैटी लिवर बढ़ता जाता है, जैसे कि मैंने बताया 5 या 10% लिवर के वेट से ज्यादा होना शुरू हो जाता है, तो फिर लिवर का जो कैप्सूल है वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाता है और आपको दर्द या एक हल्की सी चुभन या ऐसा महसूस होता है जहां पर लिवर है, राइट साइड में। आगे इसके लक्षण क्या होते हैं कि फिर जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो आपकी जो लिवर फंक्शन टेस्ट होते हैं उसमें एबनॉर्मैलिटी आनी शुरू हो जाती है, जो कोलेस्ट्रॉल वाले टेस्ट होते हैं उनमें एबनॉर्मैलिटी आनी शुरू हो जाती है, तो फिर ये एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिसीज बनना शुरू हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि कहीं आपको थायराइड तो नहीं है, कहीं आपको शुगर तो नहीं है, कहीं आपको बीपी की दवाई या दिल की बीमारी तो नहीं है, क्योंकि अगर ये सारी चीजें फैटी लिवर के साथ होती है तो रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है।
0: अच्छा
1: फिर हम
0: अच्छा
1: आपका वेट देखते हैं कि आपका वेट नॉर्मल है या आप ओबीस हैं या ऐसा है कि आपका शरीर मोटापे की तरफ बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं जो देखनी पड़ती हैं देखने के लिए कि अगर अकेला फैटी लिवर है या उसके साथ और भी जो लक्षण होते हैं वो है या नहीं है।
0: जी। तो अगर इस तरह का कुछ लगता है तो उन्हें सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और जो जो टेस्ट डॉक्टर लिखें
1: जी
0: वो सब कराने बहुत
1: जी
0: आवश्यक
1: जी
0: है।
1: जी जो भी आपके निकटतम डॉक्टर हैं उनके पास जाइए, वो आपको असेस करेंगे, आपको टेस्ट बताएंगे और फिर उन सारी चीजों को, आपके जो लक्षण हो रहे हैं उनके साथ आपके टेस्ट, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड सबको मिला के देख के फिर आपका डायग्नोसिस बनाएंगे कि आप किस बीमारी से पीड़ित हैं।
0: जी, तो डॉक्टर साहब अभी आपने कहा कि वेट भी इसमें
1: जी
0: काफी
1: जी
0: मैटर
1: जी
0: करता है कि
1: जी
0: ओवर वेट तो नहीं है।
1: जी
0: तो ऐसा ही एक प्रश्न हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है, जतिन मल्होत्रा हैं और ये रहते हैं गीता कॉलोनी में दिल्ली में। लिख रहे हैं कि मेरा फैट बहुत बढ़ गया है और मुझे भूख बहुत लगती है, तो बताएं नॉर्मल वेट होना कितना चाहिए?
1: देखिए, वो तो एज के हिसाब से स्टैंडर्ड होते हैं कि भाई इस एज में पर्टिकुलर बीएमआई होता है हमारा, बेसल वो उसके हिसाब से होता है। तो ऐसे रेडियो पे तो एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकती,
0: जी
1: लेकिन आपकी हाइट और आपके वेट और आपके एज के हिसाब से होता है। और अगर आपकी जो चर्बी है वो पेट पर है ज्यादा, जो एब्डोमिनल ओबिसिटी होती है वो रिस्क फैटी लिवर के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ होता है।
0: अच्छा
1: एब्डोमिनल ओबिसिटी जो होती है, जो पेट पे जो खासकर मोटापा होता है, वो फैटी लिवर, शुगर और दिल की बीमारियों के साथ ज्यादा कोरिलेट होता है।
0: अच्छा
1: तो
0: इन्होंने एज लिखकर भेज दी है मैडम,
1: अच्छा,
0: अभी लिखा है कि मैं 27 ईयर्स का हूँ।
1: जी जी
0: जी
1: जी
0: जी
1: जी तो
0: तो
1: 27 ईयर्स के हैं और अगर 5 फुट, 5.5 या 6 फुट के कहीं बीच में है, तो इनका वजन कहीं 70 से 72 किलो के बीच में होना चाहिए, वो इनका नॉर्मल वेट है।
0: ठीक है
1: ऐसे रेडियो पे बताना बड़ा
0: जी,
1: मुश्किल
0: बिल्कुल आपने
1: है,
0: बताया,
1: ये
0: कई सारी चीजें ही
1: बहुत सारी
0: देखनी
1: चीजें
0: पड़ती हैं।
1: देखनी पड़ती
0: हाँ
1: हैं,
0: हाँ
1: पर अगर इन्हें लग रहा है कि मेरा फैट बढ़ गया है,
0: हाइट भी
1: हाँ
0: देखना
1: हाइट भी देखनी पड़ेगी, सर्कमफ्रेंस देखना
0: पड़ेगा।
1: पड़ेगा, पेट नाप के ना जो मेजरमेंट्स हैं वो लेने पड़ेंगे, तो वो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप खुद ही महसूस कर रहे हैं कि मेरा फैट बढ़ता जा रहा है, तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि आप उस पर ध्यान देना शुरू करें, क्योंकि ये चीज बेस्ट चीज ये ऐसी है कि एक बार आप अगर ध्यान देना शुरू करेंगे तो ये रिवर्सिबल है शुरू में,
0: अच्छा
1: मतलब ये ठीक हो जा सकती है। ऐसा नहीं है कि एक बार अगर आपको फैटी लिवर हो गया तो वो नहीं ठीक होगा। इनिशियल जो स्टेजेस होती है फैटी लिवर, स्टीयो हेपेटाइटिस, दे आर रिवर्सिबल एंड दे कैन बी रिवर्टेड बैक।
0: अच्छा
1: आप
0: अच्छा
1: नॉर्मल लिवर अपना दोबारा पा सकते हैं
0: जी
1: अगर आप सही समय पर लक्षण पहचान लें और ध्यान रखना शुरू कर दें
0: जी
1: तो।
0: तो ये भी हम जानेंगे आपसे कि कैसे इसको रिवर्स किया जा सकता है। हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर है, इनसे प्रश्न पूछ लेते हैं इनका। हेलो,
2: रिस्पेक्टेड शालिनी मित्तल जी को रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार।
0: नमस्कार जी,
2: डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम।
1: नमस्कार जी, नमस्कार जी।
2: जो लोग ज्यादा नॉन वेज खाते हैं उनका लीवर जल्दी फैटी होता है। नंबर टू, जो हम सील्ड पैक्ड जिसको कहते हैं पैक्ड प्रोडक्ट लेते हैं,
1: प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड चड्डा जी उसको हम कहते हैं, प्रोसेस्ड फूड जो हाईली प्रोसेस्ड होता है,
2: तो उसको उसकी शेल्फ लाइफ काफी लंबी होती है, 1 साल से
1: जी
2: लेकर 2 साल तक।
1: जी जी
2: तो वो खाने से भी लीवर फैटी हो सकता है, कृपया बताने का कष्ट कीजिएगा।
1: देखिए चड्डा जी, देखिए कुछ भी चीज है ना, या हम अकेले नॉनवेज की बात नहीं कर सकते क्योंकि ये जीवन शैली है, हर हर आदमी का एक अपना खान पान है, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये वाला खान पान गलत है और ये वाला सही है। कोई भी चीज जब भी हम एबनॉर्मल मात्रा में करेंगे तो वो हमें नुकसान देगी। उसमें ज्यादा घी तेल भी आ गए, उसमें ज्यादा मिठाइयां भी आ गई, उसमें ज्यादा तले हुए पदार्थ भी आ गए, उसमें ज्यादा नॉन वेजिटेरियन भी चीजें, मतलब वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ही जो अनहेल्दी हैं, अगर है वो हम ज्यादा मात्रा में लेंगे तो फैटी लिवर हो सकता है। तो ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि ये जो आजकल प्रोसेस फूड का चलन चल गया है कि जो आप पैकेट खरीदें और वो एक डेढ़ साल तक ठीक रहेगा, और इंस्टेंट फूड जो है, ये जो फूड है ये बहुत प्रोसेस्ड होते हैं, इनसे फैटी लिवर

0: का बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है। फैटी लिवर ही नहीं, और भी जो बीमारियां हैं वो इनसे ज्यादा हो सकती है, क्योंकि इनका चलन आजकल ज्यादा ही चल गया है। और इनकी
1: जी
0: शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इनमें केमिकल्स वगैरह डालने पड़ते हैं, जिससे कि जो इनकी नॉर्मल और अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो खराब हो जाती है।
1: एक तो प्रोसेस भी हो गया, और कई बार
0: जी
1: ऐसा भी देखने में आता है कि सब स्टैंडर्ड
0: जी
1: माल भी कई बार मिलता है, जिसको हम एडल्टरेटेड कहते
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: तो
0: जी
1: उससे भी काफी
0: क्योंकि
1: समस्याएं बढ़
0: खपत
1: रही।
0: ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है देश की, तो वो प्रोड्यूस करने के लिए कई
1: जी
0: बार सब स्टैंडर्ड चीजें होती हैं उनमें मिलावट हो जाती है, पता नहीं चलता। आए दिन हम रेडियो और टीवी पे सुनते रहते हैं कि भाई फलाना चीज में ये पकड़ा गया, ये पकड़ा गया। तो वो भी चीजें, वो केमिकल्स होते हैं, वो मिलाए जाते हैं और वो सब स्टैंडर्ड होते हैं, और हर जो चीज हम खाते हैं वो मेटाबोलाइज लिवर में ही होती है जाके,
1: जी
0: तो वो लिवर को नुकसान पहुंचाती है।
1: इसमें डॉक्टर साहब कई चीजें तो ऐसी हैं जो हमारे हाथ में नहीं है,
0: जी
1: है
0: मतलब इनका
1: ना।
0: तो हम कुछ
1: हाँ,
0: कर नहीं सकते।
1: जैसे पेस्टिसाइड्स का यूज हो रहा है या स्प्रेज हो रहे हैं, वो किस तरह से, तो हम ये कर सकते हैं कि हम अच्छे से धो के खाएं, जो
0: जी
1: भी
0: जी
1: कच्चा खा रहे हैं,
0: जी
1: फ्रूट्स खा
0: और
1: रहे हैं।
0: कोशिश करें कि ताजी चीजें खाएं, पैकेट बंद चीजें अवॉइड करें
1: अवॉइड
0: खाना
1: करें।
0: जितना हो सके। जैसे
1: जी
0: कि हमारे पूर्वज थे, वो साथ के साथ बनाते थे, साथ के साथ खाते थे, रखने का चलन कोई नहीं था कि एक समय का खाना दो तीन
1: बिल्कुल
0: दिन तक चलता रहेगा।
1: जी
0: और यहाँ तो हम प्रोसेस फूड की बात करें, जो पैकेट साल भर चलने की बात करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि ताजा बनाएं, साथ के साथ खाएं और प्रोसेस फूड अवॉइड करें।
1: जी जी बिल्कुल सही बात। और हमारे ये एक श्रोता हैं, तपोष प्रमाणिक, बोंगा वेस्ट बंगाल से हमें लिखकर भेज रहे हैं, आर चिल्ड्रेन मोर एट रिस्क ऑफ फैटी लिवर। तो मुझे लगता है कहीं से ये जुड़ता है, क्योंकि
0: जी
1: बच्चे
0: जी
1: प्रोसेस फूड बहुत खा रहे हैं आजकल।
0: पोस्ट कोविड जो है चाइल्डहुड ओबिसिटी काफी बढ़ गई है। मतलब मैं पीडियाट्रिशियन नहीं हूं, तो मैं एग्जैक्ट जो फिगर्स हैं वो नहीं बता सकती, लेकिन प्रोसेस फूड का चलन तो चल ही रहा है, और जो बच्चे होते हैं उन्हें ये घर की बनी हुई सब्जियां और जो हेल्दी चीजें होती हैं वो नहीं पसंद आती उन्हें। पैकेट वाली चीजें, प्रोसेस फूड, फैटी फूड, ये सब चीजें बहुत
1: कुछ एडिटिव्स
0: प्रमोट
1: भी
0: भी
1: डाले
0: होती
1: जाते
0: हैं
1: हैं क्या उसमें?
0: हमें एज अ पेरेंट, तो मुझे लगता है, बट एज अ
1: लगता
0: डॉक्टर तो मैं भी नहीं कह सकती कि कुछ है या नहीं है। बट हाँ, हमारे बच्चे जो हैं वो भी, हमें भी लगता है कि हाँ इजी चीज है, एक पैकेट पकड़ा दो इंस्टेड ऑफ कि हम जाके ताजा बनाएं। वो भी एक है, क्योंकि सब
1: कारण।
0: बिजी हैं, सबकी
1: हाँ
0: लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रेसफुल है और समय ही नहीं है किसी के पास, तो जो इजी ऑप्शन है वो पैकेट्स ही होते हैं। बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते, या तो मौसम खराब है, ज्यादा गर्मी है, ज्यादा सर्दी है, या फिर कभी बारिश आ रही है, तो जो पहले जैसे बच्चे पूरे दिन खेला करते थे,
1: फिजिकल
0: फिजिकल
1: एक्टिविटी।
0: एक्टिविटी जो पहले
1: जी जी
0: ज्यादा होती थी वो अब बिल्कुल जीरो या निल रह गई है, और जो फूड है वो प्रोसेस्ड और रिच ज्यादा होता जा रहा है। तो हर चीज बराबर होती है ना, कि जितना हम खाएं उतना हम पचाने के लिए एक्सरसाइज तो करें, तो बैलेंस बना रहता है। जहां पे पाचन करने के लिए हम एक्सरसाइज तो कर नहीं रहे और कैलोरीज और एनर्जी कंज्यूम करते जा रहे हैं, तो वो फिर नेगेटिव होना शुरू हो जाता है और फैट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है।
1: जी
0: ये है
1: तो बहुत सारी डॉक्टर साहब ने बात बताई है कि फिजिकल एक्सरसाइज भी कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करती है। तो हम इन सारी बातों पर अभी इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद करेंगे बातें। आपके बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास हैं, हम उनको भी लेंगे। सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। मैं हूं शालिनी मित्तल और मेरे साथ आज की रेडियो डॉक्टर डॉक्टर वैशाली भारद्वाज, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल। और आज हम उनसे बात कर रहे हैं फैटी लिवर के बारे में और साथ ही फूड सेफ्टी एंड एडल्ट्रेशन, खाने में होने वाली मिलावट और उसके नुकसान के बारे में भी डॉक्टर साहब बहुत कुछ बता रही हैं। तो एक श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो।
2: हेलो मैम, गुड आफ्टरनून।
1: गुड आफ्टरनून।
2: और डॉक्टर साहिबा को भी मेरा गुड आफ्टरनून।
3: जी गुड आफ्टरनून।
2: मैम मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे महिलाएं घर के काम में ज्यादा लगी रहती हैं, तो मेरे जैसी जो 45 प्लस महिलाएं हैं, तो उनके लिए एक्सरसाइज कितना इम्पोर्टेंट है और मैम उनको किन किन चीजों से दूरी बना लेनी चाहिए पर्टिकुलर इस एज में आने के बाद, ताकि हम इस समस्या से दूर रह सके।
3: जैसा कि आपने कहा कि घर का काम इम्पोर्टेंट है, तो जितनी इम्पोर्टेंस आप घर के काम को दे रहे हो ना कि भाई नाश्ता लंच डिनर बनाना है, उतनी इम्पोर्टेंस आपको एक्सरसाइज को देनी है कि एक्सरसाइज भी रोज करनी ही करनी है। अगर आप ये मान के चलेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। और आपको ही नहीं, हर एज की फीमेल्स या मेल्स को बहुत सारी चीजें हैं जो हमेशा हमें ध्यान रखनी है। एक तो हमें अपना जो बॉडी वेट है वो आइडियल रखना है, यानी मेल्स में जो वेस्ट सर्कमफेरेंस होती है वो 102 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं होनी चाहिए और फीमेल्स में 88 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं होना चाहिए आपका वेट सर्कमफेरेंस। अगर आपका वेट सर्कमफेरेंस इन नंबरों से ऊपर है मेल्स और फीमेल्स में, तो आप थोड़े हाई रिस्क की तरफ जा रहे हैं मोटापे के, और वो आपको लीड करेगा फैटी लिवर, डायबिटीज ऐसी बीमारियों की तरफ। फिर खान पान का बहुत ध्यान रखें, ताज़ा खाना बना के खाएं, अपने खाने में फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स और प्रोसेस फूड कम से कम रखें, ताज़ा खाना बनाएं, सब्जियां और फल ज्यादा मात्रा में लें, एक्सरसाइज करें, खूब सारा पानी पिए और अपनी सेहत का ध्यान रखें। किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जो आपको अच्छी लगती है, योगा हो गया, वॉकिंग हो गई या जिम अगर आप जाते हैं, तो वो उसको अपनी लाइफस्टाइल का उतना ही इम्पोर्टेंट हिस्सा बना लें जितना कि आपकी रोजमर्रा का जो घर का काम या ऑफिस का काम है वो रूटीन है।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। उम्मीद है कि आपको सही और सटीक जवाब जो डॉक्टर साहब ने दिया और आप जैसे और बहुत सारे जो हमारे श्रोता है जो जिनका यह प्रश्न था उनको भी मिल गया। लेकिन हमारे एक श्रोता है डॉक्टर साहब मनोहर लाल गांधी चाणक्य चौक गाजियाबाद से, वो थोड़ा सा अलग व्यू रखते हैं
3: जी,
1: वो ये लिख रहे हैं कि फास्ट फूड और तरह तरह का नशा ये हमारे लिवर के लिए किस तरह से असर डालता है, ये तो एक क्वेश्चन है। पर इन्होंने लिखा है आगे कि आजकल घरों में महिला हो या पुरुष या बच्चे, कोई अपना काम करना नहीं चाहता, करता ही नहीं है, घर में नौकर लगा के रखा है, कामवाली लगी हुई है, खुद मेहनत नहीं करना चाहते, तो इसका हमारे शरीर पे हमारे लिवर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है ये मैं जानना चाहता हूं। और आपको और डॉक्टर साहिबा को नमस्कार।
3: नमस्कार जी। एक तो जो आपने बात कही नशे की, तो वो दो हम फैटी लिवर पे बात कर रहे हैं, ये जो है वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर इन पर्टिकुलर पे हम बातें कर रहे हैं। लेकिन लिवर जो है वो अल्कोहल से भी खराब हो जाता है और ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो इस आज के प्रोग्राम के उससे बाहर है। लेकिन हर तरह का नशा हमारे शरीर को नुकसान दे सकता है, ये हमें स्मोकिंग अल्कोहल ये तो सबको पता ही है। और जहां तक कि आपने बात की कि काम कम कर रहे हैं, देखिए आजकल जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा बदल गया है, फीमेल्स भी काम करने लगी हैं, मेल्स भी काम करने लगे हैं और किसी ना किसी तरह हाउस हेल्प की जरूरत तो हमें पड़ती है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सारा काम हम उन पर ही छोड़ देते हैं, बहुत सारा काम हम खुद भी करते हैं। सेडेंट्री लाइफस्टाइल पर से अगर आप अपनी लाइफ में एक्टिविटी नहीं करते हैं वो एक रिस्क फैक्टर है, ना कि सिर्फ फैटी लिवर के लिए बल्कि और भी बहुत सारी बीमारियों के लिए, जैसे शुगर, डायबिटीज हो गई, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो गई, हाइपरटेंशन हो गई। तो फिजिकल एक्टिविटी तो हमें जितनी भी हो सके बचपन से ही बच्चों में भी आदत डालनी चाहिए और जो भी घर के सदस्य हैं उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि फिजिकल एक्टिविटी वो अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या

0: का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनाकर रखें।
1: जी
0: काम तो कोई भी अगर आप नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत होगी ही होगी।
1: हमारे साथ एक श्रोता फोन लाइन पर। हेलो
2: हेलो, नमस्कार डॉक्टर सर, नमस्कार मैडम जी,
1: जी
2: सॉरी मित्तल
1: जी
2: जी,
1: जी
2: संजीव कुमार हूँ जी, मैं गाँव
1: जी संजीव
2: यहाँ
1: जी,
2: से।
1: अपना प्रश्न
2: हाँ जी,
1: कर ले।
2: मैं प्रश्न ये है मैडम जी, अल्ट्रासाउंड में ना उसका कई साल पहले फैटी लीवर आया था जी, और उसकी वो यहाँ से ये करना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या करनाल में दवाइयां भी लिखी, दवाई का लिए नाम तो मेरा याद नहीं है, पर उससे उसको कोई खास आराम नहीं है, देखने में कमजोर है और परफॉर्मेंस उसकी स्टडीज में बिल्कुल वीक है। पहले 6 साल मैंने बीएससी पास कर सके और अब भी, तो अब उसको क्या करना चाहिए मैडम? सर्दी में ना नहीं है कहीं कहीं मिलने, जैसे कि अक्टूबर में रुकेगा ना, फिर अप्रैल के बाद ही ना आएगा, और जी यानी वीक वीक है बिल्कुल, कई बार अगर जाता है सिज़ोफ्रेनिया भी है उसको और एपिलेप्सी भी है जी।
0: हाँ, देखिए मैं भी यही कहने वाली थी कि ये सिर्फ एक शारीरिक बीमारी के लक्षण नहीं है, ये मानसिक बीमारी के भी लक्षण हो सकते हैं। तो उन्हें जरूरत है कंप्लीट मानसिक इवैल्यूएशन की। जो भी आपके पास डॉक्टर हैं उनसे या किसी भी मनोचिकित्सक से आप उनको दिखाएं और न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, और फिर दोनों तीनों चीजें एक साथ मिलकर चलेंगी। कई बार क्या होता है कि जो दवाइयां उनको अपनी मानसिक दवाइयों के कारण चल रही हैं उनसे भी फैटी लिवर हो जाता है, कुछ दवाइयों से होता है। तो आपको उनके बिहेवियरल थेरेपी और काउंसलिंग की ज्यादा जरूरत लग रही है जैसा कि आप बता रहे हैं उनके कारण।
2: काउंसलिंग तो मैडम बहुत करते आए हैं, करनाल
0: जी
2: वाले जो नहीं है, कल्पना चावला गवर्नमेंट
0: जी
2: मेडिकल कॉलेज
0: जी
2: वाले
0: जी
2: काफी बार ही करते हैं काउंसलिंग तो,
0: जी
2: पर
0: जी
2: ये मानता नहीं जैसे
0: वो
2: समझ गया
0: आपको ना
2: मैं।
0: रेगुलर करवानी पड़ेगी ये, क्योंकि बिहेवियरल चेंजेस होते हैं ये। रोज रोज रोज रोज स्ट्रेस करना पड़ेगा आप लोगों को भी, और काउंसलिंग और दवाइयां, जब दोनों तीनों चीजें इकट्ठी

0: जी
1: तो हम
0: जी
1: बात तो कर ही रहे हैं, इसका
0: जी
1: कोई टेस्ट भी होता है जो अलग
0: जी
1: से किया
0: शुरू
1: जाता
0: में तो अल्ट्रासाउंड किया जाता है एक,
1: है?
0: और अल्ट्रासाउंड के साथ कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट जिसे हम LFT कहते हैं, लिपिड प्रोफाइल जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल, LDL, HDL और ट्राइग्लिसराइड्स लेवल देखे जाते हैं, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल किया जाता है देखने के लिए कि आपको मधुमेह तो नहीं है। तो इनिशियली ये सब चीजें होती है, उसके बाद ट्रांजिएंट इलास्टोग्राफी या फाइब्रोस्कैन नाम का एक टेस्ट होता है जो बड़े अस्पतालों में और बड़ी जगहों पर उपलब्ध होता है, वो टेस्ट कराना होता है देखने के लिए। उसमें एक पर्टिकुलर कट ऑफ वैल्यू होती है जो देखी जाती है, अगर आप उस वैल्यू के ऊपर आते हैं तो फिर रिस्क फैक्टर्स के हिसाब से असेस किया जाता है, और आपको जो भी प्रिवेंटिव चीजें हैं जो आपको उस समय से लाइफस्टाइल मॉडिफाई करनी है, फिजिकल एक्टिविटी कितनी बढ़ानी है, खाने में क्या खाना है, कितनी आपकी न्यूट्रिशनल कैलोरीज अलाउड है, वो सब आपको डिटेल फिर उसमें बताया जाता है।
1: डॉक्टर साहब, हमारी श्रोता है परिधि, दिल्ली में रहती हैं, लिख रही हैं, माय हस्बैंड हैज ग्रेड टू फैटी लिवर
0: जी
1: एंड ही इज 30 इयर्स ओल्ड।
0: जी
1: तो ये
0: जी
1: कितना डेंजरस है बिकॉज ही इज सो यंग, और हमें प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए? कैन इट बी रिवर्स्ड बाय लूजिंग वेट और वी हैव टू टेक सम एडिशनल मेजर्स?
0: देखिए परिधि जी, इनिशियली तो वेट लॉस लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जो एक बहुत ब्रॉड टर्म होती है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। उसमें एक तो आता है कि आपने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जो मैंने आपको, जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको सुटेबल होता है वो आप शुरू करें। दूसरा होता है कि आपकी ईटिंग हैबिट्स चेंज, लाइफ स्टाइल मतलब बदल रहे हैं हम, हमें अपनी ईटिंग हैबिट्स, हम कितने बजे खा रहे हैं, कितनी कैलोरीज खा रहे हैं, क्यों कौन सा हम ऑयल यूज करते हैं, क्या हम प्रोसेस फूड खा रहे हैं, क्या हम नहीं खा रहे, कितनी देर हम बैठे रहते हैं पूरे दिन में, कि हम किस तरह का हमारा वर्क है, किस तरह की हमारी लाइफस्टाइल है, तो वो सब हमें चेंज करना होता है। इनिशियल हमेशा लाइफस्टाइल चेंज और मॉडिफिकेशन जो है दैट गोज लॉन्ग वे इन ट्रीटिंग यू। अगर उसके बाद नहीं आराम होता तो फिर बाकी चीजें दी जाती हैं कि दवाइयां हैं जो उपलब्ध हैं जो दी जाती हैं, और कंप्लीट असेसमेंट आपके हस्बैंड को जरूरत है। सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर आने से अकेले से वी डोंट हैव टू पैनिक। जैसा कि मैंने अभी बताया था, वेट सर्कमफ्रेंस, BMI, LFT, शुगर, वो सारे एक बैटरी ऑफ टेस्ट होते हैं जो करने पड़ते हैं इवेल्युएट करके, उसके बाद हम बता सकते हैं आपको कि रिस्क कितना है। लेकिन अगर आ रहा है फैटी लिवर तो आई थिंक आप लोगों को एक्सरसाइज और डायट्री मॉडिफिकेशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो अपने आप ही शुरू कर देनी
1: करनी
0: चाहिए।
1: चाहिए।
0: जी जी
1: अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक बात समझ में आई कि क्या ये अलग अलग ग्रेड का भी होता है, जैसे इन्होंने ग्रेड टू लिखा है?
0: देखिए वो तो रेडियोलॉजिकल वो होते हैं, उसमें ग्रेड दिया जाता है,
1: अच्छा।
0: जैसा कि मैंने बताया फाइब्रोस्कैन है उसमें भी हम असेस करते हैं ग्रेड, उसमें भी ग्रेड होते हैं, बट वो नॉर्मल आदमियों के लिए नहीं होते, वो डॉक्टर्स के लिए होते हैं। डॉक्टर्स तो देखेंगे भाई कौन सा ग्रेड है,
1: अच्छा
0: उसमें रिस्क कितना होता है, वो हम असेस करके फिर हम आपको बताते हैं कि भाई आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए।
1: जी। संजय हमें लिखकर भेज रहे हैं बिहार से, इन्होंने लिखा है कि मेरे पेट में दर्द है 1 साल से, कभी ऊपर कभी नीचे रहता है, तो क्या ये कहीं से फैटी लिवर का कोई सिम्टम माना जा सकता है?
0: देखिए नॉन स्पेसिफिक पेन, कभी ऊपर कभी नीचे, तो फैटी लिवर का सिम्टम नहीं होता। मतलब जैसा कि हम बता रहे हैं ठीक है अवेयरनेस है, लेकिन इतना डर भी अपने मन में पैदा नहीं करना चाहिए कि भाई दर्द इधर उधर जो है वो कुड बी अ नॉन स्पेसिफिक एब्डोमिनल पेन, नॉट नेसेसरी फैटी लिवर।
1: जी। ओम प्रकाश जी हैं, 83 इयर्स के हैं, दिल्ली में रहते हैं। गॉल ब्लैडर की पथरी क्या फैटी लिवर के कारण हो सकती है, और कितनी बड़ी पथरी के बाद ऑपरेशन कराना चाहिए? ये इनके दो प्रश्न हैं। तो क्या फैटी लिवर पथरी
0: देखिए
1: को प्रमोट
0: सर,
1: करता है?
0: हाँ ये मैं बता सकती हूँ कि पथरी को प्रमोट करने के बहुत सारे कारण होते हैं और फैटी लिवर उन कारणों से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ होता है। अब कितनी बड़ी पथरी होनी चाहिए ये तो इस प्रोग्राम के स्कोप से बाहर है, तो वो
1: जी।
0: मैं रेडियो पे नहीं बता सकती हूँ। आप किसी भी अपने निकटतम डॉक्टर के पास जाए और उनसे बात करें कि क्या करना है गॉल ब्लैडर की पथरी के लिए।
1: जी। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, लेकिन हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर। हेलो
2: हेलो।
1: जी
2: हाँ जी मैम, नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: हाँ जी मैम, मेरठ से बोल रही हूँ, मेरा नाम बबीता है।
1: जी बबीता जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, प्रश्न कर लें डॉक्टर साहब से।
2: अगर फैटी लिवर हो गया है तो मैम कौन सी एक्सरसाइज करें और क्या खाएं और क्या ना खाएं?
0: बबीता जी, अगर आप प्रोग्राम शुरू से सुन रहे हैं तो मैं हर क्वेश्चन के एंड में बता रही हूं कि ऐसे तो बताना बड़ा मुश्किल है कि क्या खाएं ना क्या ना खाएं, लेकिन मोटे मोटापे मतलब मोटे मोटे तौर पर ताजा फल और सब्जियां ज्यादा खाएं, और एक्सरसाइज जो आपको सूट करे जो आप कर सकें। अगर मान लो अब आप गांव में रहती हैं, मैं आपको कह दूं आप जिम चले जाओ, आपके पास जिम जाने का टाइम नहीं है और मैं आपको कहूं नहीं आप दौड़ लगाओ, जबकि आप दौड़ नहीं लगा सकते, तो जो आपको शरीर अपने समय और अपने घर की जो नॉर्मल दिनचर्या है उसके हिसाब से जो आपको कंफर्टेबल लगता है वो आप एक कोई एक एक्सरसाइज उठा लो और रोज उसको 1 घंटे करो, ठीक है? हाँ, ऐसे कोई स्पेसिफिक तो वो हर टेलर

0: मेड होती हैं चीजें ना, हर चीज एक आदमी के हिसाब से होती है, वो आप देखेंगे कि आपको क्या कन्वीनियंट हो रहा है और आप किस चीज में कंफर्टेबल हैं। रही बात खान पान की, तो तेल घी ये सारी चीजें, तले हुए पदार्थ कम करें, प्रोसेस फूड ना खाएं, कोशिश करें कि ताजा खाना बनाएं, एक समय बनाएं उसी समय बनाकर यूज करें, और अपने खाने में फल सब्जियां बीज ड्राई फ्रूट्स ये सारी चीजें ज्यादा इन्वॉल्व करें, और तली हुई चीजें और प्रोसेस फूड ना खाएं। ठीक
1: जी
0: है
1: बबीता
0: बबीता
1: जी,
0: जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद बबीता जी। और इसी तरह से कुछ खाने पीने पे काफी मैसेजेस हमारे आए हैं, और एक वेट पे काफी लोग बात कर रहे हैं। इन्होंने लिखकर भेजा है, पीलीभीत से तिलक ने, मेरी दीदी की उम्र 47 ईयर्स है, उनका वेट 85 केजीज है और उनका पेट लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं उन्हें रोज एक्सरसाइज करने के लिए कहता हूं तो वो कहती है कि शरीर साथ नहीं दे रहा है और एक्सरसाइज मैं नहीं कर पाती हूं। तो क्या एक्सरसाइज वो कर सकते हैं और उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ये?
0: जी देखिए, मैंने अभी दो गोल्डन
1: जी
0: नंबर आपको बताए थे, 102 सेंटीमीटर आदमी जो मेल है उन्हें याद रखना चाहिए, और 88 सेंटीमीटर है वो औरतों को याद रखना चाहिए। ये उनका वेस्ट सर्कमफ्रेंस, अगर इससे ज्यादा है तो आपके रिस्क जो है वो बढ़ रहे हैं, ये ओबिसिटी भी है और आपके फैटी लिवर डायबिटीज इन सब के रिस्क भी बढ़ जाते हैं। तो आपको उसी हिसाब से अपना वेस्ट मेजर कर लीजिए, और अगर आपको ये इन नंबरों से ऊपर है तो फिर आप एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। हर तरह की एक्सरसाइज आप, जैसा कि मैं बता रही हूं बार बार, कि हर आदमी के लिए एक कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं होती कि हम कहते भाई आपको ये करना है तो करना है। आप अपने हिसाब से शुरू कीजिए, धीरे धीरे घूमना शुरू कीजिए, या जो भी आपकी बॉडी को
1: जी जी
0: कन्वीनियंट
1: जी
0: लगता है शुरुआत उससे कीजिए।
1: जैसे मुझे लग रहा है कि वो बहुत विगरस एक्सरसाइज के लिए उनको फोर्स कर रहे होंगे,
0: हाँ
1: वो
0: भाई,
1: नहीं कर
0: ऐसा
1: पा
0: नहीं हो
1: रहे।
0: सकता ना कि अचानक आपको आज कह दिया जाए जाइए 10 किलोमीटर दौड़ लगाकर आइए, तो
1: जी
0: ऐसा नहीं
1: जी
0: होता। इट हैज टू बी ग्रेडेड। आज अगर आपने 15 मिनट किए तो अगले हफ्ते फिर आप 20 मिनट आइए, फिर ऐसे
1: जी
0: 25, फिर
1: धीरे धीरे
0: बढ़ाइए
1: शुरुआत करें।
0: धीरे धीरे शुरुआत। हर चीज नीचे से ऊपर ही जाती है ना, ऐसा नहीं होता कि अचानक एक दिन में सारी चीजें
1: बिल्कुल
0: हो
1: बिल्कुल
0: जाती
1: सही
0: हैं।
1: बात है।
0: और वेट लॉस और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, तो इट गोज अ लॉन्ग वे। ये तो एक लाइफ, हम बात करें लाइफ स्टाइल, यानी जिंदगी भर आपको ये चेंजेस अपने में लाने हैं। ऐसा नहीं है कि हमने 2 महीने किया कि दवाई भाई 15 दिन का कोर्स दिया खत्म हो गया। ये हम कह रहे हैं बार बार लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करें, मतलब
1: जी
0: जो आपकी जीवन शैली है उसको आप बदलाव डालें। तो ये तो धीरे धीरे आएंगी, एक दिन में तो ये बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि ये जो फर्क पड़ा है ये इतने सालों में पड़ा है ना। आप एक दिन में थोड़ा मोटे हो गए, एक दिन में थोड़ा फैटी लिवर आ जाता है, इट
1: बिल्कुल
0: टेक्स अ लॉन्ग टाइम। तो वैसे ही बदलाव में भी, नेचर में, खान पान में, वो लाइफ स्टाइल में धीरे धीरे बदलाव आएगा, एकदम तो कभी भी किसी में भी बदलाव लाना मुश्किल होता है।
1: जी बिल्कुल सही बात है। और बहुत सारे हमारे श्रोता जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो इस चीज से बिल्कुल इत्तेफाक रखेंगे जो डॉक्टर साहब बोल रही है, वी हैव टू मेक चेंजेस इन आर लाइफ स्टाइल, है ना। तो एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और लौट के आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं फैटी लिवर के बारे में और साथ ही बात कर रहे हैं खाने में होने वाली मिलावट के बारे में। हमारे साथ हमारी रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर वैशाली भारद्वाज, मैं हूं शालिनी मित्तल, सुनते रहिए कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।

0: आप है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में और आज हम बात कर रहे हैं फैटी लिवर और खाने में होने वाली मिलावट, इसके होने वाले नुकसान पर। और हमारे एक श्रोता हैं जो फोन लाइन पर इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो
1: जी, नमस्कार मैम।
0: जी नमस्कार।
1: मेरा पेट काफी बढ़ रहा है दिन के दिन, 2-3 महीने से तो काफी बढ़ गया। मैम उठने बैठने में तो काफी दिक्कत हो रही थी, तो कैसे तुम क्या जा सकता है इसके बारे में जरूर बताएं मैम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा।
0: तो पेट बढ़ रहा है तो मैम बहुत देर से बोल रही है कि आपके खाने पीने का, आपकी लाइफ स्टाइल, ये सारी चीजें आप गौर करें।
1: जी मैम
0: जी, एक्सरसाइज करें। ये तो मैं ही बता दिया, मैंने ही बता दिया क्योंकि मैं डॉक्टर साहब के साथ बैठी हुई हूँ, तो इतना तो समझ में आ गया। आपने अभी ट्यून किया है क्या कार्यक्रम?
1: यस मैम।
0: जी जी जी जी। तो आप ऐसा है, आप हमारे साथ रहें, हम कार्यक्रम के अंत में एक बार पुनः बात करेंगे मैडम से कि इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, और उसमें मैम काफी सारी चीजें बताएंगी हमें कि किस तरह से हम फैटी लिवर को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, यशपाल हमें लिख रहे हैं द्वारका दिल्ली से कि नमस्कार कर रहे हैं, साथ ही लिख रहे हैं माई क्वेश्चन इज कि आई हैव बॉर्डर लाइन हाई LDL एंड टोटल कोलेस्ट्रॉल एंड SGPTDO, आई नीड मेडिकेशन। तो क्या ये इससे कुछ जुड़ता है जो आप?
2: देखिए यशपाल जी, आपके आसपास या किसी ने आपको ये टेस्ट करवाने को बोला होगा ना, या तो ये ब्लड टेस्ट होते हैं, तो जिन भी डॉक्टर ने आपको ये बोला है करवाने के लिए, एक बार आप उनसे जाएं और संपर्क करें, वो आपको देखेंगे, एग्जामिन करेंगे, और जो नॉन इन्वेजिव टेस्ट होते हैं फैटी लिवर के, वो करवाएंगे इन ब्लड टेस्ट के साथ, और फिर देखेंगे कि कितना रिस्क है। उस हिसाब से वो आपको बता देंगे कि इनिशियल आपको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की जरूरत है या कोई दवाइयां लेने की जरूरत है।
0: जी, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर नगर से तरुण लिख रहे हैं, मेरी उम्र 43 इयर्स है और मेरा वजन 63 kg है। मुझे मोटे होने से डर लगता है, इसलिए मैं रोज एक्सरसाइज करता हूं, पर लोग मुझे कहते हैं कि उम्र के हिसाब से मैं थोड़ा पतला हूं, तो क्या मेरा वजन उम्र के हिसाब से ठीक नहीं है?
2: देखिए ये हमें अपनी बॉडी वेट से ना कभी हम खुश नहीं होते। जो मोटा होता है उसको लगता है कि हमें हम मोटे हैं, जो पतले होते हैं उन्हें लगता है वो हम पतले हैं। तो लोग क्या कह रहे हैं, आप इस पर ध्यान मत दीजिए। आप जो लाइफस्टाइल, जीवन शैली जो आप कर रहे हैं वो अच्छा है, और उसको आप मेंटेन करके रखें, उससे आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। इम्पोर्टेंट बात है हेल्दी होना, और आइडियल बॉडी वेट आप अपना हाइट और वेट के हिसाब से चेक कर लें कि क्या होता है। लोग अब लोगों के हिसाब से तो जीना बड़ा मुश्किल होता है ना। ये

0: अगर आपका
1: मुश्किल ही है
0: वेट वो आप
1: जी
0: जैसा मैडम ने बताया है और सरकमफ्रेंस भी
1: जी
0: आपने कई
1: जैसा
0: बार
1: कि वेट
0: बताया,
1: सर्कमफ्रेंस में कई बार बता चुकी, 102 आदमियों के लिए और 88 सेंटीमीटर औरतों के लिए, तो आप ध्यान रखें कि आप इन दोनों नंबरों से नीचे ही रहें तो वो बेहतर है आपके लिए।
0: जी संदीप कुमार लिख रहे हैं मुजफ्फरनगर बिहार से, मेरी उम्र 34 इयर्स है, मेरा पिछले कई वर्षों से फैटी लिवर ग्रेड 1 है, मैं नियमित एक्सरसाइज, रोज स्विमिंग करता हूं, खाने पीने में फल सब्जियां नियमित रूप से खाता हूं, प्रोसेस्ड फूड बहुत कम खाता हूं, क्या ये रिवर्सिबल है, इसे रिवर्स होने में कितना समय लगता है, मुझे और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: संदीप जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपको जो जो चीजें हम बता रहे हैं इस प्रोग्राम में वो आप सब फॉलो कर रहे हैं, तो रिवर्सिबल डेफिनेटली है। और आप लगे रहिए इन सब चीजों के साथ और इन्हें अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। ये नहीं है कि भैया मैं 6 महीने करके फिर छोड़ दूंगा तो फिर वापस दिक्कत हो जाएगी। तो आपकी जो लाइफस्टाइल चल रही है उसको आप मेंटेन करें तो आपका जो लिवर है वो भी हेल्दी रहेगा।
0: जी और मोहम्मद इब्राहिम लिख रहे हैं श्रीनगर से कि माय रिक्वेस्ट इज रिगार्डिंग यूसेज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन फ्रूट्स। हम थोड़ी देर पहले बात कर
1: जी
0: रहे थे
1: जी
0: कार्यक्रम
1: जी
0: में
1: जी
0: कि इस तरह से पेस्टिसाइड्स भी यूज होते हैं और उनको फ्रूट्स एंड देयर रीपिंग बिफोर देयर नॉर्मल टाइम, उनको पहले ही तोड़कर फिर उनको
1: जी
0: प्राकृतिक
1: प्रकृति
0: रूप से
1: रूप से
0: पकाया
1: पकाया
0: जाता है
1: जाता
0: जी,
1: है।
0: कुछ केमिकल्स यूज किए
1: जी
0: जाते
1: जी
0: हैं, तो इनका प्रश्न इसी से संबंधित है कि क्या ये भी हार्मफुल हो सकता है हमारी हेल्थ के लिए?
1: जी ये हार्मफुल है, इसलिए कहा जाए हमेशा कहा जाता है कि मौसमी फल और सब्जियां खाइए, कि जो जिस मौसम की फल और सब्जी अगर हम खाएंगे तो फिर किसान को भी इतनी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे ना चीजें पकाने के लिए, कि भाई जो गर्मी की चीजें हैं, जो सर्दी की चीजें हैं वो हम चाहते हैं हम गर्मी में खा लें, गलती तो हमारी ही है। हाँ, तो इसीलिए हमें जो सीजनल फ्रूट होता है वो उसी समय उन्हीं को खाना चाहिए। और डेफिनेटली पेस्टिसाइड्स और फूड एडल्ट्रेशन तो नुकसानदायक है ही है, तो उसका तो फिर अलग विषय में, इस पर तो अलग विषय में बात होनी
0: जी
1: चाहिए।
0: जी
1: पर जी हाँ, इनके नुकसान है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो जिस मौसम का फल हो वो खाएं, क्योंकि वो उसी मौसम में प्राकृतिक रूप से ही बड़ा हुआ होगा और हमें नुकसान भी नहीं दिया होगा उसमें, और उसमें एडल्ट्रेशन की मात्रा कम से कम होगी।
0: जी हमें ये प्रश्न किया है, लिखने वाले का नाम मुझे नहीं इधर मिल रहा है, इन्होंने लिखा है कि रात को खाना मैक्सिमम कितने बजे तक खा लेना चाहिए, खाने के तुरंत बाद सो जाना कितना सही है?
1: रात को खाना 7 से 7:30, अगर आप 10 बजे सोते हैं तो आप 7 से 7:30 के बीच में अपना रात का खाना खा लें, और उसके खाने के एकदम बाद बैठ के 2 घंटे टीवी ना देखें। कोशिश करें कि आप आधा पौना घंटा टहलें, उसके बाद किसी तरह का हल्का फुल्का व्यायाम करें, और खाने के एकदम बाद सोना तो किसी भी मायने में हेल्दी नहीं होता
0: नहीं
1: है।
0: नहीं
1: एटलीस्ट खान जो लास्ट हमारा मील है वो सोने से 2 से 3 घंटे पहले होना चाहिए, जिससे पाचन क्रिया जो है वो हो जाए सोने से पहले पहले।
0: जी और ये दूसरा प्रश्न है भेजने वाले सुशील ठाकुर, ये लिख रहे हैं कितना खाना चाहिए रात में कितना
1: ये तो अब
0: खाना
1: आप डिसाइड करेंगे कि आप कितना और क्या खाना चाहते हैं। वैसे रात
0: चाहिए
1: का खाना हल्का होना चाहिए, सबसे भारी नहीं होना चाहिए।
0: जी
1: सुबह का नाश्ता सबसे हैवी मील होना चाहिए, फिर जो लंच है वो थोड़ा उससे हल्का, और रात का खाना सबसे हल्का
0: जी
1: जिससे वो
0: जी
1: जल्दी पच जाए।
0: अच्छा एक प्रश्न मेरा है डॉक्टर साहब कि अगर किसी को पता लग भी जाता है, जैसा आप कह रही हैं कि फैटी लिवर बहुत कॉमन है, घबराने की जरूरत नहीं है कोई,
1: जी
0: पर कोई इतना रिलैक्स हो जाए कि वो फिर उसके आगे कुछ चेंजेस करे भी नहीं और उसको लगे कि कुछ ठीक है ये तो बहुत नॉर्मल है, तो क्या उसके आगे पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस कुछ हो
1: जी
0: सकते हैं?
1: जैसे कि मैंने बताया, जो फैटी लिवर है वो एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिसीज है, जिसका जो सबसे नीचे वाली सीढ़ी है अगर हम बात करें तो वो है फैटी लिवर। उसके बाद जब इन्फ्लेमेशन, जब फैट जो है वो ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो स्टियो हेपेटाइटिस शुरू हो जाता है, यानी एक तरह की इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है लिवर के सेल्स में, जिसको हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टियो हेपेटाइटिस। और अगर इस समय भी हम ध्यान ना दें, लाइफस्टाइल ना मॉडिफाई करें, और साथ में हमें कार्डियोवास्कुलर डिसीज है, डायबिटीज है, ऐसी बीमार मोटापा है, और हम अपने खान पान का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो आगे जाके चांसेस हैं कि हमें फैटी लिवर डिसीज हो सकती है आगे जाके, जिसमें हमें सीएलडी जो सिरोसिस ऑफ लिवर है वो हो सकता है, और सिरोसिस ऑफ लिवर के सारी कॉम्प्लिकेशंस जैसे पेट में पानी भरना, साइटिस होना, गफलत में आ जाना, हेपेटिक एनकेफेलोपैथी होना, और आगे चल के लिवर का जो कैंसर है वो भी हो सकता है। तो इसीलिए जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने भी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज पे, नॉन कम्युनिकेबल जो एक डिसीज होती है, इस पे प्रोग्राम शुरू किया है, अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है कि नीचे नीचे के लेवल से लेके और टर्शरी केयर हॉस्पिटल तक सब जो हेल्थ केयर वर्कर उस लेवल पे होते हैं उन्हें ट्रेन किया जाए, उन्हें अवेयर किया जाए कि कैसे फैटी लिवर डायग्नोस करना है, कैसे हमें एक स्टेज को दूसरी स्टेज में जाने से रोकना है, और जब तक चीजें रिवर्सिबल हैं मतलब वापस नॉर्मल हो सकती हैं, सब लोगों को मोटिवेट

0: है, प्रोत्साहित करना है और ये जागरूकता फैलानी है कि भाई आप लाइफस्टाइल मॉडिफाई कीजिए जिससे ये फर्क पड़े और रिवर्सिबल होके आपका लिवर जो है वो नॉर्मल हो जाए।
1: जी, और कोई भी बीमारी से बचना सबसे अच्छा होता है, या
0: प्रिवेंशन इज
1: प्रिवेंशन इज
0: ऑलवेज
1: ऑलवेज
0: बेटर
1: बेटर देन
0: देन
1: क्योर।
0: क्योर।
1: तो हम कार्यक्रम समाप्त करें, अभी समय है हमारे पास थोड़ा सा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप भेज सकते हैं, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि अभी एक श्रोता हमारे साथ जो फोन लाइन पर जुड़े थे तो वो भी कह रहे थे, कुछ मैसेजेस भी आए थे, तो मैंने उनको यही कहा कि ये बात हम पुनः आखिर में करेंगे, जिससे हमारे जो श्रोता बाद में भी जुड़े उन्हें भी लाभ मिल सके कि प्रिवेंशन क्या है इसका, और अगर प्रिवेंशन के लिए हम वर्क करना चाहें, चाहे जिसको नहीं हुआ है या जिसको ग्रेड वन है या स्टार्टिंग है, ये सबके लिए बताएं कि एक जो टिप्स जो है आपकी तरफ से आज के।
0: देखिए, एक तो जनरल मेजर्स हैं जो सबको फॉलो करने चाहिए, कि हमें जनरल मेजर है जो आपको फैटी लिवर है, आपको नैश है, आपको नेफल्ड है, या आप जनरल है, मैं आप इसमें सब आ गए,
1: जी
0: ये कुछ चीजें हैं जो हम सबको फॉलो करनी चाहिए। वो है कि हमें अल्कोहल नहीं पीना चाहिए सबसे पहले, जैसे कि हमने बात की थी, नशे के ऊपर एक क्वेश्चन भी
1: हाँ
0: आया था,
1: जी,
0: हमें किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए। पीयर प्रेशर में आके सोशल, उसके लिए आजकल बहुत सारे इश्यूज हैं जिनकी वजह से अल्कोहल सभी पीते हैं, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो हैवी अल्कोहल यूज है, एक तो आपका लिवर पहले से ही डैमेज है, साथ में अगर आप ऊपर से अल्कोहल और स्मोकिंग करोगे तो वो और डैमेज हो जाएगा। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें अल्कोहल बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। फिर बहुत सारे हेपेटाइटिस के वायरस हैं जो हमारे सोसाइटी में, हमारे यहाँ प्रचलन है, और कुछ लोगों, कुछ के तो प्रिवेंशन के लिए इम्यूनाइजेशन है, तो हमें सबको अपने आप को इम्यूनाइजेशन जो इंजेक्शन है वो लगवा लेने चाहिए, जिससे एटलीस्ट हमारे लिवर पे दूसरा जो अटैक है किसी और चीज का वो ना हो फैटी लिवर के
1: जी,
0: साथ।
1: इंजेक्शंस कौन से
0: हेपेटाइटिस
1: हैं?
0: बी के,
1: अच्छा,
0: हेपेटाइटिस बी
1: हेपेटाइटिस
0: का
1: बी के,
0: वैक्सीन है, जो
1: ओके,
0: हेपेटाइटिस बी बड़ी
1: हाँ
0: प्रिवेंटेबल
1: जी,
0: है, वो हमें करना चाहिए सब तरह के। और फिर आती है डाइट रिकमेंडेशन। डाइट, जैसा कि मैंने बताया है कि हमें एक बैलेंस डाइट खानी है, ये नहीं है कि सिर्फ हम कार्ब्स नहीं खा रहे हैं, हम हाई प्रोटीन डाइट खा रहे हैं। जिम जो लोग जाते हैं वो बड़ा प्रचलन है कि बहुत सारे हमने ये सप्लीमेंट्स ले लिए, हमने हाई प्रोटीन, हम बस प्रोटीन ही प्रोटीन खा रहे हैं, बाकी चीजें हम नहीं खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, फैट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, और गुड फैट्स जो है वो हमें खाने चाहिए। तो एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिसमें फ्रूट, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, दालें जो होती है वो, और जो संतुलित भोजन जो होते हैं ना, एक थाली दिखाई जाती है हमेशा जिसमें
1: बिल्कुल,
0: सारी चीजें
1: और
0: हैं,
1: कलर्स भी
0: हाँ,
1: कहते
0: कलर्स
1: हैं
0: पे,
1: कि अगर
0: कलरफुल फ्रूट्स,
1: जी
0: हमें 2 से 3 सर्विंग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अपने खाने में इंक्लूड करनी चाहिए। हमेशा हेल्दी फैट्स खाने चाहिए, और जो सैचुरेटेड फैट्स हैं वो उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए, जो रेड मीट में होता है, जो फुल फैट जो डेयरी होती है ना वो उनमें होता है, और फ्राइड फूड्स जो होते हैं, प्रोसेस्ड फूड होते हैं, वो हमें नहीं लेने चाहिए। फिर ट्रांस फैट जो होते हैं, जो हम प्रोसेस्ड फूड की बार बार बातें कर रहे हैं, वो सब हमें बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। और पोर्शन कंट्रोल पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ये
1: अच्छा
0: नहीं कि हम इतनी बड़ी थाली भर के बैठ जाए, हमें अपने पोर्शन को धीरे धीरे कम करना चाहिए, और कैलोरी काउंट करके वो खानी चाहिए कि भाई इतनी कैलोरी हम खाएंगे, इतना कम पोर्शन, धीरे धीरे हमें पोर्शन कम कर देना चाहिए और बैलेंस्ड होना चाहिए। साथ में फाइबर जो है उस पर बहुत स्ट्रेस होता है, फाइबर इंटेक हमें बढ़ा देना चाहिए, और खूब पानी पीना चाहिए, अपने आप को हाइड्रेट रखना है। फिर एक्सरसाइज पे हम बात कर ही चुके, जो भी आपको सूट करे अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से, वो आपको एक्सरसाइज को भी अपनी लाइफस्टाइल का एक परमानेंट हिस्सा बनाना ही बनाना है। क्योंकि जब वेट अगर हमारा लॉस होगा तो हमारा जो फैटी लिवर है या नैश है या हम लिवर डिसीज तक पहुंचने वाले हैं वो सब कंट्रोल हो, और साथ में इनके एसोसिएटेड जो भी बीमारियां होती हैं जैसे डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, हाइपरटेंशन, वो भी कंट्रोल होंगी। एक्सरसाइज से आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी, तो एक्सरसाइज से आपको फायदा होगा। और
1: जी
0: रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन कर लिया फिर छोड़ दिया, आपको रेगुलर, ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं ये आपको रेगुलर अपनी जिंदगी का, अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना है इनको रोज।
1: जी तो बहुत सारी बातें आज डॉक्टर साहब ने हमें बताई, फैटी लिवर से संबंधित कैसे इससे बचा जा सकता है, अगर हो जाता है तो भी आपने बताया इसको रिवर्स किया जा सकता है, और कैसे हमें लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए,
0: हाँ,
1: है ना?
0: एटलीस्ट 1 घंटा एक्सरसाइज, विग्रस एक्टिविटी जिसे कहते हैं, वो होनी चाहिए। शुरुआत आप धीरे धीरे कीजिए, लेकिन आप 1 से 1.25 घंटे का एक्सरसाइज आप रोज रखिए, जिसमें आपका सांस फूले बात करते हुए ना,
1: अच्छा।
0: हाँ, वो टेस्ट होता है कि आप एक्सरसाइज करें तो आप किसी से बात ना कर पाए, आपको इतनी एक्टिविटी हो रही है, इस तरह की एक्सरसाइज। ऐसा नहीं कि आप धीरे धीरे चल रहे हैं और
1: जी जी
0: पसीना भी नहीं आ रहा और सांस भी नहीं चढ़
1: अच्छा,
0: रहे हैं,
1: मतलब
0: हाँ,
1: विग्रस होनी
0: विग्रस
1: चाहिए।
0: एक्टिविटी होनी चाहिए,
1: जी
0: फिजिकल
1: जी
0: एक्टिविटी।
1: तो हमारे आज बहुत सारे मैसेज आए हैं जो इस बात को ये दर्शा रहे हैं कि हमारे श्रोता काफी वेट
0: हाँ
1: कॉन्शियस हैं,
0: जी जी
1: बता रहे हैं कि वो कर रहे हैं और कुछ
0: जी
1: लोग कोशिश कर रहे हैं,
0: जी
1: तो हमें लगता है आज का जो ये कार्यक्रम है

0: सुनकर आपको काफी फायदा हुआ होगा, लाभ मिला होगा, और कुछ जो जिज्ञासाएं थी मन में, कुछ शंकाएं थी, कुछ समस्याएं जो आपकी,
1: एटलीस्ट अवेयरनेस है, लोग इतने सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एटलीस्ट वो अवेयर है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। ये सबसे बड़ी बात होती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, कि आपको पता है कि कहीं प्रॉब्लम है।
0: शुरुआत
1: वहीं से होती है कि यू नो कि देयर इज अ प्रॉब्लम समवेयर।
0: बिल्कुल, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला डॉक्टर साहब, और इतनी सारी जो शंकाएं हमारे श्रोताओं के मन में थी उसको आज दूर करने में आपने मदद की है। तो हमारे साथ आज रेडियो डॉक्टर के रूप में डॉक्टर वैशाली भारद्वाज रही, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल। हमारी आज बातचीत काफी गहन हुई और हमने काफी कुछ सीखा आपसे, पता चला हमें, फैटी लिवर को हमने जाना, साथ ही साथ फूड सेफ्टी, फूड एडल्ट्रेशन के होने वाले नुकसान क्यों होता है और कैसे हमें अपने खाने में बदलाव करना चाहिए, इसके बारे में भी हमें काफी कुछ जानकारी मिली। तो आपको अगर ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा, तो आप हमें फीडबैक के माध्यम से बता सकते हैं, सुझाव भी लिख सकते हैं, हमें मेल लिखिए healthairdelhi@gmail.com पर और बताइए कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। आप रोज जुड़ते हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के साथ FM रेनबो 102.6 पर, और इस कार्यक्रम में आपको हम प्रतिदिन कोई ना कोई नई जानकारी देते हैं स्वास्थ्य से संबंधित। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, आगे भी जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। और अब स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब।
1: थैंक यू।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इनमें बाघुआ पार, बुधपांक, हरिदासपुर पारादीप, खुर्दा रोड, बलंगीर, नौपाड़ा, गुनपुर, लांजीगढ़ रोड, जूनागढ़ और बोबिली सालूर शामिल हैं। इन मार्गो पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए

राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकतानुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलेंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिस कर्मियों और NVM कर्मचारियों का मासिक मानदेय ₹2,000 बढ़ाया गया है। बजट में 2 प्रमुख रक्षा केंद्रों के विस्तार और विकास में मदद के लिए हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन को 25 एकड़ और कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन को 37 एकड़ जमीन सौंपने का भी प्रस्ताव है। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADMK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने परियोजना के विरोध में अपना रुख दोहराते हुए कहा कि तमिलनाडु के जल अधिकारियों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ओडिशा में विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने मार्च में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजू जनता दल और कांग्रेस के क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां और सबूतों का मानक अभाव था। नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की बैठक हो रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल कर रहे हैं। बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। बैठक का मुख्य विषय वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेतेग बटमुंग से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी, मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई है। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में हुए बदलावों से शासन और प्रशासन में

संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवाद सत्र में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। मृतकों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों ने बताया कि उनमें से कुछ लोगों की हालत बहुत गंभीर है। इस बीच अधिकारियों ने प्रतिकूल मौसम और बादल गरजने के दौरान लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। फीफा विश्व कप में मिस्र ने आज सुबह वैंकूवर में न्यूजीलैंड पर इस टूर्नामेंट में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। ये मैच रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम अल्फा जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे शालिनी। दोस्तों, खास सोमवार के दिन हम आपके लिए अल्फा जैन में लेकर आते हैं यूथ स्पीक्स, यानी आप युवाओं में से किसी एक को मिलता है मौका रेनबो के स्टूडियो में आने का और प्रोग्राम को प्रेजेंट करने का। आज ये मौका मिला है अनन्या दहिया को। अनन्या, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अनन्या ग्रेजुएशन कर रही हैं और जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं। तो अनन्या, आपको कैसा महसूस हो रहा है रेनबो के स्टूडियो में आकर?
2: थैंक यू सो मच शालिनी जी, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है।
1: तो किस टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं अनन्या?
2: तो जैसे कि सूरज ढल रहा है और शाम होते होते हमें एक अलग सी थकान तो महसूस होती ही है, जहाँ बॉडी बोलती है बॉस आज का काम खत्म, लेकिन दिमाग बोलता है एक मिनट, ओवरथिंकिंग तो बाकी है। कभी असाइनमेंट्स का प्रेशर, कभी अटेंडेंस का टेंशन, कभी लास्ट सीन देखते देखते टाइम कैसे निकल जाता है इसका तो कुछ पता ही नहीं लगता है।
1: सही बात है।
2: इतनी रील्स देखते हैं कि फोन भी बोलता है भाई थोड़ा ब्रेक ले ले। तो आज अगर आपका ब्रेन भी टू मैनी टैब्स ओपन मोड में बैठा है, तो उसके लिए आज मैं आपको एक रिलैक्सेशन देने आई हूँ। अगले कुछ मिनट्स किसी लेक्चर के नहीं, सिर्फ आपके हैं। मैं आपको बताऊंगी कि हम योग को कैसे अपनी लाइफस्टाइल पे अडॉप्ट कर सकते हैं और इस स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर से एस्केप कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत बढ़िया टॉपिक लेकर आई हो अनन्या, क्योंकि जब हमने कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन भी मिली, लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो अब इससे मुंह मोड़े बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी बिजी लाइफस्टाइल में हम सबको जरूरत है योग को अपनाने की, और योग को कैसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाया जा सकता है, इस पर अनन्या करने वाली है बात आज के अल्फा चैन में। शुरुआत करते हैं एक बढ़िया से गाने के साथ।

कितनी अजीब सी बात है ना, हम पूरा दिन फोन की बैटरी, वाईफाई और नेटवर्क की टेंशन लेते रहते हैं, लेकिन जिस चीज के बिना हम एक मिनट भी नहीं रह सकते उस पर तो कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। सोचिए जरा किस पे बात चल रही है। मैं बताती हूँ, हमारी सासू पे। स्ट्रेस हो, प्रेजेंटेशन का प्रेशर हो या एग्जाम की टेंशन, सबसे पहले हमारी ब्रीदिंग ही चेंज होती है, सांस फूलने लगती है। और तभी एक छोटी सी हैबिट बहुत काम आ सकती है, कॉन्शियस ब्रीदिंग। क्या आप सही तरीके से सांस ले रहे हैं या गलती कर रहे हैं, जानेंगे इस गाने के बाद।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
1: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
2: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
4: Hey, did you know? Over the past 12 years, under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, India's defense sector has witnessed a remarkable transformation. From boosting indigenous manufacturing to strengthening defense exports, India is shaping the future of defense with confidence.
5: You are right. In the defense sector, the Ministry of Defense has been creating the right environment for Indian companies to design, develop and build world-class technologies right here at home.
4: Exactly. And one name that's leading this transformation is HAL, Hindustan Aeronautics Limited. From indigenous fighter aircraft and combat helicopters to trainers, transport aircraft and advanced aerospace system, HAL is helping build the future of India's defense.
5: HAL is bringing together private industry and thousands of MSMEs to create a powerful defense manufacturing ecosystem.
4: So, every innovation is taking India one step closer to an Atmanirbhar Bharat, powered by Indian talent, Indian technology and Indian determination.
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
9: वेलकम बैक दोस्तों, आकाशवाणी रेनबो पर मैं हूं आपके साथ अनन्या, और अभी हम बात कर रहे थे कॉन्शियस ब्रीदिंग के बारे में। मैं आपके साथ एक छोटी सी टेक्निक शेयर करती हूं जो मैं हमेशा करती हूं जब मेरे को स्ट्रेस फील होता है। तो अभी ट्राई कीजिए, अगर आप किसी सेफ जगह पर हैं, नाक से धीरे से सांस लीजिए, लगभग 4 सेकंड लंबी, फिर 2 सेकंड बस उसे होल्ड कीजिए और 6 सेकंड में आराम से सांस को छोड़ दीजिए। बस 2-3 बार करिए और देखिए इस चीज़ का मैजिक। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, लेकिन बस दिमाग को एक सिग्नल देता है, रिलैक्स, सब कंट्रोल में है। और इसी एहसास को एक खूबसूरत सा गीत हमारा बनाता है, फिल्म जब तक है जान से सांस।

दोस्तों, आपके लिए एक सवाल। कभी ऐसा हुआ है कि फोन तो सिर्फ चार्जिंग पे लगा हो, लेकिन चार्जिंग की जरूरत आपके ब्रेन को हो? बस आंखें बंद कीजिए और 100 से उल्टा काम करना शुरू कीजिए। हर नंबर के साथ अपनी सांसों को आता जाता महसूस कीजिए। अक्सर 2-3 मिनट ही काफी होते हैं दिमाग को एक डायरेक्शन देने के लिए, और उसके बाद या मेडिटेशन करें या 2 मिनट खामोशी में बैठे रहे, ये आपकी अपनी चॉइस है। फिलहाल इसी सुकून को थोड़ा और महसूस करते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत आपके लिए।

सुन रहे हैं आप यू स्पीक्स। मैं हूं आपके साथ अनन्या और आज मैं एक और लाइफ हैक आपके साथ शेयर करना चाहती हूं। दोस्तों, कभी किस बिना किसी वजह से आपका मूड ऑफ हुआ है? ना पढ़ने का मन करता है, ना बात करने का, और बस ऐसा लगता है कि दिमाग कहीं और ही भागे जा रहा है। ऐसे में बस एक सिंपल सी ट्रिक ट्राई कीजिए, जहां है वही रुक जाइए और 5 चीजें देखिए, 4 चीजें छूइए, 3 आवाजें सुनिए और 2 खुशबुएं महसूस कीजिए और फिर एक गहरी सांस लीजिए। मैं तो यही ट्राई करती हूँ हमेशा जब भी मेरा मूड ऑफ होता है। ये छोटी सी एक्सरसाइज दिमाग को फ्यूचर की टेंशन और पास्ट की ओवरथिंकिंग से बाहर निकालता है और वापस हमें लाता है इसी पल में। चलिए अब इंजॉय करते हैं प्रेजेंट को और सुनते हैं एक और मधुर गीत।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
2: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
1: क्या ये जांच उपलब्ध है?
3: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
4: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
3: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
4: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
5: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
6: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
7: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
6: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
7: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
6: और विनर्स को क्या मिलेगा?
7: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
8: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
9: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
10: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अल्फा चैन और आज बात हो रही है योग को एक्सरसाइज को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा कैसे बनाएं, वो आसान ट्रिक्स आपको बता रहे हैं हम।

0: सिर्फ 30 सेकेंड्स का एक करते हैं हम रिचार्ज हैक। जहां बैठे हैं वही अपने शोल्डर्स को धीरे से 5 बार आगे और 5 बार पीछे घुमाइए। फिर गर्दन को आराम से राइट और लेफ्ट स्ट्रेच कीजिए और एक लंबी सी सांस लेके धीरे से छोड़ दीजिए। ये छोटे छोटे मूवमेंट्स बॉडी की स्टिफनेस कम करते हैं, मसल्स को जेंटली वेकअप करते हैं और हमें ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस कराते हैं। ट्राई कीजिए, तब तक आती हूँ मैं।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: हे, तुम्हें पता है पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। स्वदेशी उत्पादन और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देकर भारत आत्मविश्वास के साथ रक्षा क्षेत्र के भविष्य का निर्माण कर रहा है।
3: बिल्कुल, रक्षा क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय भारतीय कंपनीज को भारत में ही विश्व स्तर की तकनीकों के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
2: हाँ, सही है। इस बदलाव में HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड अग्रणी भूमिका निभा रहा है। स्वदेशी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों से लेकर प्रशिक्षक परिवहन विमान और उन्नत एरोस्पेस प्रणालियों के माध्यम से ये भारत के रक्षा भविष्य को मजबूत बना रहा है।
3: और सबसे खास बात, HAL ने प्राइवेट इंडस्ट्री और हजारों MSMEs को जोड़कर देश में एक मजबूत एरोस्पेस इकोसिस्टम भी तैयार किया है।
2: इस तरह भारतीय प्रतिभा, तकनीक और संकल्प के बल पर हर नवाचार भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ा रहा है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: यार, मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
6: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक 23 डिलीवरी।
5: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
6: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
7: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
8: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
9: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: योग के बारे में इंटरनेट बहुत कुछ बता देगा, लेकिन योग को फील कैसे किया जाता है वो एक प्रैक्टिशनर ही बता सकता है। इसीलिए हमने बात की है हिमांशु जी से, जो मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा से जुड़े हुए हैं। उनकी बातों में है एक्सपीरियंस, सिंप्लिसिटी और एक अलग नजरिया। तो चलिए सुनते हैं।
10: हरिओम। यदि हम बात करें योग के विषय में, तो जैसे ही योग शुरू होता है पतंजलि जी के साथ, तो उन्होंने सबसे पहली जो लाइन बोली, अथ योग अनुशासनम, योग अनुशासन है। अनुशासन किस प्रकार से और क्यों आवश्यक है, तो 3 विषय में जब उन्होंने योग को बांटा, क्रिया योग, योग के साथ अभ्यास और वैराग्य और अष्टांग योग। अष्टांग योग सभी के लिए है, हर एक व्यक्ति विशेष के लिए, जो सामान्य लोग हैं उनके लिए भी और जो श्रेष्ठ हैं उनके लिए भी। अब जो अष्टांग योग है वो शुरू ही होता है यम और नियम के साथ। यम नियम वो एक अंग है जो आजकल सभी लोग भूलते जा रहे हैं या छोड़ते जा रहे हैं। यम नियम अधिक नहीं, केवल वो मोरल्स हैं, वो एथिक्स है जो सबको फॉलो करने चाहिए। ये सेल्फ और सोशल दोनों है। जब तक एक पर्सनैलिटी, एक चरित्र स्वयं के स्तर पर व सामाजिक स्तर पर संयमित नहीं बनेगा, तो वो योग नहीं कर पाएगा। फिर जो आजकल एक ट्रेंड चल रहा है आसनास का, आसन को ही योग समझने लगे हैं, तो योग उससे अधिक है। अगर हम देखें जो निम्न स्तर का योग, जिसे हम अष्टांग कह रहे हैं, 8 में से केवल एक अंग है, उसके बाद प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, अन्य विशेष भी हैं। अब उसके अलावा अगर हम क्रिया योग के अंदर आए या भगवत गीता के अंदर जाएं, जो भी की सबसे बड़ी टीचिंग है, तो वहाँ एक लाइन कही गई, योगा कर्म सु कौशलम, बींग स्किलफुल और द सेंस ऑफ स्किलफुलनेस और कैन बी से परफेक्शन इन एक्शन, वो योग है। जब तक आप किसी भी कार्य में, किसी भी एक विशेष चीज में कुशलता को नहीं लेके आएंगे, आपके अंदर वो कौशल नहीं होगा, तो आप योग नहीं कर रहे हैं। जो सामंजस्य है, समता है, जो आप नहीं बना पाएंगे, तो योग नहीं है। उसी भगवद गीता के अंदर एक और लाइन कोट करी जाती है, समत्वम योग उच्चते।

0: जो संभव है, जीतने का, हारने का, किसी चीज को पाने का, खोने का, अगर आप उसके साथ अटैच हो जाएंगे तो भी योग नहीं हो पा रहा है। जो आजकल समस्याएं हैं वो शारीरिक से ज्यादा मानसिक है, तो मानसिक विचारधारा को ठीक करने के लिए, उससे जुड़ने के लिए, समझने के लिए आपको योग को पहले मॉरल्स एथिक्स के ऊपर लेके आना पड़ेगा, फिर आप जा सकते हैं जो सेल्फ डिसिप्लिन जिसे हम कहेंगे, अनुशासन की जो उन्होंने बात करी, फिर उसके बाद हम हायर स्टैंडर्ड पे जाएंगे जो हमारा तीसरी लाइन है, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जो दृष्टा की एक अवस्था है, जो हमको जिस सेंस में रहना है, जस्ट टू सीइंग सेल्फ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, शरीर अभी भी है, बाद में होगा नहीं होगा, जो जुड़ाव है वो हमें रखना है नहीं रखना, वो केवल एक चीज पे निर्भर करता है। जब हम स्वयं से जुड़ते हैं अपने किसी भी एक चीज से, आज हमने कोई हेयर स्टाइल करवाया, कल को हमको अच्छा नहीं लगेगा, क्या हम बदल गए, क्या वो बाल बदल गए, क्या क्या बदला, जो ऐसा जिस वजह से जो हमको कल तक अच्छा लग रहा था, जिसके लिए हम सोच रहे थे कि हमको ये पाना है, वो प्राप्त करने के बाद अच्छा नहीं लग रहा, वो मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए योग बहुत आवश्यक है। आजकल जो बीमारियां या समस्याएं लोगों को मिल रही हैं देखने के लिए, वो तनाव है, वो डिप्रेशन है, उससे मुक्त होने के लिए योग एक बहुत अच्छा उपचार हो सकता है। और योग को जैसे हमने शुरू करा था बताना कि योग अनुशासन है, ये अनुशासन के साथ एक अभ्यास है। अभ्यास केवल आसनों का शरीर को तोड़ने और मोड़ने का नहीं है, इस मन को, इस चेतना को जानना, समझना व उसके साथ कार्य करना। व्युत्थान जीवन में आते रहेंगे, गिरना जरूरी है, अगर गिरेंगे नहीं तो उठने का भाव नहीं आएगा। तो उठने के लिए, बढ़ने के लिए, चलने के लिए जो हमको एक सेंस ऑफ एनर्जी की जरूरत है, जो सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, जो डिसिप्लिन, जो निरंतरता को बनाए रखता है, वह योग है। वह अभ्यास केवल आसनों का नहीं, वो मानसिक स्तर का भी है, वो केवल आपके मैट से शुरू नहीं होता है, वो आपके माइंड से शुरू होता है। इसको आपको बनाए रखना है, निरंतर अभ्यास को करते रहना है। और जो अभी हम कह रहे थे कि एक और चीज आजकल समाज में फैल रही है कि योग बूढ़ों के करने के लिए है, अगर वो बूढ़ों के करने के लिए है तो आसन इतने कठिन नहीं होते, जिस उम्र के अंदर जो हड्डियां हैं, जो रेंज ऑफ मोशन है कम हो जाती है, अगर उनके लिए होता तो इतने जटिल आसन नहीं बनाए जाते हैं। योग हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक ग्रुप के लिए, वो एज ग्रुप हो या प्रोफेशन के अकॉर्डिंग उसका ग्रुप, सभी को योग अपनाना है, करना है। योग के अंदर जो सबसे अधिक और सबसे श्रेष्ठ है, जो प्राणायाम, जो ध्यान है, वो सभी के लिए, इसीलिए कि सभी को चेतन रहना है, ध्यान की अवस्था को बनाए रखना है। एक लाइन हर जगह लिखी रहती है, कही जाती है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वो सावधानी ही ध्यान है। जैसे ही आप अपने आप से, अपने मन से, शरीर से इस चेतना को हटाएंगे, तभी आपको समस्याओं को सामना करना पड़ेगा। उसे बनाए रखने के लिए प्राणायाम का निरंतर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: वेलकम बैक टू आकाशवाणी रेनबो, आप सुन रहे हैं यूथ स्पीक्स अल्फा जेन में। दोस्तों, कभी नोटिस किया है हम दिन भर सबसे ज्यादा बात किससे करते हैं? खुद से। और अगर वही बातें नेगेटिव हो तो मूड भी वैसा ही होने लगता है। इसलिए योग और मेडिटेशन में पॉजिटिव एफर्मेशंस को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए और दिल से ये तीन बातें दोहराइए। मैं कैपेबल हूँ, मैं हर चैलेंज से कुछ नया सीखता हूँ, आज का दिन मेरे लिए अच्छा था और आगे भी सब अच्छा होगा। बस 20 सेकंड्स, लेकिन अगर रोज की आदत बन जाए तो धीरे धीरे ये शब्दों का असर आपकी सोच में भी दिखने लगता है। अब खुद से इस कनेक्शन को एक मैनिफेस्टेशन का टच देते हैं और आगे जानते हैं योग की और टेक्निक्स।

वेलकम बैक। आप स्वागत है आपका आकाशवाणी रेनबो पर यूथ स्पीक्स कार्यक्रम में। अब हम जानेंगे योग की और टेक्निक्स। दोस्तों, योग सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि मन को भी संतुलित और शांत बनाना सिखाता है। जब हम योग के बाद बारे में दो पल रुककर सोचते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं तो वो हमें वो खुशी देता है जो धीरे धीरे हमारा ध्यान कमियों से हटकर उन खूबसूरत लम्हों पर जाने देता है जो जिंदगी को खास बनाती है। तो आज अपनी योग प्रैक्टिस के बाद बस एक मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और दिल से हर उस बात का शुक्रिया अदा कीजिए जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आती है। यकीन मानिए, जब शुरुआत ग्रैटिट्यूड से होती है तो पूरा दिन पॉजिटिविटी से भर जाता है और इसी सुकून और पॉजिटिविटी के साथ ग्रैटिट्यूड को एक प्रमोशन देते हैं।

0: तो दोस्तों, आकाशवाणी रेनबो पर आज के सफर में प्रोग्राम यूथ स्पीक्स में आपके साथ थी अनन्या दहिया। और अनन्या दहिया ने कई ऐसी टेक्निक्स बताई, कई ऐसी चीज़ों की बात की जिनसे कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफस्टाइल में योग को ऐड कर सकते हैं और साथ ही साथ हम ग्रैटिट्यूड को ला सकते हैं और पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर बना के रख सकते हैं। तो अनन्या, कैसा रहा आपका ये सफ़र और क्या कुछ आपने महसूस किया और जाते जाते आप क्या कहना चाहोगे?
1: तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था एंड मेरे को बहुत खुशी हुई कि मेरे अंदर जो चीज़ें हैं मैंने आपको बताया, अपने इस मीडियम्स के थ्रू डिसिमिनेट किया, एक्सप्रेस किया, मेरे को बहुत खुशी हुई। एंड मैं भी उम्मीद करती हूँ आज के इस सफ़र से आप लोगों को आपकी लाइफस्टाइल को थोड़ा और हेल्दी, हैप्पी और पॉजिटिव बनाने की इंस्पिरेशन मिली होगी।
0: बिल्कुल अनन्या, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो आपने पॉजिटिव एनर्जी की बात की, ग्रैटिट्यूड शो करने की बात की और जो पॉजिटिव एटीट्यूड हम अपने अंदर रखते हैं ना कि सब अच्छा था, अच्छा है और आगे भी सब अच्छा होगा, ये जो एटीट्यूड आता है उससे कहीं ना कहीं सब अच्छा ही होता है। क्यों अनन्या, आपने ऐसा महसूस किया है? क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लगता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और मेरा तो लाइफ से यही मैसेज है आपके लिए कि बड़े बदलाव हमेशा छोटी आदतों से शुरू होते हैं।
0: बिल्कुल सही बात कही अनन्या, और इसी नोट पर हम हमारे लिसनर्स को छोड़ के जाते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। और उसके बाद भी आपको कहीं नहीं जाना है, आपको जुड़े रहना है आकाशवाणी रेनबो के साथ, क्योंकि आगे आपके लिए आप प्रोग्राम आएगा सिटी लाइट्स।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेतसेग बटमुक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी, मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई है। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलेंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिस कर्मियों और एनवीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय ₹2,000 बढ़ाया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97,706 करोड़ से अधिक की अनुपूरक मांगे पेश की। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने नवनिर्वाचित सदस्यों सुनीत्रा पवार और अक्षय कर्डिले को पद की शपथ दिलाई। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राज्य के कई हिस्सों में जल संकट का मुद्दा उठाया। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। एआईए, डीएमके, पीएमके और सीपीएम सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा कि वह तमिलनाडु में जल अधिकारों के लिए की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में विख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्मभूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: लखनऊ के अलीगढ़

इस वर्ष जनवरी में आधार ऐप शुरू होने के बाद 3,10,00,000 से अधिक लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि इस ऐप के बढ़ते इस्तेमाल से पता चलता है कि सेवाओं का लाभ शीघ्र उठाने में इसके प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। ये मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले आज खेले गए एक रोमांचक मुकाबले में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो पर स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम सिटी लाइट्स में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त विनीता बेदी और आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स में दिल्ली की धड़कनों से सीधा संवाद विनीता बेदी के साथ।

दोस्तों सिटी लाइट्स में आप सुन रहे हैं दिल्ली की धड़कनें, मेरे यानी कि विनीता बेदी के साथ। दोस्तों दिल्ली आज फिर कई महत्वपूर्ण मुद्दों के बीच खड़ी है। कहीं है भीषण गर्मी से राहत की खबर, तो कहीं पानी और बिजली की चुनौतियां, शिक्षा, पर्यावरण और नागरिक सुविधाओं से जुड़ी कई ऐसी खबरें हैं जो सीधे सीधे आपके जीवन को प्रभावित करती हैं। उन पर बात करेंगे, कुछ राहत भरी बातें, कुछ प्रिकॉशंस भी। सिटी लाइट्स में जुड़े रहिए आकाशवाणी रेनबो पर।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
2: www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप

सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

दोस्तों, ये है आकाशवाणी रेनबो और आप हैं विनीता बेदी के साथ प्रोग्राम सिटी लाइट्स में। दोस्तों, सिटी यानी दिल्ली वासियों के लिए सप्ताह की सबसे बड़ी खबर जो है वो है मौसम में अचानक जबरदस्त गर्मी की क्रांति। एक्चुअली पिछले कई दिनों से हमारी दिल्ली जो है वो भीषण गर्मी का सामना कर रही है। तापमान 45 डिग्री के पास पहुंच गया, लेकिन हल्की हल्की आंधी और बारिश, इनकी मीठी मीठी मिली जुली हवाओं ने थोड़ी सी राहत तो हम लोगों को दी ही है। वैसे आपको मैं बताऊं, IMD ने दिल्ली NCR में कुछ हवाओं का, बिजलियों के चमकने का और गरज के साथ छींटे पड़ने का अलर्ट भी जारी किया है, माइंडेड। वैसे आपको पता है, पिछले कुछ एक दिनों में दिल्ली के कई नागरिकों के मोबाइल पर एक्सट्रीमली सीवियर अलर्ट भी प्राप्त हुआ, जिसने लोगों को मौसम की गंभीरता के प्रति सचेत भी किया और साथ ही इस बात के लिए भी सचेत किया कि गर्मी है तो गर्मी का थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। अपना ध्यान खुद रखो भाई, एक पानी की बोतल साथ में लेके चलो, कोई ज्यादा वजन नहीं बढ़ जाता है। लगातार थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ घूंट पानी पी लेने से बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होता। ये बात सभी को कही जाती है, आपको भी कितना काजर, इनफैक्ट आप सबको कितना कहते होंगे, लेकिन दोस्तों एक नन्नी सी बात मुझे बताइए, दूसरों को तो कहते हैं, अपने अपनों का बहुत ध्यान भी रखते हैं, अपना ध्यान भी रखते हैं क्या? खुद के भूल जाते हैं बीच बीच में पानी के घूंट पीना। आप भी तो उतने ही इम्पोर्टेंट है ना, सबके लिए, हमारे लिए।

दोस्तों आप हैं दिल्ली की गर्मी और अपनी दोस्त विनीता बेदी के साथ प्रोग्राम सिटी लाइट्स में। दोस्तों दिल्ली की गर्मी के साथ हर साल एक और समस्या सामने आती है, पानी की। इस वक्त यमुना नदी का जल स्तर सामान्य से थोड़ा सा नीचे चल रहा है। वजीराबाद जलाशय का स्तर भी निर्धारित मानक से कम दर्ज किया गया है, जिसकी वजह से दिल्ली के कई हिस्सों में जल आपूर्ति भी थोड़ी बहुत प्रभावित हुई है। आप लोग भी थोड़ा सा तो पानी स्टोर करके रखते ही होंगे। और वैसे मजे की बात पता क्या है, आजकल ऐसा करिश्मा हो रहा है कि देखिए ना, मैजिक, आप अपना नल चलाते हैं दिन में और आपको उबलता हुआ गर्म पानी बिना हीटर के, बिना गीजर के मिल जाता है। कमाल है ना। पर खैर ये तो मौसम का प्रभाव है, और छत पर जो टंकियां लगी होती हैं वो गर्मी में बिचारी तप तप कर इतना गर्म पानी दे ही देती हैं। लेकिन फिर भी हमारी समस्या सिर्फ गर्म पानी आजकल के मौसम में नहीं है, समस्या कुछ और है। ये तो चलो आनी जानी चीज है, समस्या जो है ना वो ये है कि जल आपूर्ति की कई जगहों पे कमी है, और इस वजह से अतिरिक्त जल छोड़ने का अनुरोध भी लगातार किया जा रहा है। और सोचने वाली बात हमारे लिए क्या है, क्यों ये सारी बातें मैं आपसे कह रही हूं और क्यों आप सुन रहे हैं। रीजन ये है कि हम सब जल संकट की बात तो करते हैं, नल में पानी नहीं आया, जल बोर्ड ने पानी निर्धारित समय पर ही दिया, हम सब परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या हम लोग पानी बचाने के लिए पर्याप्त प्रयास भी करते हैं? छोटी छोटी कई बातें हैं जिनका हम थोड़ी बहुत ध्यान रखें ना तो समस्या हल हो सकती है, मतलब सॉल्यूशन भी हमारे अपने हाथ में ही है। जैसे लीकेज रोकना, या जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना, घरेलू जल संरक्षण करना, ये होगा हमारा कंट्रीब्यूशन अगर हम ऐसा कुछ करते हैं जल संरक्षण के लिए। दोस्तों क्योंकि देखा जाए ना तो ये सिर्फ सरकार की ही नहीं बल्कि हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। अब देखिए कुछ समय के बाद बारिश आने वाली है, और वर्षा ऋतु जो है ना दोस्तों वो अपने साथ ढेर सारा पानी बादलों की बारिश के जरिए लेकर आती है। हम उस पानी

को कंजर्व करने के लिए क्या करते हैं सभी लोग, अपनी अपनी छत पे अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगा कर रखे ना, तो ये पानी जो है वो नालियों में बह जाने की जगह पता नहीं कितने लीटर पानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जमीन के अंदर जाएगा और हमारी दिल्ली जो है ना वो पानी से कभी महरूम नहीं रहेगी। सोचिए इस बारे में और सोचिए हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, क्योंकि दिल्ली हम सबकी है और जिम्मेदारी भी हमारी सांझी है, ठीक है ना। आप हैं विनीता बेदी के साथ, हम हैं प्रोग्राम सिटी लाइट्स में, और अगर दिल्ली हमारी है तो दिल्ली के सारी प्रॉब्लम्स भी हमारी है, और प्रॉब्लम हमारी है तो सोल्यूशन भी तो किसी और के थोड़ी होंगे। अरे यार किन भुलावों में पड़े हुए हो, मुस्कुराओ, क्योंकि हम सब हर समस्या का हल मुस्कुराहट के साथ ही करते हैं, है ना। चलिए प्यारा सा गाना आप सभी के लिए, क्योंकि आप हैं बहुत ही प्यारे हैं।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स, मेरे यानी कि विनीता बेदी के साथ। और बने रहिए हमारे साथ, रीजन बिंग बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें आप सभी के लिए।

दोस्तों, दिल्ली वासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और भविष्य बदलने वाली खबर है। दिल्ली सरकार ने मेट्रो फेज 5 के तहत राजधानी में 97 किलोमीटर लंबे नए मेट्रो नेटवर्क और 65 नए स्टेशन की योजना की घोषणा की है। इसके अंतर्गत 7 नए कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिनका उद्देश्य बाहरी और तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी देना है। इतना ही नहीं दोस्तों, दक्षिण दिल्ली के संगम विहार, खानपुर, साकेत और बदरपुर जैसे बहुत ज्यादा भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में एलिवेटेड कॉरिडोर और अंडरपास निर्माण की योजना पर भी काम शुरू हो चुका है। सो अब तो हम खुल के कह ही सकते हैं ना कि दिल्ली बहुत बहुत बहुत बेहतर बनने जा रही है ना। हमारी दिल्ली है बेहतर रही। एक्चुअली सबसे ज्यादा दिल्ली खूबसूरत पता क्यों है? क्योंकि आप और हम रहते हैं यहाँ पे। हमसे ज्यादा खूबसूरत और कौन हो सकता है और कौन बना सकता है दिल्ली को, राइट? आप हैं इन्हीं पॉजिटिव विचारों और अपनी खूबसूरती पे इतराने वाले दिल्ली वासियों के साथ प्रोग्राम सिटी लाइट्स में। मैं हूं विनीता बेदी, देख रही हूं आपको।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

हूँ, ये है आकाशवाणी रेनबो और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सिटी लाइट्स अपनी दोस्त विनीता बेदी के साथ। झिलमिलाती रोशनी और मुस्कुराते चेहरों वाले शहर का नाम ही है दिल्ली और दिल्ली का पसंदीदा प्रोग्राम सिटी लाइट्स विनीता बेदी के साथ।

क्या कहने हैं, लेकिन आप एक बात बताइए, गाड़ी चला रहे हैं ना, घर वापस जाने का वक्त तो हो गया है, लेकिन क्या वाकई आप इस बात से बिल्कुल बाखबर हैं कि हमारी गाड़ियों में से जो धुआं निकलता है ना, वो पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रहा होता है? तो आपने एक छोटा सा काम करना है, पीयूसी करवाना है, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी का पोल्यूशन अंडर कंट्रोल रहेगा ना, तो फिर दूसरों को ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी और हमारा पर्यावरण तो ठीक रहेगा ही रहेगा। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आज सुबह जब मैं गाड़ी चला रही थी ना, मेरी गाड़ी के साथ से करके एक मोटरसाइकिल निकली, आवाज उसकी थोड़ी सी डिफरेंट थी, मुझे इतनी सुंदर आवाज निकालनी आती नहीं है, लेकिन उसमें से जो पट पट पट पट पट पट पट पट करके धुएं के बादल निकल रहे थे ना, वो किसी के हाथ आने वाला तो 100% नहीं था, जो उसकी स्पीड थी, क्योंकि चुटियों में ये जा और वो जा, लेकिन वो जो धुएं के बादल वो छोड़ के गया, बस उन बादलों को हटाते हुए हम यही सोचते रहे कि यार थोड़ा सा पीयूसी करवा लो, थोड़ा सा पोल्यूशन अंडर कंट्रोल हो, तो इतने धुएं के बादल पीछे नहीं रह जाएंगे। धुएं के बादल सिर्फ बर्फीली जगहों पे अच्छे लगते हैं, आम जगहों पे नहीं। और आपसे भी ये रिक्वेस्ट है, ऐसा ना हो कि आप गाड़ी भगा कर ले जाएं और लोग आपके जाने के बाद भी ये कहें कि थोड़ा सा, इतनी बड़ी गाड़ी चला रहा है बंदा, थोड़ा सा पोल्यूशन भी अंडर कंट्रोल करवा लेता। आप तो ऐसा नहीं करते ना, बिल्कुल नहीं ना, वंडरफुल। आप ही जैसे लोगों के आसपास गाड़ी चलाना मुझे अच्छा भी लगता है और दिल भी करता है। थोड़ा सा पीयूसी का ध्यान रखिएगा, राइट।

और दोस्तों इसके साथ ही अब आज का सिटी लाइट समाप्त करने की विनीता बेदी को दीजिए इजाजत, क्योंकि आज जाएंगे फिर ही तो दोबारा मिल पाएंगे। तो फिर आज की मुलाकात इतनी ही, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ये याद रखिए कि दिल्ली हमारी अपनी, तो इसकी जिम्मेदारी भी हमारी अपनी। स्माइल, बिल्कुल ऐसे ही। बाय बाय, टेक केयर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण अग्निकांड में 14 छात्रों की मौत हो गई। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिससे छात्रों में दहशत फैल गई। कुछ लोग घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि इमारत में स्थित एनिमेशन सेंटर में मौजूद 16 से 18 वर्ष की आयु के 14 छात्रों की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि दमकल कर्मी इमारत के कोनों, शौचालयों और अन्य क्षेत्रों में छात्रों की तलाश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई भीषण अग्निकांड पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव अभियान जारी है और अधिकारी हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सतेग पटनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी, मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई है। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच

0: की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकतानुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97,706 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक मांगे पेश की। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने नवनिर्वाचित सदस्यों सुनीत्रा पवार और अक्षय करडिले को पद की शपथ दिलाई। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राज्य के कई हिस्सों में जल संकट का मुद्दा उठाया। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। एआईएडीएमके, पीएमके और सीपीएम सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि वह तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में विख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्मभूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत में कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक से इतर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गदीर निजामी पुर से मुलाकात की।

ऑल राइट द लिसनर्स, आपकी वाणी आकाशवाणी है और जी हाँ बिल्कुल यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ, आपकी वही आरजे भारती जो कभी नहीं हारती और चाहती है कि आप भी जिंदगी से कभी ना हारें। ये सब कॉल्स पे इस लाइफ विद फुल पावर, और वो तो हमेशा ही आपको जीवन में करना है, आपका मेरा वादा है। और इसी वादे के साथ बस यही इरादा है कि जितना हो सके आपको एंटरटेन कर सके और जितना हो सके आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आ सकें। और इसी की नोट के साथ बिल्कुल हमारी आज की मैसेज मसाला मिक्स की सीरीज को हम यहाँ शुरू करते हैं। लेकिन आज हम क्या टॉपिक लेने वाले हैं, कल था 21 जून, हम सब ने बड़े उत्साह के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, लेकिन लेकिन लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी दिन पूरी दुनिया विश्व संगीत दिवस भी मनाती है। जी हाँ, आई एम श्योर आप में से बहुत लोग जानते होंगे वर्ल्ड म्यूजिक डे के बारे में, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के चलते वर्ल्ड म्यूजिक डे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद कुछ लोगों को पता हो ना पता हो, तो कोई बात नहीं, आज हम मनाते हैं ना वर्ल्ड म्यूजिक डे, क्योंकि एक ही दिन तो बीता है। संगीत की जब हम बात करते हैं, म्यूजिक की जब हम बात करते हैं, तो डेफिनेटली हमारे रेडियो का नाम तो आता ही है, क्योंकि हम तो हैं एंटरटेनमेंट का खजाना, ज्यादा से ज्यादा म्यूजिक आपको सुनवाते हैं, ज्यादा से ज्यादा गीत संगीत आपके लिए लेकर आते हैं। संगीत की जब हम बात करते हैं, शब्दों से परे जाकर दिलों से बात करता है, ये आप सब जानते हैं। और जब हम सॉन्ग्स की बात करते हैं ना, तो हमारे कहते हैं कि इवन हमारे फोक ट्रेडिशन में भी जन्म से लेकर जीवन तक हर पड़ाव में, खुशी हो, गम हो, प्रेम हो, विरह हो, उत्सव हो, एकांत हो, हर भावना का एक गीत, एक धुन तो बनी होती है, और कहीं ना कहीं हम उस इमोशन के साथ ना टाइप कर जाते हैं। तो विश्व संगीत दिवस जो कल था उसके अवसर पर हम बात करेंगे, और संगीत को मुझे लगता है हम एक दिन में वैसे भी फिक्स नहीं कर सकते हैं, संगीत तो हर दिन की बात है, हर दिल की बात है, हर धड़कन की बात है, हर समय की बात है। तो इस जादुई शक्ति को आज हम चलिए एक अदृश्य धागे में बांधते हैं, और वो धागा है हमारा जी व्हाट्सएप नंबर 9868107070986807070। मैसेज कर दीजिए मुझे जल्दी से, और आज आपको ये बताना है कि अगर आपके जीवन को एक गीत में समेटना हो तो वो कौन सा गीत होगा और क्यों होगा। क्यों नहीं भी बताएंगे तो चलेगा, क्योंकि मैसेज आपका बहुत शॉर्ट होना चाहिए। कोई एक गाना जो आपको लगता है अरे ये तो मेरे ही जीवन की कहानी है, तो बिल्कुल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं आप 9868107070 पर। एंड आपको ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं बताना है। और एक चीज़ और है, अगर आप गाने का नाम लिख रहे हैं तो वो गाना कोई फरमाइश के लिए नहीं होगा, मैं उस गाने को प्ले नहीं करने वाली हूँ, लेकिन आपका जीवन क्या लगता है, आपको किस गाने के साथ रिलेट कर जाता है, वो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल लिसनर्स टेक इट अवे एंड यस ऑफ कोर्स कीप सेंडिंग योर मैसेजेस, कीप लिसनिंग एंड स्टे ट्यून्ड।

ऑलराइट लिसनर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जी हाँ, मिसेज मसाला मिक्स की हमारी आज की मंडे सीरीज में बिल्कुल से हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड म्यूजिक डे की, जो आज नहीं था, कल उसे पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। लेकिन लेकिन लेकिन म्यूजिक की बात है तो म्यूजिक तो मुझे लगता है हर दिल से मनाया जाता है, दिल को दिल तक पहुंचाता है, दिल से दिल की राह बनाता है। और म्यूजिक जो है वो हर दिन के लिए है, हर क्षण के लिए है, जीवन के पहले पड़ाव से लेकर, पहली सांस से लेकर जीवन के आखिरी पड़ाव तक है। सो आज मैंने आपसे इसी विषय पे पूछा था कि आपकी जिंदगी को अगर आपको समअप करना हो ना, कि मेरी जिंदगी ना इस गाने की तरह है, तो आप कैसे समअप करेंगे। तो उसी से रिलेट करते हुए मैसेजेस मेरे पास, जी हाँ ऐसा हो सकता है ना, आए बिल्कुल से आ चुके हैं। तो बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की तरफ। और कस्बा बिलराम, इरशाद अहमद शाह और शाहजहां बेगम का मैसेज है, लिखा है

ये तुझ संग प्रीत लगाई सजना, ये मेरी जिंदगी का बहुत ही सुंदर गीत है। और ये मैसेज जो आपका आया है, ये मेरे को इस शो का पहला मैसेज आया है, सो थैंक यू सो मच। अगला जो मैसेज है वो मेरे पास है रितेश का, रोहिणी सेक्टर 3 से। और ये कुछ नाम ऐसे हैं जो मैं पहली बार पढ़ रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हमारे इतने सारे लिसनर्स, अलग अलग लिसनर्स आकर हमारे साथ जुड़ते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड आई जस्ट होप आप हमें इसी तरह से ज्वाइन करते रहेंगे। रितेश लिखा है कि हेलो मैम, सॉन्ग है हम ना समझे थे बात इतनी सी, क्या बात है, ख्वाब शीशे की दुनिया पत्थर की। अच्छा, इतना सारा दुख है आपको, आई जस्ट होप नहीं होगा, एंड आई जस्ट विश कि कभी होना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये गाना सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सो थैंक यू सो मच आपके दिल की बात हमारे साथ शेयर करने के लिए। अगला मैसेज पंकज का है, अमरावती महाराष्ट्र से हमारे रेगुलर लिसनर है। लिखा है कि मेरे जीवन का कोई गीत हो तो वो ये होगा कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, क्या बात है। साथ में लिखा है आपने, मुझे पता था कोई ना कोई तो लिख देगा कि क्या इस गीत को हम शामिल कर सकते हैं, एक्चुअली नहीं कर सकते हैं। और जब भी मेरे जीवन में मुश्किलें और कठिन प्रसंग आते हैं तो ये गीत मुझे बहुत धैर्य देता है और बहुत साहस बढ़ाता है। डेफिनेटली म्यूजिक के अंदर, गानों के अंदर, गीत के अंदर, संगीत के अंदर, लिरिक्स के अंदर इतनी ज्यादा ताकत होती है, शब्दों की जो ताकत है ना वो इतनी है कि शब्दों से ना आप किसी को घायल भी कर सकते हैं, शब्दों से आप किसी को मोटिवेट भी कर सकते हैं, और शब्दों से ना आप किसी को बहुत सारा प्यार भी दे सकते हैं और बहुत सारी हिकायत भी दे सकते हैं। सो सच वैल्यूएबल द म्यूजिक इज, सच वैल्यूएबल द थॉट्स आर, एंड डेफिनेटली इस तरीके के गाने जो हैं जो हमें लाइफ भर मोटिवेट करते हैं, तो किसी भी मुश्किल में हमारा काम जो है वो आसान कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। एंड अगला मैसेज जो है हमारे रेगुलर लिसनर हैं फारूक अली खान साहब, फैजी फराज, फरीन, फरान, फारिया, ताहिरा, ये टंग ट्विस्टर कब बंद होगा। इन्होंने लिखा है कि संगीत तो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी है, और ख़ुशी में भी संगीत हमारे साथ होता है। ये तो सब मैंने बोल दिया था ना, आपको ये बताना था कि आपकी लाइफ किस गाने से रिलेट करती है। गलत बात है, बहुत गलत बात है, फिर आप कहते हैं कि मैसेज नहीं पढ़ते हो, ऐसे मत कीजिए आप। सो अगला मैसेज जो है, नमस्ते मैम, हैप्पी वर्ल्ड म्यूज़िक डे, यस यस, थैंक यू। एंड इन्होंने भी कुछ नहीं लिखा है, बस जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल से बहुत प्यारा सा मैसेज है, कविता लामा का, बनहारहाट डिस्ट्रिक्ट से। सो कविता, वुड यू लाइक टू टेल मी, आई मीन आपका जो पूरा लाइफ है उसको अगर आप समअप करें तो किस गाने पर समअप करेंगे। अगला मैसेज अनिल शर्मा जी का है, सरिता जी और अनिल शर्मा का है। मेरा एक मेरा गीत है मेरा नाम जोकर से, जिसमें कपूर रह कपूर क्यों लिखा है आपने, मुझे भी कंफ्यूज कर दिया है। तो उन्होंने एक्टिंग की थी और लिखा है कि गीत के बोलते कहता है जोकर सारा ज़माना, जी हाँ ये भी बहुत अच्छा गाना है, कहता है जोकर सारा ज़माना, आधी हकीकत आधा फसाना, जाने कहाँ गए वो दिन। जस्ट सच सच सच सच ब्यूटिफुल सॉन्ग दिस इज़, एंड सच में क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो गाना है ये आपके जीवन को समअप करता है? क्योंकि हमें हमारे फेवरेट ट्रैक्स नहीं बताने हैं, हमें ये बताने हैं कि हमारा जो जीवन है वो अगर कोई हमसे पूछे तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा जीवन है, दिस इज आवर लाइफ इज, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। इसके लिए भी एक और मैसेज मेरे पास आया है मोहम्मद सरफराज आलम का, ये भी हमारे रेगुलर लिस्नर है अररिया बिहार से। और लिखा है, एक शिक्षक, साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जीवन में कई उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन ये मेरी जिंदगी से बहुत मेल खाता है। वेल थैंक यू सो मच लिस्नर, सो अब आप समझ ही गए होंगे, जो भी हमें सुन रहे हैं नए लिस्नर्स हमारे साथ आकर जुड़े हैं, आपका जीवन आप किस एक गाने के साथ रिलेट करते हैं हमें जरूर बताइए 9868107070 पर। फिलहाल एक ट्रैक आप सबके लिए।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
4: ऑल राइट लिसनर्स, सीधा बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की तरफ, आपके संदेशों की तरफ जो बहुत ही स्पीड से आते जा रहे हैं। सो ये मैसेज मेरे पास आया है, नमस्कार भारती जी, मैंने जो कुछ भी चाहा वो मुझे मिला, क्या बात है, टच वुड। और ये गाना मेरे जीवन से जुड़ा है, मेरे पास सब कुछ है, सफलता है, बच्चे हैं, गाड़ी है, घर है, एवरीथिंग इज देयर। और संगीत भी एक थेरेपी है, मनपसंद गाने सुनने से तनाव और क्रोध शांत होता है। वो तो सब ठीक है आलोक पवार जी, बट गाना कहाँ है? गाना तो आपने मुझे भेजा ही नहीं, आप भूल गए गाना भेजना, प्लीज आप मुझे गाना भेजिए, ये गलत बात है। वेल लिसनर्स, तो हम जब तक वेट करते हैं कि आलोक पवार जी जो देहरादून से हैं, हमें एक्चुअली जो गाना वो लिखना भूल गए, हमें भेजते हैं अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, इस गीत ने मुझे हमेशा प्रेरणा दी है। ये हीरामणि वर्मा जी का मैसेज है, भाटापारा छत्तीसगढ़ से, क्या बात है। और ये गाना सच में बहुत प्रेरणा देता है, आपको नहीं, मुझे नहीं, बहुत लोगों को। गुड इवनिंग मैम, आई एम रामलाल फ्रॉम झारखंड, और अकेले हैं तो क्या गम है, क्या बात है, अकेले हैं तो क्या गम है। ये गाना जिंदगी में मेरे बहुत मायने रखता है, चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी भी मुद्दा यही है कि आपकी जिंदगी, अगर आप आपकी जिंदगी का फ्रेम देखते हैं तो किस गाने के फ्रेम से मैच करता है, ये प्लीज मुझे बताने की कोशिश कीजिए। जीवन का मोटिवेशनल सॉन्ग मैंने आपसे नहीं पूछा है, मैंने आपसे ये पूछा है कि आपकी जिंदगी का फ्रेम जो है किस गाने के फ्रेम से मैच करता है, आई मीन व्हाट यू थिंक यू आर इन द फॉर्म ऑफ अ सॉन्ग, प्लीज वो मुझे बताइए। जिंदगी का सफर है ये, कैसा सफर, मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और ये मैसेज है हमारे मुखी परिवार का, शांति नगर सोनीपत से, क्या बात है। अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। हेलो मैम, शुभ संध्या, नमस्ते, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ।

लिखा है कि ये गाना मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, कि तूने जिंदगी में आकर जिंदगी बदल दी। क्या बात है, मोनिका का मैसेज है, नन एन अदर देन सच अ वंडरफुल प्लेस पौड़ी गढ़वाल से। क्या बात है मोनिका, एक तो इतनी सुंदर जगह पर आप रहती हैं, डेफिनेटली आप भी बहुत स्वीट होंगी, और ये गाना जो है बहुत खूबसूरत है। एंड आई एम जस्ट फीलिंग कि सच में कोई है आपकी ज़िंदगी में जिसने आपकी ज़िंदगी को आकर बदल दिया, एंड आई जस्ट होप अच्छे तरीके से बदला होगा, अच्छे वे से बदला होगा। सो कविता का मैसेज आया है और बहुत ही ऑनेस्ट आंसर दिया है, भाई मुझे तो अभी कोई गाना याद नहीं आ रहा है, आई एम रियली सॉरी। चलिए कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप हमारे साथ बनी हुई हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्बासी, MS अब्बासी और पूरा अब्बासी परिवार की तरफ से बस यही मैसेज आया कि गीत पसंद आ रहे हैं, और आगे वो कुछ लिख रहे हैं। जब तक वो कुछ लिखते हैं मैं आगे की तरफ बढ़ रही हूँ। ये मैसेज है, मैम गुड इवनिंग, हाजिर अली कौशलपुर कटिहार बिहार से है। मुझे वर्ल्ड म्यूजिक डे पर अपना एक ही सॉन्ग है जो अच्छा लगता है, वो PK मूवी का गाना है, एंड आई थिंक दैट सॉन्ग इज़ भगवान है कहाँ तू, और साथ में उन्होंने जय हिंद लिखा है। चलिए अच्छी बात है, बट लिसनर्स अगेन आई एम टेलिंग यू, मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी के फ्रेम में कौन सा गाना फिट होता है, प्लीज़ मुझे वो लिख कर भेजिए, वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी पसंद का कौन सा गाना है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारी पसंद भी बदलती रहती है और हमें बहुत सारे गाने पसंद होते हैं। वेल लिसनर्स, बातों का सिलसिला और आपके मैसेजेस का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक ट्रैक यहाँ पर ज़रूर हम सुनेंगे, बिकॉज म्यूज़िक की बात कर रहे हैं और म्यूज़िक ना हो ये तो बहुत गलत बात है, और मेरी आवाज़ इतनी भी म्यूज़िकल नहीं है, तो सीधा गाने तरफ बढ़ते हैं, और ये ट्रैक बहुत खूबसूरत है। टेक इट अवे।

0: तुम्हें पता है पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। स्वदेशी उत्पादन और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देकर भारत आत्मविश्वास के साथ रक्षा क्षेत्र के भविष्य का निर्माण कर रहा है।
1: बिल्कुल, रक्षा क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय भारतीय कंपनीज को भारत में ही विश्व स्तर की तकनीकों के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
0: हाँ, सही है। इस बदलाव में HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड अग्रणी भूमिका निभा रहा है। स्वदेशी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों से लेकर प्रशिक्षक परिवहन विमान और उन्नत एरोस्पेस प्रणालियों के माध्यम से ये भारत के रक्षा भविष्य को मजबूत बना रहा है।
1: और सबसे खास बात, HAL ने प्राइवेट इंडस्ट्री और हजारों MSMEs को जोड़कर देश में एक मजबूत एरोस्पेस इकोसिस्टम भी तैयार किया है।
0: इस तरह भारतीय प्रतिभा, तकनीक और संकल्प के बल पर हर नवाचार भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ा रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
4: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

ऑल राइट लिसनर्स, और यहाँ पे सीधा सीधा सीधा डायरेक्ट बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की तरफ. लेकिन उससे पहले जो भी लिसनर्स हमारे साथ आकर इस समय जुड़े हैं उनको बिल्कुल से हम बता देते हैं कि ये है मैसेज मसाला मिक्स, हमारी आज की मंडे सीरीज. और 9868107070 है हमारा वो नंबर जिसपे आप कर सकते हैं हमारे साथ अपने दिल की बात. और दिल की बात ऐसे ही नहीं करनी होती, हम टॉपिक देते हैं आपको. और आज का टॉपिक वर्ल्ड म्यूजिक डे जो कल था उस पर बेस्ड है कि आपकी जिंदगी जो है अगर आप उसको देखते हैं तो कौन सा एक ऐसा गाना है, इट्स नॉट कि वो आपका फेवरेट गाना है, वो कौन सा एक गाना है जिसपे आपको लगता है कि ये गाना जो है ना मेरी ज़िंदगी के ही ऊपर लिखा गया है, इसके जो बोल है ना वो एक्चुअली मेरी ज़िंदगी के ही बोल हैं. सो ऐसा कुछ मैसेज मैं ढूंढ रही हूँ. कुछ मैसेजेस मेरे पास आ चुके हैं लेकिन कुछ मैसेजेस फेवरेट गानों पर ही बेस्ड है. पर चलिए कोई बात नहीं, सीधा मैसेजेस की तरफ बढ़ते हैं. ये मैसेज मेरे पास राकेश बुरा का है, बुरारी से. इनका भी हमारे पास बहुत मैसेजेस आते हैं, हमारे रेगुलर लिसनर्स में से हैं. लिखा है कि मेरा चांद मुझे आया है नजर, ये सॉन्ग मैं जब भी अपनी वाइफ से मिलता हूँ, उनको देखता हूँ, तो उनके लिए उन्हें गाकर सुनाता हूँ. करना पड़ता है, ऐसा होता है, ऐसा बहुत जरूरी हो जाता है. और चलिए जोक्स अपार्ट, थैंक यू सो मच. और वाइफ को सुनाते हैं, वाइफ के लिए गाते हैं, वाइफ ही आपकी ज़िंदगी है, ये बहुत अच्छी बात है. अगला जो मैसेज है, गीत और संगीत की बात की जाए तो एक बहुत अच्छा गीत मुझे याद आ रहा है. नहीं, गीत याद आने की बात नहीं है भेरूलाल जी, आपका जो आपकी जो ज़िंदगी है ना वो कौन से गाने में ढलती है. फिलहाल इन्होंने लिखा है तुझे गीतों में ढालूंगा, सावन को आने दो. मुझे भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार है इस समय बारिश का कि बारिश को आने दो फिर मैं बताती हूँ. सो यहाँ पर ये मैसेज जो है भेरूलाल जी का है, भेरूलाल धाकड़ जी का, वक्तरिया धाकड़ और उनील जिना उज्जैन मध्य प्रदेश से मैसेज है. अगला एक मैसेज जो है वो डिलीट हो चुका है. चलिए कोई बात नहीं, शायद वो मुझसे पूछ रही थी कि टॉपिक क्या, और अब उन्हें पता चल चुका है टॉपिक क्या, तो ढूंढ रही होंगी कि क्या मैसेज करना है. मैडम जी नमस्कार, मैं मेरठ से संजय बोल रहा हूँ, कृपया करके मेरा मैसेज शामिल कर लीजिए. मेरी जिंदगी का गाना है कि जिंदगी कैसी है पहेली हाय. सो दिस इज़ आई कॉल्ड कि चलिए किसी ने मेरी बात को समझा है. तो संजय जो है वो अपनी ज़िंदगी को देखते हैं तो उनको लगता है कि ज़िंदगी कैसी पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए. बहुत बढ़िया मैसेज, थैंक यू सो मच संजय जी. फाइनली एक मैसेज मेरे पास आया जो मेरी बात को समझ पाया. अगला जो मैसेज है वो है मैंने जो कुछ भी चाहा. अच्छा, ये मैसेज मेरे पास दोबारा से आया है. मैंने जो कुछ भी चाहा मिल गया, ये गाना है. ओके, जीवन और जीवन भी यही है. चलिए, गाने का नाम है जो उन्होंने मुझे फाइनली बताया, जिन्होंने बोला था कि मेरे पास लाइफ में सब कुछ है. अगला जो मैसेज है वो मेरे पास आया है मोहम्मद मिमसाद का बिहार से, और लिखा है कि अभी मुझ में कहीं, मुझे वो गाना बहुत पसंद है और मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है. अभी मुझ में कहीं बाकी है थोड़ी सी ज़िंदगी. क्या बात है, ये गाना बहुत बहुत बहुत ब्यूटीफुल है एक्चुअली. सो जोया का मैसेज है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से, लिखा है कि माय लाइफ गेट्स अलाइन विद द सॉन्ग, जो भी चाहो वो मैं पाऊँ, सारी दुनिया में सारी दुनिया पर मैं चाहूँ. ओके, जो मैं चाहूँ. ओके, वो वाला गाना, वो मैं पाऊँ, सारी दुनिया पर मैं चाहूँ, बस इतना सा ख्वाब है. क्या बात है, बिकॉज आई ऑफर नमाज, रीड कुरान एंड प्रे टू अल्लाह दैट ही लिसन्स टू माई प्रेयर एंड गिव्स मी व्हाट आई वॉन्ट. क्या बात है जोया, इतनी ब्यूटीफुल बात और इतनी ब्यूटीफुल थाट्स आपके हैं. खुश रहिए, आबाद रहिए, और यहाँ पर भी ज़रूर आते रहिएगा. वेल, अगला मैसेज जो है, भारती जी आदाब, माँ तुझे सलाम, ये गाना सब माओं के लिए है. सी, इस तरीके से कम ये याद कर पा रहे हैं कि कितना विशाल है हमारा जो स्कोर है ना म्यूजिक को लेकर, कितने सारे ऐसे गाने हैं जो हर पल के लिए हमारे पास हैं. हम कभी भी हम हंसना चाहें तो म्यूजिक अलग से सुन सकते हैं, हम थोड़े उदास हैं तो अलग तरीके के म्यूजिक हम सुन लेते हैं. तो उन सभी को सलाम है जो म्यूजिक की जिंदगी से जुड़े हैं, जो म्यूजिक को इतना पसंद करते हैं, म्यूजिक को इतना प्यार करते हैं. और भी बहुत सारे मैसेजेस जो है वो मेरे पास बैक टू बैक आते जा रहे हैं, लेकिन एक गाना यहाँ पर आप सबके लिए, क्योंकि जिक्र हो रहा है म्यूजिक का, तो म्यूजिक ना हो, गाने ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है. टेक इट अवे.

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: आए हाय,
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

ऑल राइट लिसनर्स, यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं म्यूजिक के बारे में, क्योंकि कल था विश्व म्यूजिक दिवस, विश्व संगीत दिवस, वर्ल्ड म्यूजिक डे. और उसी को ध्यान में रखते हुए आज एक छोटी सी बात मैंने आपसे पूछी है हमारे मैसेज मसाला मिक्स की आज की सीरीज के माध्यम से, इसके थ्रू, कि आपकी जिंदगी को प्रेम करेंगे तो कौन सा गाना उसमें फिट होता है, नॉट जस्ट आपको कौन सा गाना पसंद है. सो मैसेजेस मेरे पास बैक टू बैक आ रहे हैं. थैंक यू सो मच सबसे पहले तो हमें ज्वाइन करने के लिए, और बाकी लिसनर्स भी, थोड़ा समय है हमारे पास, अगर हमारे साथ अभी आकर जुड़े हैं 9868107070 पर आप मुझे कह सकते हैं, मैसेज बन सकते हैं हमारी आज की ब्यूटीफुल सीरीज का हिस्सा. और एक मैसेज मैं जरूर आपके लिए पढ़ देती हूँ सबसे पहले, मतलब इस सेगमेंट में. और ये मैसेज मेरे पास आया है नाम सौरभ गुप्ता. सौरभ गुप्ता का मैसेज है, लिखा है कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मेरी लाइफ में ये गाना परफेक्टली फिट होता है.

क्या बात है। और लिखा है कि 3 साल से मैं फरीदाबाद से हूँ और 3 साल से मेरा जो प्रमोशन है ना वो नहीं हुआ है, फिर भी मैं हर साल पार्टी करता हूँ, अप्रेजल पर पार्टी करता हूँ। और साथ में लिखा है बर्बादियों का शौक मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। क्या बात है सौरभ गुप्ता। आई मीन समहाउ कभी कभी ना मैसेजेस जो है ना वो भी इमोशंस को थ्रो करते हैं, तब मैसेजेस में पता नहीं क्यों ऐसी बात होती है, आप उनके इमोशंस को कैच कर सकते हैं। तो मैं आपके इमोशन को यहाँ पर बहुत अच्छे से कैच कर पा रही हूँ, लेकिन अगर सच में आपके साथ ऐसा हो रहा है उसके बावजूद आप जश्न मना रहे हैं, आप खुशी मना रहे हैं, आप अमेजिंग फील कर रहे हैं, और सिर्फ दिखाने के लिए नहीं इंटरनली भी फील कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ को सबसे बेस्ट वे में जी रहे हैं। और आज नहीं तो कल आपको अपने जीवन में वो सब मिलने वाला है जिसकी आप चाहत रखते हैं और नहीं भी रखते हैं, जिसको आप डिजर्व करते हैं। सो सौरभ कुडोस टू यू, 100% मार्क्स फॉर यू एंड फॉर योर मैसेज। अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। रंजीत कुमार रमंडल का मैसेज है सिकटी अररिया बिहार से, लिखा है कि मेरे जीवन से मैच करता हुआ गाना है, जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना। मैं इसको कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, बट लाइन बहुत अच्छी है कि जीना है तो हंस के जियो, एक पल भी जीवन में रोना ही क्यों है। सो रंजीत जी अगर आप ऐसा करते हैं तो सच में बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी रोना आ जाता है एंड आई कांट हेल्प इट। अगला जो मैसेज है मेरे पास, ये मैसेज हमारे पास आया है भुवनेश का। भुवनेश भी हमारे रेगुलर लिसनर हैं, मेरे शो में हमेशा का मैसेज आता है। लिखा है कि आई वुड लाइक टू से मेरी जिंदगी का जो सॉन्ग है वो अच्छा। भुवनेश यहाँ पे अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो एक बात मुझे ज़रूर कहनी है कि आप अपने जो मैसेज है आगे से हिंदी में लिख सकते हैं, मेरे लिए बहुत ईजी रहेगा क्योंकि मुझे आपकी पूरी इंग्लिश को ना कन्वर्ट करना पड़ता है हिंदी में, एंड वैसे मैं काम ठीक ठाक कर लेती हूँ बट फिर भी। तो लिखा है कि मेरी जिंदगी का जो गाना है वो है कोई कहे कहता रहे हमको दीवाना, हम लोगों की ठोकर में है ये जमाना। दिल चाहता है कि बहुत ही फेमस और बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक है, और लिखा कि ये जो गाना है मुझे बहुत एनर्जी देता है। हालांकि एक पार्टी सॉन्ग है लेकिन मेरी भी जिंदगी का ये पार्टी सॉन्ग है मेरी जिंदगी का, और मैं ट्राई करता हूँ कि जिंदगी के हर पार्ट को एंजॉय करूँ। सो भुवनेश थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस मैसेज। और अगला मैसेज आया है जहांगीरपुरी दिल्ली से रेहान का, लिखा है कि अपना टाइम आएगा। इसको मैं बहुत रिलेट करता हूँ, क्या बात है। और लिखा कि शायद हर स्ट्रगल करने वाला इंसान इससे रिलेट करता है। बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है आपका, बहुत ही अच्छा मैसेज है कि कुछ ना कुछ तो है जो हमें ना जस्ट दे रहा है हमें हर स्ट्रगल के टाइम पर कि अपना टाइम आएगा आएगा। और अगर आप ऐसा बोलते रहेंगे तो डेफिनेटली आएगा, बस आएगा की जगह आप ये शुरू कर दीजिए कि मेरा टाइम आ गया है, मेरा टाइम ही चल रहा है, तो आपको और जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। वेल अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मैसेज है, बहुत सारे अरोड़ास का, मेहर ममता कीर्ति भूमिका, और लिखा है कि हम तुमसे फिर मिले फिर जुदा हो गए, ये क्या है, ये नहीं होना चाहिए था, आपको कुछ और बताना था, पर चलिए कोई बात नहीं, आप हमारे साथ आकर जुड़े यही हमारे लिए बहुत बहुत बहुत ब्यूटीफुल बात है। गुड इवनिंग मैम, दिस इज़ अमन प्रतीक दारद फ्रॉम नोएडा। क्या बात है नोएडा के लोग, प्लीज़ आप लोग भी मैसेज करें, अच्छा लगता है। माई सॉन्ग फॉर माई लाइफ इज़ मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। क्या बात है, जिंदगी का साथ ज़रूर निभाना है लेकिन आगे की लाइन को पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है लाइफ में। हाँ, बर्बादियों का शोक नहीं मनाना है, उसका जश्न मनाना बहुत ज़रूरी है। प्रतीक ब्यूटीफुल सॉन्ग और ज़िंदगी से मैच करता है तो क्या ही बात है। अगला जो मैसेज है ये मेरे पास है, ओके बस इन्होंने ये लिखा है कि गाने बहुत पसंद आ रहे हैं। चलिए आपको गाने इतने पसंद आ रहे हैं तो एक गाना प्ले कर ही देती हूँ। रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता, सुंदरम गुप्ता, ये आपके लिए और हमारे सभी लिसनर्स के लिए। टेक इट अवे।

0: के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: ऑल राइट लिसनर्स, बहुत थोड़ा सा समय मेरे पास बचा है और इस थोड़े से समय में ज्यादा से ज्यादा आपके मैसेजेस लेने की पूरी कोशिश करेगी आरजे भाती। फिलहाल ये मैसेज जो मेरे पास आया है, ये मैसेज आया है देवेंद्र इंगती का, कर्बी अंगलोल असम से।

गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग टू यू. मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जीवन में ठीक से पढ़ नहीं पाया, और इसलिए गाना जो है मेरी जिंदगी से जुड़ा है. आई थिंक अगर आप जीवन में नहीं भी पढ़ पाए तब भी आपका मैसेज ये बता रहा है कि आपको जीवन की समझ बहुत है, क्योंकि जीवन अपने आप में ना एक अपनी अलग ही पढ़ाई कराती है. फिर आप कितना भी पढ़ लिख लें और कितना भी ना पढ़ पाए स्कूल में कॉलेज में, लेकिन जो जिंदगी की पढ़ाई अच्छे से कर लेता है मुझे लगता है वो जीवन को बहुत सक्सेसफुली और बहुत अच्छे से जी पाता है. सो देवेंद्र कोई नहीं, इट्स ओके. मुझे लगता है लाइफ में आगे बढ़ते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये मैसेज मेरे पास आया है मोहम्मद इब्राहिम का. मेरी लाइफ जो है वो रिलेट करती है, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी. और ये जो गाना है ये मेरी ज़िंदगी के बहुत करीब है, मेरी ज़िंदगी को डिपिक्ट करता है. वेल, अगला मैसेज जो मेरे पास है, ये मैसेज मेरे पास आया है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, आई थिंक नरेंद्र सोनी शायद इनका नाम है जो इनके पहले मैसेज से पढ़ पा रही हूँ पटियाला से. और लिखा है कि जो मेरे जीवन को दर्शाता है, मेरे जीवन को दिखाता है जो गाना जो मेरे जीवन को सूट करता है वो है ये कि चल अकेला चल अकेला चल अकेला. वेल, देखिए अकेले चलने में कोई बुराई नहीं है. अगर आपको किसी का साथ नहीं मिल रहा है तो भी आपको जीवन में अकेले तो चलना है, अकेला चलो रे, ये तो है ही. लेकिन अगर किसी का साथ मिल रहा है उसके बावजूद नहीं नहीं मैं तो अकेला ही चलूंगा, मैं तो अकेला ही चलूंगा, है मेरे एक ऐसे फ्रेंड ना जो कहते हैं नहीं मैं तो अकेला ही चलूंगा कुछ भी हो जाए, तो वो नहीं करता है. अगर जीवन में लोगों का साथ मिल रहा है, किसी का साथ मिल रहा है, तो ज़रूर उसका साथ जो है वो आप लें और आगे बढ़े. और एक लास्ट मैसेज आज के लिए जो मैं लेने वाली हूँ वो गुड्डू धाकड़ का है, मध्य प्रदेश उज्जैन जिले से, बेड़ावन से. लिखा है कि मेरी ज़िंदगी को मैच करता गाना जो है वो ये है कि दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम है. और ये लगता है ये अगर ये जो दो लाइन्स है ना ये अगर हम अपने जीवन में उतार लेना तो फिर तो मुझे लगता है कि इससे बेटर कोई बात हो नहीं सकती है. सो लिसनर्स, आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल के साथ बने रहें, स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग, एंड यस ऑफ कोर्स हमारे साथ इसी तरह से आप आगे के प्रोग्राम्स में भी जुड़े रहें. फिलहाल एक गाना आप सबके लिए.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने सांसद संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, संजय जाधव, भाऊ साहेब वाकचौरे, नागेश पाटिल अष्टिकर और ओम प्रकाश राजे निम्बालकर का पार्टी में स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण अग्निकांड में 14 छात्रों की मौत हो गई। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए, उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया। संवाददाताओं से बातचीत में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि दमकलकर्मी इमारत के कोनों, शौचालयों और अन्य क्षेत्रों में फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं। दमकलकर्मी, पुलिसकर्मी और जिला शासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और निकासी अभियान शुरू किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
1: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
0: मुख्यमंत्री अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौट आए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि इस भयानक दुर्घटना में लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। उपराष्ट्रपति ने भी शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलान बातार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्से तेसेग बटमुंग से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी, मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1 लाख खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकतानुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADAK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा कि वह तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक से इतर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद SNSC के रक्षा मामलों के उप सचिव गादिर निजामी पुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं, या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
4: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
5: Welcome back after the break, and you're listening to Country Carnival on Akashvani Rainbow 102.6 MHz, and I'll be taking your messages quickly, but it's time to fly away. Yes, many of you must be going back home, driving, looking at air, but requesting you all kindly follow the rules. Yes, traffic rules are made for us, for our safety, so kindly follow them. And definitely, if you're enjoying the music, let me know on our WhatsApp number, that's 9868107070. So let's fly away with John Denver.

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: कोयल सी तेरी बोली,
4: हाय
3: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: ऑल राइट लिसनर, सो हियर आई एम अगेन। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, आपकी वही आरजे भारती जो कभी नहीं हारती और चाहती है कि आप भी जिंदगी से कभी ना हारे। यस ऑफ कोर्स, फेस लाइफ विद फुल पावर, और वो तो आपको हमेशा ही जिंदगी में करना है। आपका मेरा वादा है, इस वादे के साथ यही एक इरादा है कि जितना हो सके हम आपको एंटरटेन कर सके ना, जितना हो सके आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सके, जितना हो सके आपको देश विदेश की खबरें पहुंचा सके, जितना हो सके आपको इन्फॉर्मेशन दे सके, जितना हो सके आपकी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स हम लोग प्रेजेंट कर सकें। सो एवरीथिंग इज फॉर आवर ऑडियंस, यानी कि आप सबके लिए। और ऐसा एक आप सबके लिए विशेष रूप से, खास रूप से डिजाइन किया गया हमारा ये वाला शो है म्यूजिक मस्ती। अब इसमें हम कुछ नहीं करते हैं खास, इसमें बस हम आपको ऐसे फुट टैपिंग नंबर्स सुनवाते हैं जिससे आपका जो मूड है ना एकदम बिल्डअप हो जाता है। आपको लगता है कि चलो यार हो गया, पूरा दिन जितनी मेहनत करनी थी, जितना काम करना था कर लिया, लाओ अब कुछ अच्छा सा म्यूजिक सुना जाए, कुछ फुट टैपिंग नंबर्स सुने जाए। और हो सकता है कि नंबर्स को सुन के आपको लगे कि चलो थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, यानी कि चलो थोड़ा सा डांस ही कर लेते हैं। सो हियर वी गो विद दिस ट्रैक। ये सबसे पहला ट्रैक आप सबके लिए, टेक इट अवे। एंड यस ऑफ कोर्स मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, इसीलिए मेरे शो पर आपको ये अक्सर सुनने को मिल जाता होगा, लेकिन ये बहुत बहुत बहुत अमेजिंग ट्रैक है। इसको सुनिए, एंजॉय कीजिए, और बैक टू बैक बहुत सारे ट्रैक्स आप सबके लिए लेकर आऊंगी मैं म्यूजिक।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण

का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: आकाशवाणी।
1: नमस्कार, स्वागत है आपका आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर। कार्यक्रम है आपकी याद आती रही, तो चलिए शुरुआत करते हैं यादों के सफर की। तो जनाब, ये जो यादें हुआ करती हैं, ये वाकई हमारी जो एक जिंदगी है उसके लिए एक सहारा बन जाती हैं। कई बार ये यादें हमें मुस्कुराना सिखाती हैं, कई बार ये यादें हमें ये बताने की कोशिश करती हैं कि कोई साथ हो ना हो, लेकिन वो हमारे

मोहब्बत में तुम्हारे लिए बहुत रोया करता था। और जब इब्तदाई इश्क थी तब भी, और फिर जब इंतहाई इश्क थी तब भी तुमसे ही मोहब्बत करता था, तुम्हारी ही इबादत करता था, तुम्हें ही दुआओं में मांगा करता था। तुम अक्सर भूल जाते हो, वो अब भी सिर्फ और सिर्फ तुम ही से प्यार करता है, वो अब भी तुम ही से प्यार करता है।

करते हैं तुमसे सनम। काश कि वो भी सुन ले ये बात, काश वो भी समझ ले ये बात। जाने के सम्त से आती है अचानक तेरी याद, जाने के सम्त से आती है अचानक तेरी याद, और फिर कुछ भी सिमटने में नहीं आता है, और फिर कुछ भी सिमटने में नहीं आता है। वाकई इन यादों के अगर किस्से खोले जाएं, यादों की पोटली को खोला जाए, किस्सों को आवाज दी जाए, तो वाकई कुछ चेहरे कुछ आवाजें अक्सर याद आती हैं। गुजरते हुए पलों को एक बार सोच के तो देखिए, कुछ दोस्त कुछ करीबी बहुत याद आते हैं, बहुत याद आते हैं। और जब ये याद आती है तो बस आती ही चली जाती है। न जाने यादों के कितने झरोके खुल जाते हैं, न जाने कितने चेहरे कितनी आवाज़ें हमारे करीब आ जाती हैं, और हम अक्सर क्या कहते हैं जानते हैं।

0: यादों का सफर आपके साथ ऐसे ही जारी रहेगा। हाजिर होती हूँ चंद ही लम्हों में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। कार्यक्रम है आपकी याद आती रही।
1: मंगल भवन मंगल हारी
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

जी हाँ, आकाशवाणी का रेनबो चैनल इस वक्त आप सुन रहे हैं और हम इस वक्त निकले हुए हैं यादों के सफर पर। आपको भी यकीनन कोई ना कोई बात तो जरूर याद आती होगी, कोई ना कोई चेहरा, कोई शख्स जरूर याद आता होगा जिसके साथ आपने खूबसूरत लम्हे गुजारे होंगे, है ना। यादें वाकई कभी भी यूं लगता है पुरानी होती ही नहीं है, बल्कि किसी पुराने गीत की तरह हमारे कानों में उतर जाती हैं। और कई बार तो यूं भी लगता है कि बरसात की पहली बूंद बनकर दिल की जमीन पर सांसें लेने लगती हैं और हम उस दरख्त को, उस पौधे को बढ़ने देते हैं, क्योंकि जिसे हम कर रहे हैं याद, क्या वो भी करता है हमें याद। न जाने क्यों ये दिल बार बार कहता है कि याद आ रही है उसकी। ये दिल क्यों मचलता है, ये दिल क्या कहता है, जरा सुनिए तो।

अजब कहानी है इस सिल की। मिल जाए कोई तो भी बेकरारी, ना मिले तो बस मत पूछिए इस दिल का हाल। और अगर थोड़ा सा और पीछे जाएं, थोड़ा सा उन यादों को कुरे दें, उन यादों को एक बार फिर से आवाज़ दें, तो कई बार अचानक से दिल को कुछ अजब दिन याद आ जाते हैं। याद तो कीजिए ज़रा, जब स्कूल का बस्ता कंधों पर होता मगर दिल हल्का हल्का होता। यानी इस दिल में वो जज्बात न थे जो आज हैं। उस दिल के जज्बात, वाकई वो जज्बात थे

का कोई मोल है ही नहीं। याद कीजिए जब चंद सिक्के हुआ करते थे जेब में, मगर चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट हुआ करती थी, जब दोस्त किताबों से ज्यादा कीमती लगते थे और छुट्टी की घंटी किसी खुशखबरी से कम नहीं लगती थी। आज वही दिन याद आते हैं जब जिंदगी का हर लम्हा बेफिक्र, हर दुख छोटा सा लगता, हर ख्वाब बड़ा लगता था। अब ना वो घंटी है, ना वो दोस्त हैं, ना उनकी आवाज़ें हैं, बस यादों की एक, कहना चाहिए कि बोर्ड ने, जो यादों का एक बोर्ड है उस पर उसने लिख दिया है याद, और हम सिर्फ उसी बोर्ड को देखते हैं, उन चेहरों को याद करते हैं, उन्हें अपने पास बुलाना चाहते हैं, लेकिन फिर वही बात कि सिर्फ हम फरियाद कर सकते हैं, हम याद कर सकते हैं।

और जब स्कूल की बात चल ही रही है तो इससे पहले हम इस गीत को सुने, मुझे न जाने क्यों अक्सर यूं लगता है कि काश वो दिन लौट आए, फिर से स्कूल का जमाना लौट आए, जहां किताबों में हम सिलेबस का लेसन नहीं बल्कि उस लेसन की जगह मोहब्बतें लिखी जाती थी, मोहब्बतें पढ़ी जाती थी, मोहब्बतों को आवाज़ दी जाती थी। बहुत ही नाजुक जज्बात, बहुत ही मासूम जज्बात, है ना।

जी हाँ जनाब, जो फरियाद है वो अक्सर जुबां पे आ जाती है और हम उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं। चलिए इन फरियाद को और इन यादों को फिर से आवाज़ देंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे जो दोस्त हैं वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। सौरभ हनीजा, हमेशा की तरह सिर्फ और सिर्फ एक ही बात, गुड इवनिंग, वेलकम बैक। ठीक है, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा हमारे साथ हैं पंकज अमरावती महाराष्ट्र से, गुड इवनिंग रेशमा जी, आपकी याद आती रही, बहुत बढ़िया कार्यक्रम प्रस्तुति, गीत पसंद आ रहे हैं, जो भी कस्में खाई थी, फिल्म राज, उदित नारायण, अलका याग्निक, बहुत प्यार करते हैं। साजन, क्या बात है आपकी, हम जानते हैं कि आप हमें हमारे ही जो गीत हैं वो हमें लौटा देते हैं, लेकिन अगर आपको ये गीत पसंद आ रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में भी लिखते हैं कि पिछला कार्यक्रम सोमवार 15 जून 2026 को सुना था, हम आपकी कद्र करते हैं दोस्त, थैंक्स। और आपकी याद आती रही में प्यार भरा नमस्कार, गुड नौर से आदिल कमर, तस्दीक अली और मुजफ्फर अली, शुक्रिया, धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ हैं, अपना समय निकाल कर आप हमसे हमसे जुड़ते हैं, प्रोग्राम सुनते हैं, यकीन मानिए हमें बेहद अच्छा लगता है। और दर्दा के बिखरे ऐसी जमीन न देना, दिली हसरत किसी मुकाम पे कोई कमी न देना, वो प्यार है हमारा और मेरी जिंदगी है, तू आंखों में ए खुदाया कभी उसकी नमी न देना, प्रेमचंद प्रेमी जी लिखते हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा लिखते हैं। बहुत स्वागत आपका, शो सुनने में थोड़ा लेट हो गया, अपनी बैठक में बैठकर गांव के सभी सुधी श्रोताओं के साथ आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, हम सभी को की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कीजिए, मेरा भी सभी को, जितने भी लोग सुन रहे हैं सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, बहुत अच्छा लगता है जब आप सुनते हैं। और लिखते हैं कि आज हमारे भतीजे प्रिंस शर्मा का जन्मदिन है, तो भाई हमारी तरफ से कहने की बात ही नहीं है, बहुत बहुत हम तो कहना चाहेंगे ढेर सारी शुभकामनाएं, गॉड ब्लेस प्रिंस, खूब अच्छे से जीवन आपका गुजरे और आप हेल्दी रहें और हमेशा जो प्रेमचंद जी हैं उनके साथ रहें, उनसे बहुत कुछ सीखने को आपको भी मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। और तेरी याद जब भी आती है आँख चुपचाप बरस जाती है, सिसकियों को तो मैं रोक लेता हूँ मगर मेरी आह फिजाओं में बिखर जाती है। वाह, क्या बात है जनाब, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमचंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उम्र भर जिसको भुलाने की दुआ करता रहा, आज फिर तन्हा हुआ तो उसका चेहरा याद आया, धूप ने जब जब मेरे हिस्से की छांव छीन ली, एक बरगद की तरह उसका ही पहरा याद आया, घर भरा था लोगों से, महफिलें आबाद थी, फिर भी दिल को एक वीरान सा सहरा याद आया, वक्त की गर्दिश ने जब रिश्तों के चेहरे धो दिए, एक सच्चे आदमी का रंग गहरा याद आया, आंख नम थी, रात जागी, चांद भी खामोश था, उसकी बातों का कोई लम्हा सुनहरा याद आया, सरफराज अब तो बस यादों का ही सामान है, दिल को जब भी दर्द छूकर गया वो चेहरा याद आया। क्या बात है, आप समझ ही गए होंगे, जो कि हिहार दर्शना बाजार जिला अररिया बिहार से हमारे बहुत ही अच्छे, बहुत ही पुराने लिसनर सरफराज साहब हमारे साथ हैं अपनी खूबसूरत सी गज़ल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लिखते हैं आप और ऐसे ही आप लिखते रहिए। और ये एक बहुत ही अच्छी, कहना चाहिए कि बहुत अच्छा जज्बा है कि जो दिल में आपकी बात आती है, जो जबान तक आती है, उसे आप बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ों का जामा पहना देते हैं और हम तक पहुँचा देते हैं, हम तक क्या बल्कि सारे ही लिसनर आपकी जो खूबसूरत गज़लें हैं उन्हें सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और नमस्कार, मेरा नाम कृष्ण कुमार मिश्र है और मैं दिल्ली में रहता हूँ, आप मिलर मूवी का मेरे आंसू पर न जाना सॉन्ग ज़रूर सुनवा दीजिए, ये मेरा दोस्त को बहुत अच्छा लगता था और अब वो हमारे बीच नहीं है, बस उसकी यादें ही दिल में हैं। कृष्ण कुमार जी, हमें बहुत दुख हुआ आपकी बात जानकर कि अब जो दोस्त हैं वो हमारे बीच अब नहीं रहे हैं आपके, और उनकी आत्मा के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम दुआ कर सकते हैं। और रही आपके गीत की बात, तो आज तो नहीं लेकिन हम कोशिश करेंगे कि फिर कभी ज़रूर सुनवाएं, उनके लिए हमेशा प्रे कीजिए। और कहा जाता है कि दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलता है, आपको एक दोस्त मिला भी लेकिन प्रकृति का नियम है दोस्त कि जो आया है वो अपना समय पूरा करके चला भी जाएगा, लिहाजा उसकी यादें हमेशा अपने साथ रखिए।

वो आपको ज़रूर मुस्कुराने का सबब देंगी। और इसके अलावा हमारे साथ कौन हैं, हम भी आपको सुन रहे हैं कस्बा कुनौर यूपी से, फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हमें सुनने के लिए, और हम आपके साथ हैं ये हमें अच्छा लग रहा है। और गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो मैसेज। ओके, ये तो आपने जो हमें मैसेज किया है, किसने किया है सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। ये मैसेज है किसका है, किशन वंजानी, नीलम, स्वाति और किशु, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से लिखते हैं कि आपकी याद आती रही, मैं आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार, कार्यक्रम लाजवाब चल रहा है और गीत संगीत बेहद पसंद आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब प्रोग्राम सुनने के लिए और गीत संगीत को पसंद करने के लिए। तो चलिए, बातों का सिलसिला तो आपके साथ ऐसे ही जारी रहेगा। ऐसा करते हैं, जब यादों की बातें चल ही रही हैं तो एक ऐसा गीत सुनते हैं जिसे सुनकर आपको यकीनन ये एहसास होगा कि वाकई जो गली में चांद निकलता है वो हमसे बहुत कुछ कहना चाहता है, बहुत कुछ समझना चाहता है। तो चलिए सुनने की कोशिश करते हैं ये प्यारा सा गीत।

जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला, आज जरा फुर्सत पाई थी आज उसे फिर याद किया, आज जरा फुर्सत पाई थी आज उसे फिर याद किया, बंद गली के झरोकों को एक बार फिर से खोल दिया। जी हाँ, ये जो यादें हैं ये ऐसे ही आती हैं, दस्तक देती हैं और चली जाती हैं, और हम सब फिर अपने अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं। जिंदगी कहाँ फुर्सत देती है कि किसी को याद किया जाए, लेकिन ये यादें उस वक्त आती हैं जब आप तन्हा होते हैं, यानी तन्हाई में भी आप तन्हा महसूस नहीं कर पाते। वैसे हमारे कुछ दोस्त हैं जो कहते हैं कि हम तन्हा हैं, तो भाई हम तो आपसे बस इतना ही कहेंगे कि तन्हाई में हमारा साथ लीजिए, हम आपके साथ हैं हमेशा। और ये मैसेज हमें मनीष ने किया था, तो तन्हाई की ज़रूरत नहीं है मनीष, दिल्ली में आप रहते हैं, दिल्ली में बहुत गहमा गहमी है, कुछ दोस्त बनाने की कोशिश कीजिए, घर से निकलने की कोशिश कीजिए, और जब आप थोड़ी सी भी अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखेंगे तो यकीन मानिए आपके कुछ साथी बन ही जाएंगे। तो चलिए आपको बता दें कि हमारे साथ कुछ और दोस्त भी जुड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से कुमारी चंदा कुमारी हैं और चांदनी हैं, और लिखते हैं कि आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, गली में आज चांद निकला और अच्छा लगा। और आगे लिखते हैं कि जो भी आप गीत संगीत सुना रही हैं हमें बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम लग रहा है, और जी चाह रहा है कि हम आपका प्रोग्राम बस ऐसे ही सुनते रहें क्योंकि ऐसे गीत संगीत कभी कभी ही सुनने को मिलते हैं, और मजबूर कर रही है आपकी आवाज़ कि हमें ये प्रोग्राम हम सुने। बहुत शुक्रिया, आपको आनंद आ रहा है तो और हमें क्या चाहिए। उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से हमारे साथ हैं हमारे सभी साथी। और इसके अलावा हमारे साथ कौन है, नमस्कार, मधुर गीत और आपकी बातें यादों में ली गई, ये डॉली हमारे साथ हैं। कोई बात नहीं है, हम सब एक साथ ही हैं, अगर आप नाम में कई बार भूल जाते हैं या आपको एहसास नहीं हो पाता है तो तब भी कोई बात नहीं, सॉरी कहने की डॉली कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब यहाँ दोस्त हैं, है ना। और मनोज बंसल हांसी हरियाणा से लिखते हैं, नमस्कार, गीतों का चयन बहुत ही अच्छा है, दिल को भाने वाला है, थैंक यू सो मच। और वो झील, वो नदियाँ, वो हवाएं एक तरफ, उसकी आंखें, उसकी जुल्फें, उसका चेहरा एक तरफ, वो मेरे ख्वाबों में आए और मुझे सताए, नींद की खुमारी एक तरफ, उसका सताना एक तरफ। कस्बा गुनौरी यूपी से फारूक अली खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अमरावती महाराष्ट्र से हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं हमारे साथी, जी हाँ, पंकज हैं और लिखते हैं, सारे ही गीत आपने लिख दिए हैं जो अब तक हमने प्रोग्राम में प्ले किए हैं, और अच्छी बात यह है कि आपको इन फिल्मों के जो एयर हैं वो भी आपको याद आ रहे हैं, और हमें क्या चाहिए। और हम समझते हैं कि हमारे जितने भी दोस्त हैं वो सभी बहुत अच्छा गीत संगीत सुनना चाहते हैं, बाज़ौक हैं आप सभी, ये हम जानते हैं, और इसीलिए हमारी कोशिश भी यही रहती है कि आपको कुछ अच्छा सुनवा सकें, कुछ खूबसूरत सुनवा सकें। तो चलिए, जब बात आई है कि कुछ अच्छा सुन पाएं, कुछ यादों को एक बार फिर से आवाज़ देने की कोशिश करते हैं कि वाकई जो गुजरे हुए पल हैं उन्हें कैसे हम भुलाएं, और जो पल गुजर रहे हैं उनमें भला तेरी याद कैसे ना आए।

जी हाँ, ये दिल नहीं लगता है, लेकिन वक्त हमसे कह रहा है कि आपसे इजाज़त ली जाए और वादा किया जाए एक और मुलाकात का, लेकिन चंद लम्हे हमारे पास हैं। मैं कुछ नाम और जल्दी से ले लेती हूँ। हमारे साथ हैं नरेश गुप्ता लूनी, गाज़ियाबाद से प्रोग्राम सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सुनने के लिए। और अयांश अश्वनी हमारे साथ हैं, नेहा हैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, प्रोग्राम सुना, प्रोग्राम पसंद किया। फारूक अली खान साहब हमारे साथ, और इसके अलावा आपका प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, प्रोग्राम सुना आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी हमारे साथ प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और कासगंज से मास्टर राधे श्याम शाकिया, गुड इवनिंग लिखते हैं, प्रोग्राम अच्छा लगा, गीत संगीत आपको पसंद आया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आरजे सभी दोस्त हैं जी, बिल्कुल, पर गलती हो जाए तो अरे ये कौन हमारे साथ जुड़ा है, तेरे बिना एक पल बहुत अच्छा लगा, ठीक है। डॉली हमारे साथ हैं, और डॉली हमने कहा कि यहाँ सॉरी की कोई गुंजाइश नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्यार होता है, प्रेम होता है, और हमें पूरी उम्मीद है कि आप भी सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं। और मेरे दोस्त के लिए गाना रेफर करना चाहता हूँ, ये किसने लिखा है, आपने अपना नाम नहीं लिखा, बट कोई बात नहीं, प्रोग्राम का वक्त हमसे कह रहा है कि मैं आपसे यहीं इजाज़त लूँ और वादा करूँ एक और मुलाकात का, तो ये मुलाकात आपसे हमारी होगी अब 11:05 पर। अपना ख्याल रखिएगा, और हाँ, चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिएगा, क्योंकि जनाब जिंदगी बेहद खूबसूरत है, इसका ख्याल रखिए, अपने अपने का ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्र सहित 15 लोगों की मौत हो गई। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिससे छात्रों में दहशत फैल गई। 6 छात्र घायल हो गए और उन्हें लखनऊ के केजीएमसी में भर्ती कराया गया है। अधिकतर मौतें दम घुटने के कारण हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इस सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6 खासदार शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह के टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता के पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। इस्तीफे का बयान देने से पहले श्री स्टारमर अपनी पत्नी के साथ 10 डाउनिंग स्ट्रीट से बाहर निकले, जहां लोगों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया और तालियां बजाई। श्री स्टारमर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता, तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे।
2: Every decision I've taken, मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना और ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। जर्मनी में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदर्शन।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं 8:00 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड दिस टाइम वी स्टार्ट विद द ट्रैक।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
6: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
7: सागर की गहराइयों से पर्वतों

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्र सहित 15 लोगों की मौत हो गई और 6 छात्र घायल हो गए। उन्हें लखनऊ के केजीएमसी में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं। इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट के रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट

0: रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken, मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक भी जीते। भारत 5 स्वर्ण 1 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: तेरे इश्क ने बख्शी है ये सौगात मुसलसल, तेरे इश्क ने बख्शी है ये सौगात मुसलसल, तेरा जिक्र हमेशा तेरी बात मुसलसल। मैं मोहब्बत में उस मुकाम पर हूँ जहाँ मेरी जात में रहती है तेरी जात मुसलसल। और इसी मुसलसल किस्से का नाम है मोहब्बत। तो चलिए मोहब्बत को आवाज़ देते हैं, यानी आवाज़ देते हैं इस दिल की किसी बात को जो हौले से कई बार दस्तक देती है, और उस दस्तक का नाम है इश्क मोहब्बत। तो चलिए मोहब्बत के नाम आज का प्रोग्राम रंगी महफिल।

जिंदगी जब भी तेरी बज्म में लाती है हमें, ये जमी चांद से बेहतर नजर आती है हमें। चांद के बारे में तो हम नहीं जानते, अलबत्ता इस जमी के बारे में जरूर जानते हैं, क्योंकि ये जमी उसके साथ के साथ खूबसूरत हो जाती है, हर लम्हा दिलकश हो जाता है। और कई बार दिल ये भी कहता है कि बस हाथ में हाथ डालकर एक साथ यूं ही चलते रहें, ये सफर कभी खत्म ना हो, कुछ शामें एक साथ गुजारें, शाम ढल जाए तो एक साथ बैठें और बैठकर उसके पहलू में हाथ में हाथ धरे, और न जाने क्यों कई बार यूं भी पूछ बैठे कि आखिर इतने तन्हा क्यों हो तुम, मैं तो तुम्हारे साथ हूं। और वो मुस्कुरा के बस इतना ही कहे कि तुम्हारे हिसार में हूं, तुमसे न जाने क्यों बार बार ये कहने को जी चाहता है कि चलो मोहब्बत के सफर पे चलते हैं, उसी मोड़ पर जहां तुमने कहा था कि ठहरो हम आते हैं। वो पल, वो लम्हा बेहद दिलकश, बेहद खूबसूरत, वही मोड़ जहां तुमने और हमने लिखा था मोहब्बत।

कहा जाता है कि इश्क में पहली मुलाकात एक खूबसूरत ख्याल बन जाती है। खामोशियों में लिपटा हुआ एक नरम सा सवाल भी बन जाती है, और फिर बातों ने आहिस्ता आहिस्ता दिल में घर कर लिया था। हर एक लम्हा तेरा ही अक्स जमाल बन गया था। अजनबी थे मगर वो अजनबियत न थी रही, एक ही पल में वो रिश्ता बेमिसाल बन गया। याद कर लीजिएगा पहली मुलाकात, ये पहली मुलाकात का ही असर होता है कि पहली मुलाकात एक खूबसूरत ख्याल बन जाती है। खामोशियों में एक बहुत ही खूबसूरत सा सवाल बन जाती है, और बातें ही बातें, इस कदर बातें, और वो बातें खामोशी से दिल में उतर जाती हैं। हर लम्हा उसी का अक्स उसी का ख्याल अजनबी बन जाते हैं, मगर न जाने क्यों वो अजनबियत नहीं रहती, एक ही पल में कोई रिश्ता बेमिसाल बन जाता है। क्यों जनाब, क्या आप पूरी तरह से मेरी बात से मुत्तफिक हैं? और न जाने क्यों वो मुलाकात मुलाकात लगती ही नहीं है। यूँ लगता है कि काश कुछ वक्त और बैठे होते साथ, कुछ वक्त और इन आँखों ने उस चेहरे का दीदार किया होता, कुछ देर और उसकी सुन ली होती, अपनी कुछ कह दी होती। लेकिन कुछ मुलाकातें ऐसी हुआ करती हैं जिसमें कोई बात नहीं होती, खामोशियां ही खामोशियां होती हैं।

वाकई हर दिल से ये बात निकलती है, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। यकीनन कुछ मुलाकातें आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी ज़रूर होती होंगी कि उस मुलाकात के बाद आपको ये एहसास होता होगा कि काश कुछ और देर देख लिया होता। इसीलिए तो कहा जाता है कि न जी भर के देखा न कुछ बात की, बल्कि बेशुमार बातों में जो खामोशियां थीं वही सब पर भारी थी। उन खामोशियों में जो बातें थीं वो गज़ब की बातें थीं, जो आप सुनना चाहते थे वो उसने कहा तो नहीं लेकिन आपने सुन लिया, और जो वो कहना चाहता था उसने कहा तो नहीं लेकिन इस दिल ने सुन लिया। क्योंकि क्या है ना कि जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है, इश्क करता है, तो उसमें अल्फाज की कहाँ गुंजाइश रह जाती है। ये तो उसकी एक एक अदा जाहिर कर देती है, बता देती है कि दिल में आखिर कितनी मोहब्बत है। तुझे सोचना मेरी मोहब्बत है, तुझे देखना मेरी इबादत है, तो दिल में हमेशा रहता है खुदा जाने कुछ नहीं तू कहता है, फिर भी तुझसे मोहब्बत है, तेरी हर एक अदा से मोहब्बत है। तो जनाब आखिर इस दिल को हुआ क्या है? क्या इसी को मोहब्बत कहा जाता है? क्या इसी को उसी अंदाज में अगर देखा जाए ये कहा जाता है कि आखिर इस दिल को हुआ क्या है, इस दिल में आखिर क्या है?

काश कोई बता पाता कि इस दर्द की दवा क्या है। यकीन मानिए, इस दर्द की कोई दवा नहीं है। ये दिल मचलता है तो इसे मचलने में ही करार आ जाता है। तो इस दिल को मचलने दीजिए और देखें कि आप हमसे क्या कहते हैं। रात का सन्नाटा है, खामोश शहर है, आगोश तन्हाई में बैठा हुआ हूँ मैं। सड़कें भी चुप हैं, हवाएं भी ठहरी हैं, मगर यादों के कदम अब भी चलते हैं। न जाने कितनी बार लौट आया हूँ यहाँ, जहाँ बिछड़े थे हम वही मोड़ आज भी खड़ा है। सरफराज आलम साहब, जो कि हाट दर्शना बाजार जिला अररिया बिहार से हमारे साथ। बहुत खूब जनाब। और हेलो मैम, कैसी हैं? बेहतरीन शायरी और बेहतरीन गाने अफशा खानम फ्रॉम धामपुर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ अब कौन है? आदाब रेशमा जी, आपकी वॉइस सुनकर आपको पहचान लिया, आप तो आप ही हैं। प्रदीप सलूजा जनकपुरी नई दिल्ली से हमारे साथ हैं और लिखते हैं कि सॉरी लेट हो गया, अब इन्जॉय ये खूबसूरत शो कर रहा हूँ करूँगा। प्रदीप सलूजा जनकपुरी नई दिल्ली से बहुत शुक्रिया, देर से आया आप कोई बात नहीं, लेकिन कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। तो चलिए हमारे साथ रहिएगा और प्रोग्राम को सुनिएगा, लुत्फ उठाइएगा। और हमारे साथ कौन है? नमस्ते शो में एक बार फिर से आपका स्वागत। बहुत ही खूबसूरत शब्दों से अपने शो की शुरुआत की है, हार्दिक बधाई। प्रेमचंद प्रेमी जी लिखते हैं, लाख गर्दिशों में दबके उभर जाती है दुनिया, वक्त की बेरहम आंधियों से लड़ जाती है, और प्यार जिंदगी है ये सच तो है, मगर इसमें जरा सी चोट से मर जाती है दुनिया। बहुत खूब, दुनिया के बारे में आपने बहुत बहुत अच्छा लिखा है और ऐसे ही आप लिखते रहिए। और आप हमें कहते हैं, हम तो आपसे कहते हैं कि आपका आलेख वाकई बहुत अच्छा है। बहुत धन्यवाद प्रोग्राम सुनने के लिए और प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। और गज़लें बेहद पसंद आ रही हैं कस्बा गुन्नौर यूपी से, बस हवाओं से तुम्हारा जिक्र कर लेता हूँ और चांद से तुम्हारा पता पूछ लिया करता हूँ। क्या बात है जी। हाँ, अक्सर हवाओं से अगर आप बात करना चाहते हैं तो एक बार कभी खामोशी में इन हवाओं को ज़रूर सुनिएगा, आपको एहसास हो जाएगा कि ये जो हवाएं हैं ये क्या कहना चाहती हैं। अगर आप सुनना चाहें तो ये हवाएं आपसे ज़रूर बात करेंगी। रही बात चांद की, तो चांद में जनाब कहते हैं कि महबूब नज़र आता है, तो एक बार उस महबूब को देखिए इस चांद में, शायद वो भी आपको देख रहा हो उसी चांद में।

जी हाँ जनाब, ये जो मोहब्बत है ये कई बार उसे देखना चाहती है, उसे महसूस करना चाहती है, लेकिन कई बार जब दीदार ना हो तब दिल बड़ा ही उदास हो जाता है। और दिल बार बार कहता है कि एक बार दीदार हो जाए, एक बार ये आँखें उसका दीदार कर लें, इन आँखों को करार आ जाए, क्योंकि उसमें बेशुमार रंग हैं और उस रंग को देखने के बाद अब दुनिया का कोई रंग इन आँखों को भाता ही नहीं।

देखा आपने कितना दर्द है इस गाने में, और हर शेर, हर लफ्ज उस दर्द को, उस आरजू को बयां कर रहा था कि एक बार दीदार

हो जाए। अब तो इस राह से वो शख्स गुजरता भी नहीं, अब किस उम्मीद पे दरवाजे से झांके कोई। कोई आहट, कोई आवाज, कोई चाप नहीं, दिल की गलियां बड़ी सुनसान हैं, आए कोई। दिल की गलियां बड़ी सुनसान हैं, आए कोई।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में कल दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्र सहित 15 लोगों की मौत हो गई। 6 छात्र घायल हो गए हैं और उन्हें लखनऊ के केजीएमसी में भर्ती कराया गया है। अधिकतर मौतें दम घुटने के कारण हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि ये दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6 खासदार शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से बढ़ती और भरोसेमंद अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक विश्वसनीय शक्ति भी बन गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित समिट को संबोधित करते हुए ये बात कही।
2: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया है कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन

मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है, जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। इस नई नीति के अंतर्गत बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के जिन विषयों की परीक्षा नहीं हो सकी, उनमें निजी छात्र द्वारा कक्षा 10 और पिछली बार दी गई कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर परिणाम का आकलन किया जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता, तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। जर्मनी के सुहल में आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम जीरो आर शो।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं। एक जमाने से

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में कल दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्र सहित 15 लोगों की मौत हो गई है। 6 छात्र घायल हो गए हैं और उन्हें लखनऊ के केजीएमसी में भर्ती कराया गया है। अधिकतर मौतें दम घुटने के कारण हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि ये दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6 खासदार शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से बढ़ती और भरोसेमंद अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक विश्वसनीय शक्ति भी बन गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित समिट को संबोधित करते हुए ये बात कही।
2: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में खरीद एजेंसियों और उपभोक्ता मामलों के विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद की समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि बातचीत का मुख्य उद्देश्य खरीद में तेजी लाने, पर्याप्त बफर स्टॉक बनाए रखने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बाजार में जरूरी दखल को मजबूत करना था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे।
3: Every decision I've taken, मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं, इसीलिए मैं लेबर

0: पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
1: हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। जर्मनी के सुहल में आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर और कार्यक्रम है सुहानी रात।

0: कोयल सी तेरी बोली, कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु,
1: आए हाय।
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।

0: कोयल सी तेरी बोली कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु
1: आय हाय
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में कल दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्र सहित 15 लोगों की मौत हो गई। 6 छात्र घायल हो गए हैं और उन्हें लखनऊ के केजीएमसी में भर्ती कराया गया है। अधिकतर मौतें दम घुटने के कारण हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल का निरीक्षण करने, पीड़ित परिवारों से मिलने और घायलों का हालचाल जानने के बाद एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और इस घटना की जांच का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी को 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि ये दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से बढ़ती और भरोसेमंद अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक विश्वसनीय शक्ति भी बन गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित समिट को संबोधित करते हुए ये बात कही।
2: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1,000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। इस नई नीति के अंतर्गत बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के जिन विषयों की परीक्षा नहीं हो सकी उनमें निजी छात्रों द्वारा कक्षा 10 और पिछली बार दी गई कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर परिणाम का आकलन किया जाएगा। फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना ने ग्रुप जे के एक मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर ली है। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज के 16 गोलों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी का दर्जा हासिल कर लिया है। ग्रुप जे के एक अन्य मैच में फ्रांस का मुकाबला इराक से होगा जो भारतीय समयानुसार अब से कुछ देर बाद 2:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। आइए अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम भुलाए ना बने।

0: मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा

0: जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
0: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
0: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक, रेनबो 102.6 पर।

तूने कहा चाहता है क्या, मैंने कहा चाहत तेरी, मैंने कहा समझा नहीं, उसने कहा किस्मत तेरी एक हम

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में कल दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्र सहित 15 लोगों की मौत हो गई। 6 छात्र घायल हो गए हैं और उन्हें लखनऊ के केजीएमसी में भर्ती कराया गया है। अधिकतर मौतें दम घुटने के कारण हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल का निरीक्षण करने, पीड़ित परिवारों से मिलने और घायलों का हालचाल जानने के बाद एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। उन्होंने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी को 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि ये दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से बढ़ती और भरोसेमंद अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक विश्वसनीय शक्ति भी बन गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित समिट को संबोधित करते हुए ये बात कही।
2: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। इस नई नीति के अंतर्गत बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के जिन विषयों की परीक्षा नहीं हो सकी उनमें निजी छात्र द्वारा कक्षा 10 और पिछली बार दी गई कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर परिणाम का आकलन किया जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे। जर्मनी के सुहल में आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक भी जीते। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जैसा सुना था वैसा ही पाया, आपको देखा तो यकीन आया, अगर फिरदौस बर्रवे जमीनस हमी अस्तो हमी अस्तो हमी।

0: सरदार।
1: तौबा तौबा, ये आज मेरी चश्मे आवारा क्या देख रही है नजारा, कि मेरा रखी तेरे करीब अरे फूटे नसीब। आपकी तारीफ
2: एक आशिक गरीब

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में कल दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्रों सहित 15 लोगों की मौत हो गई। 6 छात्र घायल हो गए हैं और उन्हें लखनऊ के केजीएमसी में भर्ती कराया गया है। अधिकतर मौतें दम घुटने के कारण हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल का निरीक्षण करने, पीड़ित परिवारों से मिलने और घायलों का हालचाल जानने के बाद एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। उन्होंने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी को 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हुए हैं। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि ये दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से बढ़ती और भरोसेमंद अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक विश्वसनीय शक्ति भी बन गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित समिट को संबोधित करते हुए ये बात कही।
2: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रविवार रात रास लाफान में हुई घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई और मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। दूतावास ने कहा है कि वे कतर के अधिकारियों के साथ मिलकर इस घटना से प्रभावित भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों को हर संभव मदद देने और मृतकों के शवों को जल्द से जल्द भारत वापस लाने के लिए काम कर रहा है। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। इस नई नीति के अंतर्गत बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के जिन विषयों की परीक्षा नहीं हो सकी उनमें निजी छात्र द्वारा कक्षा 10 और पिछली बार दी गई कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर परिणाम का आकलन किया जाएगा। एफआईएच प्रो लीग के लंदन राउंड के पहले मैच में भारतीय पुरुष हॉकी टीम अपने कट्टर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से भिड़ेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सारेगामा।

पर रोक करत सब हा हा दैया, जाय उठाय लियो गिर नख पर बंस बजावत देन चरैया, जगके मोहन मन में माए नित्य करत राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा।

बंधुओं बजाइए ढोल और बजाइए बाजा।

तो सज्जनों सुनो सहेलियों की कहानी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं,

आशा जी ने मेरे सैकड़ों हिट गाने गाए हैं, जिनमें से कई गानों पर आशा जी को बेस्ट सिंगर के अवार्ड भी मिले हैं। ये मेरी ही आशा नहीं, सारी दुनिया के अनगिनत संगीत प्रेमियों की आशा है कि आशा जी की सुरीली आवाज़, इनकी गायकी, इनकी पॉपुलैरिटी इसी तरह दिन पर दिन उन्नति के शिखर पर चढ़ती जाए। आशा जी एक महान कलाकार हैं और मैं इनकी कला व इनके बिहेवियर से कितना प्रभावित हूँ।

गजब है ये दुनिया, गजब है जमाना, के बुलबुल है चुप, गाए उल्लू तराना। सुनो

0: कैमरा नहीं है मेरे पास, वरना एक गजब का फोटोग्राफ मिल जाता।
1: जी मैं
2: पानी की चोट तो बर्दाश्त कर गया, लेकिन ये बाल्टी फेंक कर मारी तो।
1: मुझे माफ कर दीजिएगा, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको अपने नौकर समझी थी।
2: जी
1: जी, मेरा मतलब है मुझे अपने नौकर पे बहुत गुस्सा आया था
2: और पानी मुझ पे डाल दिया, वो भी कड़ाके की सर्दी में।
1: अंदर आइए ना।
2: जी आपका गुस्सा उतर गया?
1: मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। लाइए आपके कपड़े दे दीजिए, मैं सुखा देती हूँ। शर्ट भी दे दीजिए।
2: जी

0: अमेरिका के लाते हुए।
1: जी सुनिए।
0: जी
2: अगर मुझे निमोनिया हो गया तो?
0: इलाज हो जाएगा, डॉक्टर का घर है ना।
2: और आप?
0: मैं उनकी बेटी हूँ।
2: तो एक प्याला गर्म चाय भी हो जाए?
0: चाय जरूर।

0: नहीं।
1: आंखें बंद क्यों है?
0: तुम्हारे सपने देख रही हूँ।
1: दिल की धड़कन इतनी तेज,
0: तुम्हारा नाम पुकार रही है।
1: सांसों की रफ्तार,
0: तुम्हारे पास ले आई है। कहां से कहां?
1: सच बिनु, आज मैं बहुत खुश हूं। तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूं।
0: और तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूं।
1: बिनु, जब किसी पुरुष को जीवन साथी की तलाश होती तो उसके सपनों में एक ऐसी लड़की की तस्वीर आती है जिसकी आंखों में प्रेम, त्याग और समर्पण की भावना होती। जानती हो, अचानक तुम मेरी जिंदगी में आई और मेरा सपना पूरा हो गया।
0: सच?
1: यकीन नहीं आता वीनू, तो पूछो इन बर्फीले पहाड़ों से, इन नदी की लहरों से, इन बहारों से। हम दोनों की दिलों की आवाज एक है जो साथ साथ मिलकर इन वादियों में गूंज उठेगी।

चलो कोई बात नहीं, हम गाएंगे। अब ओ लल्लू की दूं बजा सरंगी। ओए ओए ओए, आपकी खिदमत में क्या पेश करूं।

0: अरे कुछ तो ए कुछ तो बोलिए।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थी मारे गए और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और उत्तर प्रदेश अग्नि सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामित अभियुक्तों और कुछ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। राज्य सरकार ने इस अग्निकांड की उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है। इसके लिए विशेष जांच दल गठित की गई है और 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि ये दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं। इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से बढ़ती और भरोसेमंद अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक विश्वसनीय शक्ति भी बन गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित समिट को संबोधित करते हुए ये बात कही।
2: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1,000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। इस नई नीति के तहत बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों के जिन विषयों की परीक्षा नहीं हो सकी उनमें निजी विद्यार्थी द्वारा कक्षा 10 और पिछली बार दी गई कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर परिणाम का आकलन किया जाएगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। FIH प्रो लीग के तहत लंदन राउंड के पहले मैच में भारतीय पुरुष हॉकी टीम अपने कट्टर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से भिड़ेगी। 2024 में चीन के हुलून पुइर में हुई पश्चिम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच ये पहला मुकाबला होगा। फीफा विश्व कप 2026 में इस समय अमेरिका के फिलाडेल्फिया में फ्रांस और इराक के बीच खराब मौसम के कारण मैच रुका हुआ है। हाफ टाइम तक फ्रांस 1-0 से आगे था। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। मेसी ने 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: शिवानी आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।
2: जटायु से रावण द्वारा सीता हरण की जानकारी मिलने पर दोनों भाई ऋष्यमूक पर्वत के समीप पहुंचते हैं, जहां हनुमान जी से भेंट होती है। हनुमान जी दोनों भाइयों को सुग्रीव, जामवंत और समस्त वानरी सेना से मिलवाते हैं। श्री राम अपने आने का प्रयोजन बताते हैं। श्री राम की शरण में आए हुए सुग्रीव अपनी वानरी सेना को माता सीता की खोज के आदेश देते हैं, परंतु सागर को लांग कर लंका जाना ये कार्य तो केवल हनुमान जी ही कर सकते हैं। जामवंत, अंगद और वानरी सेना हनुमान जी को जागृत करते हैं।